नमस्कार, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर के चिमी चैनल से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 25वीं तिथि। तदनुसार आज दिनांक 16 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 8:54 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी नागौर के चिमनी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें अलग अलग डिजिटल माध्यमों से भी देश और दुनिया में सुन रहे हैं। इस समय सुबह के 8:57 हुए हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण, आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय।

दोस्तों सुबह 9:10 से आप सुनेंगे रामचरितमानस का, 9:20 से आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, और 9:40 से आप सुनेंगे गोरबंद लोक संगीत का कार्यक्रम। 10 से आप सुनेंगे गाने पुराने जमाने के, और 10:30 से आप सुन पाएंगे गाने नए तराने नए। 11 से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

आज शाम 4 बजे से आप सुनेंगे हेलो गोरबंद लोक गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम। 5 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी और 5:30 से आप सुनेंगे कार्यक्रम पणियारी। 6:05 से आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत और 6:20 से आप सुन पाएंगे लोकगीत और भजनों पर आधारित कार्यक्रम माटी के स्वर। खेतीबाड़ी का समय रहेगा शाम 7 बजे से और 7:30 से आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

आज रात्रि 8 बजे से आप सुनेंगे एक विशेष प्रोग्राम चीयर फॉर भारत। 8:30 से आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 9 बजे से आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। 9:15 से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये तो थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 MHz की फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें अलग अलग डिजिटल माध्यमों से भी देश और दुनिया में सुन रहे हैं। इस समय सुबह के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित होगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। नगरीय निकाय चुनाव के तहत जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगमों और सुकेत नगर पालिका के कुछ मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान। अखिल भारतीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन आज से छत्तीसगढ़ में। राज्य में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य समय से पहले पूरा हुआ और पशुपालन विभाग ने लंपी रोग से प्रभावित जिलों में मवेशियों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए, घर घर सर्वेक्षण और उपचार जारी।

0: समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। नगरीय निकाय चुनाव के तहत जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगमों और सुकेत नगर पालिका के कुछ मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इन मतदान केंद्रों की ईवीएम में मतगणना के दौरान तकनीकी खराबी सामने आने के बाद ये निर्णय लिया गया है। पुनर्मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ जो शाम 6 बजे तक चलेगा। जयपुर नगर निगम के 5 बूथों, जोधपुर और कोटा के एक एक वार्ड के 4 बूथों तथा सुकेत नगर पालिका के 1 बूथ पर मतदान करवाया जा रहा है। वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे होगी। इस बीच बाकी नगर निकायों में अध्यक्ष पदों के लिए नामांकन प्रस्तुत करने की आज आखिरी तारीख है। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं प्रत्याशी 18 तारीख तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। इसी दिन शाम को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। मतदान 21 सितंबर को होगा और इसके तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। उपाध्यक्ष पदों के लिए 22 सितंबर को चुनाव होगा। अखिल भारतीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन आज से छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जा रहा है। नवा रायपुर में हो रहे 2 दिन के इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्त भाग ले रहे हैं। इसमें पंचायतों तथा नगरीय निकायों को और अधिक मजबूत, पारदर्शी, समावेशी, विश्वसनीय तथा सहभागी बनाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन में अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान विशेषज्ञों द्वारा ईवीएम को लेकर तकनीकी जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। गौरतलब है कि ये सम्मेलन हर साल देश के अलग अलग राज्यों में आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बांसवाड़ा में महिला के साथ कथित अमानवीय व्यवहार के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने मुख्य सचिव और बांसवाड़ा के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर इस संबंध में 2 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 1 सितंबर को राजस्थान के बांसवाड़ा में एक महिला को उसके पति और अन्य रिश्तेदारों ने जबरन बाल काटकर लाठियों से पीटा और सार्वजनिक रूप से घुमाया था। आयोग ने कहा कि यदि मीडिया रिपोर्ट में दिए गए तथ्य सही हैं, तो वे पीड़िता के जीवन और गरिमा के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। 4 सितंबर को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सामने आया। आयोग ने जांच की स्थिति और पीड़िता को दिए गए मुआवजे की जानकारी भी मांगी है। जल शक्ति मंत्रालय ने जल संचय जन भागीदारी अभियान का गान जारी किया है। ये गीत जन भागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के राष्ट्रव्यापी आंदोलन को संगीतमय आवाज देता है। मंत्रालय ने कहा कि इस राष्ट्रगान का उद्देश्य जल संचयन के संदेश को हर गांव, कस्बे, विद्यालय, संस्थान और घर घर तक पहुंचाना है। साथ ही युवाओं को जल संरक्षण दूत बनने के लिए प्रेरित करना है। इस गान को प्रसिद्ध गायक संगीतकार शंकर महादेवन ने गाया है।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है। जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। एक नई
0: कहानी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत इस साल निर्धारित 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य समय से पहले पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस उपलब्धि को जनभागीदारी से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण बताया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान को आगे बढ़ाने के लिए ये एक जरूरी कदम है। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ पौधों का रोपण प्रकृति के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक है और इससे राजस्थान के हरित भविष्य की नींव मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने अभियान में भाग लेने वाले प्रदेशवासियों, जनप्रतिनिधियों और विभागों को बधाई दी। उन्होंने लोगों से लगाए गए पौधों की देखभाल करने और पर्यावरण संरक्षण को जन अभियान बनाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत पाली में बेल वाली सब्जियों की खेती के लिए किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। उद्यान विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने बताया कि वेजिटेबल सपोर्ट सिस्टम के तहत प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। उन्होंने किसानों से योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया।
2: सब्जी वाली फसल ली जाती है, उसमें विशेषकर जो फैलने वाली बेल वाली जो फसलें, मान लो खीरा है, तुरई है, करेला है, इन सब्जियों को कम क्षेत्रफल के अंदर एक हेक्टेयर के अंदर 20,000 की लागत मानते हुए 50% का अनुदान यानी एक हेक्टेयर में 10,000 का अनुदान किसानों को जो है दिया जाएगा। पाली जिले के जो बागवानी से रिलेटेड जो कृषक हैं वो इस कार्यालय में इसका आवेदन करके जो है जो अनुदान 0.4 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर जमीन तक प्राप्त कर सकते। मैं पाली जिले के किसानों से आह्वान करता हूं कि वो इस योजना के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा आवेदन करें और योजना का जो है लाभ प्राप्त करें।
0: प्रदेश में लंपी रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्रभावित जिलों में घर घर जाकर पशुओं का सर्वेक्षण और उपचार किया जा रहा है। पशुपालन विभाग की टीम की ओर से किए जा रहे सर्वे के दौरान पशुपालकों को रोग के लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में जानकारी दी जा रही है। पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर सुरेश चंद मीना ने बताया कि पूर्वी राजस्थान के 10 जिले लंपी रोग से प्रभावित हैं। इन जिलों में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं जहां संक्रमित पशुओं का उपचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कल केवल डीग और भरतपुर में कुछ नए मामले सामने आए हैं, बाकी जिलों में कोई नया मामला नहीं मिला है। डॉक्टर मीना ने पशुपालकों से संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखने और गांठ, बुखार या सुस्ती जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करने की अपील की है। आईआईटी जोधपुर कम संसाधनों में भी काम करने वाला स्मार्ट हेल्थ असिस्टेंट विकसित कर रहा है। ये मेडिकल रिपोर्ट और स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण कर उन्हें आसान भाषा में उपयोगकर्ता तक पहुंचाने में मदद करेगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इसे कम संसाधनों में काम करने के लिए से तैयार किया जा रहा है, यानी सीमित कंप्यूटिंग क्षमता और संसाधनों वाले स्थान पर भी इसका इस्तेमाल संभव हो सकेगा। इसका मकसद स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीकी पहुंच बढ़ाना और मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को डाटा समझने में मदद देना है। आईआईटी जोधपुर की ये पहल AI, मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल रिकॉर्ड और सेंसर तकनीक को एक साथ जोड़कर स्मार्ट हेल्थ केयर समाधान विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: आज विश्व ओजोन दिवस है। ये दिन पृथ्वी पर जीवन की रक्षा में ओजोन परत की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय ग्लोबल एक्शन फॉर अ कूलर प्लेनेट है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकाय चुनाव के तहत जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगमों और सुकेत नगर पालिका के कुछ मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान। अखिल भारतीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन आज से छत्तीसगढ़ में। राज्य में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य समय से पहले पूरा हुआ। और पशुपालन विभाग ने लंपी रोग से प्रभावित जिलों में मवेशियों के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाए, घर घर सर्वेक्षण और उपचार जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी नागौर के 6वें चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 MHz की इस FM फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और इंटरनेट के माध्यम से ऑल इंडिया रेडियो लाइव के जरिए भी सुन रहे हैं। इस समय सुबह के 9:10 हुए हैं और प्रस्तुत है रामचरित मानस गान।

श्री राम को अयोध्या लौटा लाने के अपने विनीत आग्रह को त्याग कर भरत ने निर्णय प्रभु पर छोड़ दिया। अग्रज के प्रति अपनी भक्ति तथा निष्ठा की दुहाई देते हुए उन्होंने कहा, गुरु और स्वामी का स्नेह पाकर मेरा क्षोभ मिट गया है, मन में अब कोई संदेह नहीं रहा। तया निधान अब वही कीजिए जिससे दास के लिए आपके चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ न हो। सेवक का हित इसी में है कि वो समस्त सुख और लोभ छोड़कर स्वामी की सेवा करे। हे नाथ, आपके लौटने में सबका स्वार्थ है, किंतु आपकी आज्ञा के पालन में ही सबका कल्याण है। भरत की विनय ये थी कि यदि स्वामी चाहें तो अकेले भरत वनवास करें, अथवा लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को अयोध्या लौटाकर भरत श्री राम की सेवा में वन गमन करें, अथवा श्री राम तथा सीता अयोध्या लौट जाएं और बाकी तीनों भाई वन को जाएं। इन सभी विकल्पों में भरत अपना ही स्वार्थ होना बताते हैं, क्योंकि उनके अनुसार न तो उन्हें नीति का ज्ञान है और न धर्म का। इसी समय सभा स्थल पर राजा जनक के दूत पहुंचते हैं, जिनसे ये समाचार मिला कि स्वयं राजा जनक वहां पहुंच रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस का। हम आकाशवाणी नागौर के 6वें चैनल से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9:20 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वंदना।

सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे अनूप जलोटा, हरिहरन और सीमा मिश्रा और उनके साथियों के गाए कुछ भजन। अब ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के 6वें चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो आप हमें सुन ही रहे हैं, साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR, प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स और इंटरनेट के माध्यम से ऑल इंडिया रेडियो लाइव के जरिए आप हमें इस वक्त सुन रहे हैं। सुबह के 9:40 हुए हैं। अब प्रस्तुत है गोरबंद लोक संगीत का कार्यक्रम।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम गोरबंद। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सीमा मिश्रा, सतीश देरा और उनके साथियों के गाए कुछ लोकगीत। ये कार्यक्रम अभी यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ की इस एफएम फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स और न्यूज़ ऑन AIR ऐप और इंटरनेट के माध्यम से ऑल इंडिया रेडियो लाइव के जरिए भी सुन रहे हैं। इस समय सुबह के ठीक 10 बजे हैं। अब सुनते हैं कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के। दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म तपस्या के इस गीत से। इस गीत को आवाज़ दिए किशोर कुमार और उनका साथ दे रही हैं आरती मुखर्जी। रविंद्र जैन का संगीत है और इस गीत को लिखा है MG हसमत ने।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दुल्हन वही जो पिया मन भाए, ये है कार्यक्रम की अगली फिल्म का नाम। इस गीत को आवाज दिए यशुदास, हेमलता और बंसरी सेन गुप्ता ने। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों, आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज शाम 4:15 से आप कार्यक्रम सुनेंगे हेलो कोरबंद। इस कार्यक्रम का प्रसारण रविवार और बुधवार रात्रि 8 से होता है, लेकिन आज इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 4:15 से 5 तक। तो सुनना ना भूलें आपका ये प्यारा सा प्रोग्राम। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला गीत सुनते हैं फिल्म सुनैना से। इस गीत को आवाज़ दिए यशुदास और गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

दोस्तों हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आप भाग लेना चाहते हैं और आपकी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार दिन में 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में। इसी कार्यक्रम का प्रसारण होता है रात्रि 8 बजे से उसी दिन गुरुवार के दिन। इस कार्यक्रम में आप भाग लेना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो के फ़ोन नंबर है 240-168 और नागौर के एसटीडी कोड है 015-85। अब कार्यक्रम की तरफ लौटते हैं और अगला गीत सुनते हैं फिल्म चित चोर से। इस गीत को आवाज़ दी है यशुदास ने और गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

दोस्तों, आकाशवाणी नागौर के चिमी चैनल से इस वक्त आप कार्यक्रम सुन रहे हैं गाने पुराने जमाने के। अब कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म नदियां के पार से। इस गीत को आवाज़ दी है जसपाल सिंह और उनका साथ दे रही है हेमलता। गीत और संगीत है रविंदर जैन का।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के। ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के 6वें चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें अलग अलग डिजिटल माध्यमों से भी देश और दुनिया में सुन रहे हैं। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने नए तराने नए। दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म बैंड बाजा बारात के इस गीत को आवाज़ दिए सलीम मर्चेंट और उनका साथ दे रही हैं सुनिधि चौहान।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म अनजाना अनजाने से। इस गीत को आवाज दी है राहत फतेह अली खान ने।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज हेलो गोरबंद कार्यक्रम का प्रसारण होगा 4:15 से लेकर 5:00 तक, तो सुनना ना भूले आपका ये खास प्रोग्राम। अब कार्यक्रम की तरफ वापस चलते हैं और अगला गीत सुनते हैं फिल्म बॉडीगार्ड से। इस गीत को आवाज़ दिए राहत फतेह अली खां और उनका साथ दे रही हैं श्रेया घोषाल।

दोस्तों, आकाशमणि नागौर के चेयरमैन चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने ने तराने ने। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म एक था टाइगर से। इस गीत को आवाज दिए के और उनका साथ दे रही है पलक मुछल।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने नए तराने नए। ये कार्यक्रम अभी यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमिर चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 MHz की इस FM फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें अलग अलग डिजिटल माध्यमों से भी देश और दुनिया में सुन रहे हैं। इस समय सुबह के ठीक 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये प्रसारण विविध भारती केंद्र मुंबई से प्रसारित होगा।
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: श्रोताओं, आज जानी मानी भजन गायिका MS सुब्बालक्ष्मी का जन्मदिन है। हम उन्हीं की याद में ये भजन आपको सुनवा रहे हैं।

एमएस सुबालक्ष्मी की आवाज में अभी आपने संत मीराबाई का ये भजन सुना, और आइए एक बार फिर इसी आवाज को सुनते हैं। ये भक्तिपद भी संत मीराबाई का ही है।

महान भजन गायिका एमएस सुब्बालक्ष्मी के जन्मदिन पर हमने उन्हें इस कार्यक्रम में भजन के जरिए आज याद किया। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला और गैर फिल्मी गीत, स्वर जावेद अली का। गीतकार और संगीतकार हैं सुहित अभ्यंकर।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

रंग तरंग कार्यक्रम की अगली पेशकश आवाजें मुबारक बेगम, जानी बाबू कव्वाल और उनकी हमनवा की, और ये अजीज गाजी की लिखी कव्वाली है। संगीत विपिन और महबूब का है।

और आइए अब सुनते हैं पापोन की आवाज। इसे श्वेता बोथरा ने लिखा है और धुन बनाई है पुनीत दीक्षित ने।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब सुनते हैं चित्रा सिंह की आवाज में रोशन नादान का ये कलाम।

चित्रा सिंह की आवाज में अभी आपने ये गजल सुनी। कार्यक्रम में अब सुनिए कुमार का लिखा ये पारंपरिक गीत, आवाजें मीका सिंह, यो यो हनी सिंह और साथियों की।

0: सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं हरिओम शरण की आवाज में ये भजन।

हरिओम शरण की आवाज में अभी आपने ये भक्ति पद सुना। आइए लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं ये नानक का शब्द। संगीत दिया है सिंह बंधु ने।

0: लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में अभी आपने गुरु नानक का ये शब्द सुना। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: रंग तरंग कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद मेहदी हसन का गाया ये राजस्थानी लोकगीत मांडगायकी के रूप में।

चिड़िया वालम पधारो मारे देश, राजस्थान की जबान है ये। केसरिया महबूब से मुखातिब है।

पहले जरा जल्दी उगाओ, वक्त से पहले उगाओ।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: इस गैर फिल्मी रचना को संगीत दिया है भूपेन हजारिका ने।
3: बंवराता आया।

0: इस गैर फिल्मी रचना के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: रंग तरंग
0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। इस वक्त दोपहर के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रुपए से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रुपए प्रति लेनदेन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में किसानों की बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
2: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर है। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ईरान संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में तीसरी बार मतदान हुआ। सदन ने युद्ध शक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को 220 के मुकाबले 204 मतों से मंजूरी दी। प्रस्ताव के अंतर्गत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान में सैन्य कार्रवाई जारी रखने की क्षमता पर रोक लगाई जा सकती है। ईरान के साथ संघर्ष को लेकर अमरीकी कांग्रेस में मतभेद बने हुए हैं। ये मतदान मध्य अवधि चुनाव से पहले ईरान संघर्ष पर प्रतिनिधि सभा का आखिरी मतदान हो सकता है। संघर्ष के कारण होर्मोज जलडमरू मध्य से तेल आपूर्ति प्रभावित होने के बीच अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें भी मुद्दा बनी हुई हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी की जयंती पर आज देशभर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने उनके योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी स्वर साधना ने भारतीय संगीत और संस्कृति को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 331 अंक बढ़कर 74,335 जबकि निफ्टी 117 अंक की बढ़त के साथ 23,235 पर था। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
5: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
4: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
5: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
4: पर रेरा तो शहरों में।
5: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
4: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
0: देते हैं ढेरों शुभकामनाएं। साथ ही आज इस कार्यक्रम में हम याद करेंगे संगीतकार राम लक्ष्मण को भी। तो पहले सुनते हैं राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में ये गीत।

फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन। आवाजें एसपी बालासुब्रमण्यम और साथियों की। गीत को देव कोहली ने लिखा है।

कार्यक्रम में आप सुनिए राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में असद भोपाली का ही लिखा गीत, स्वर लता मंगेशकर, एसपी बालसुब्रमण्यम और साथियों की, फिल्म का नाम मैंने प्यार किया।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं राम लक्ष्मण का संगीत, नूर कसकार का लिखा गीत, आवाजें अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा की, फिल्म का नाम महबूब मेरे महबूब।

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

अभी आपने राम लक्ष्मण की संगीत निर्देशन में पत्थर के फूल फिल्म का ये दो गाना सुना, स्वर लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम के थे। इससे पहले आप सुन रहे थे फिल्म सातवां आसमान का गीत। गाने वाले कलाकार थे प्रीति उत्तम और उदित नारायण, सूरज सनीम के बोल थे और राम लक्ष्मण की धुन।

0: राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में रविंद्र रावल का लिखा गीत आपने सपना अवस्थी का गाया हुआ सुना। फिल्म का नाम था दुल्हन बनू मैं तेरी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
6: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
5: क्या बात है।
6: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
5: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
6: ट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
5: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दोस्तों, यादों की महफिल कार्यक्रम में अभी तक आप सुन रहे थे संगीतकार राम लक्ष्मण के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत, और अब सुनते हैं गीतकार प्रसून जोशी की गीत रचनाएं। फिल्म का नाम है दिल्ली सिक्स, आवाजें रेखा भारद्वाज और साथियों की प्रसून जोशी के बोल ए आर रहमान की धुन।

कार्यक्रम में आप सुनिए जतिन ललित का संगीत, प्रसून जोशी के बोल, शान और कैलाश खेर की आवाजें। फिल्म का नाम है फना।

कार्यक्रम का अगला गीत A.R. रहमान के संगीत निर्देशन में प्रसून जोशी का ही लिखा हुआ स्वर है बेनी दयाल श्रेया घोषाल की। फिल्म का नाम है गजनी।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हम तुम का युगल गान, आवाजें अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की, गीत प्रसून जोशी का और धुन जतिन ललित की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हम आपको बता दें कि यह प्रसारण आप पुनः सुन पाएंगे दिन में 1:05 से। हम आकाशवाणी नागौर के 6वें चैनल से बोल रहे हैं। FM 103.7 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें अलग अलग डिजिटल माध्यमों से भी देश और दुनिया में सुन रहे हैं। इस समय दिन का 1 बजने वाला है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित होगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। नगरीय निकाय चुनाव के तहत आज जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों तथा सुकेत नगर पालिका के 10 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हो रहा है। इनमें जयपुर नगर निगम के 5, जोधपुर और कोटा के एक एक वार्ड के 4 तथा सुकेत नगर पालिका का 1 मतदान केंद्र शामिल है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना कल सुबह 8 बजे से होगी। इन मतदान केंद्रों की ईवीएम में मतगणना के दौरान तकनीकी खराबी सामने आने के बाद फिर से वोटिंग कराई जा रही है। इधर राज्य के 305 शहरी निकायों में अध्यक्ष पदों के चुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। प्रत्याशी दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इनमें 7 नगर निगमों में महापौर, 47 नगर परिषदों में सभापति और 251 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के चुनाव होंगे। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 18 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। अध्यक्ष पद के लिए 21 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा और मतदान समाप्त होने के बाद उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने वाली ढाल है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ओजोन परत का संरक्षण घर से शुरू होता है। उन्होंने कहा कि एसी का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पर रखना और ऊर्जा दक्ष उपकरणों का इस्तेमाल करने जैसे छोटे कदम उत्सर्जन कम करने में मदद करते हैं। श्री सिंह ने लोगों से सुरक्षित भविष्य के लिए टिकाऊ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व ओजोन दिवस पर प्रदेशवासियों से कार्बन उत्सर्जन कम करने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। प्रदेश में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत इस साल निर्धारित 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य समय से पहले पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस उपलब्धि को जनभागीदारी से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण बताया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाने के लिए ये एक जरूरी कदम है। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ पौधों का रोपण प्रकृति के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक है और इससे राजस्थान के हरित भविष्य की नींव मजबूत होगी। देश भर में कल से स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान शुरू होगा। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान साफ सफाई के लिए चिन्हित स्थलों और अधिक आवाजाही वाले सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ बनाने के लिए गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। साथ ही इसमें युवाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा वेस्ट टू वेल्थ पहल के जरिए स्वच्छता से समृद्धि को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। सेमिकॉन इंडिया 2026 का 5वां संस्करण कल से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यशोभूमि में होने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से ज्यादा प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। इसका आयोजन भारत सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा वैश्विक उद्योग संघ की ओर से किया जा रहा है। इसके माध्यम से वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिकी तंत्र को सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास के संबंध में सहयोग बढ़ाने को लेकर एक मंच उपलब्ध होगा। 3 दिन के इस सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर पैनल चर्चाएं और महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी पुनः परीक्षा 20 सितंबर को 11 जिलों में आयोजित की जाएगी। दो पारियों में होने वाली इस परीक्षा के लिए 666 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के लिए 2,18,000 से ज्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। आरपीएससी अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह ने परीक्षा की तैयारियों को लेकर जयपुर में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चीमे चरण से। इस समय दिन का 1:05 हुआ है। अब चलते हैं वापस विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों की तरफ।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: जी हाँ, लारा लप्पा लाई लप्पदा, आदि टप्पा लाई लप्पदा। कितना खूबसूरत कार्यक्रम की शुरुआत इस गीत के साथ हमने की। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं दोस्तों जिनका कोई सीधा साधा अर्थ तो नहीं होता, लेकिन उनकी लय और अदायगी सुनते ही मन झूम उठता है। जैसे कि अभी आपने इस चटपटे और मस्ती भरे गीत को सुना लारा लप्पा के रूप में। फिल्म का नाम था एक थी लड़की, आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, जीएम दुर्रानी और साथियों की थी। गीतकार थे अजीज कश्मीरी, हाँ, और संगीत दिया था विनोद ने। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत, लेकिन उससे पहले हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत की खूबसूरती यही है कि उसे समझने के लिए हर शब्द का अर्थ जानना जरूरी नहीं। कभी कोई अटपटा सा शब्द, कोई अनोखी ध्वनि या अर्थहीन सी पंक्ति भी लय और सुरों के साथ मिलकर मन में उत्साह, शरारत और आनंद भर देती है। जहां शब्द शायद शब्दकोश में न मिले मगर उनकी धुन सीधे दिल तक पहुंचती है। आखिर गीत केवल अर्थ से नहीं बनता, वो सुर, लय, आवाज और एहसास से मिलकर यादगार बन जाता है। बस अब अर्थ के पीछे न भागें, धुन को महसूस करें और उन गीतों के साथ झूमें जिनके बोल भले ही अटपटे लगते हों। आपने कुछ गानों का जिक्र भी किया है, हो सकता है ये गाना हमारी प्लेलिस्ट में भी हो। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश में उकेरे भाव वाले गाने कुछ अटपटे, विचित्र, निरर्थक स्वीकारोक्ति का, स्वरोक्ति का निरूपण करता दिख रहा है। संगीत शब्दों से परे ध्वनियों का एक संसार है। जब शब्द अर्थहीन भी होते हैं तब भी स्वर और ताल का संयोजन सीधे हमारे मन को छूता है।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
0: आया इन गीतों के रचयिता और मीठी धुन में पिरोने वाले संगीतकार तो हमारे हृदय तल में आज भी बसे हैं ना। इन गीतों में राग रागनियों का रस तो भाव भरा है, सुर और शब्द की परस्परता में प्रेम, करुणा और संवेदना के मानवीय मूल्यों की गहरी उपस्थिति हमें जोड़ देती है और ले जाती है हमें उस मोहक संसार में जहां बस संगीत का रसायन फिजा में दूर दूर तक घुला हुआ है। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। और जैसा कि हमने कहा कि शब्द भले ही निराले हों मगर धुन ऐसी कि सुनने वाला अपने आप गुनगुनाने लगता है कुछ गीत। और आज के सुरीला सफर में तो हमने इन्हीं शब्दों की शरारत का आनंद भी लेना है। हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म दो आंखें बारह हाथ का ये गीत, बहुत ही मस्ती भरा अंदाज।
3: आओ आओ होनहारो प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे, उम्र के कच्चे, बात के सच्चे, जीवन की एक बात बताऊं, जीवन की एक बात बताऊं, मुसीबतों से डरो नहीं, बुजदिल बनके मरो नहीं, रोते रोते क्या है जीना, नाचो दुख में तान के सीना, नाचो दुख में तान के सीना, तक तक धुम धुम, तक तक धुम धुम, तक तक धुम धुम।
0: जी हाँ, पूरे गीत में तक तक धुम धुम, तक तक धुम धुम सुनेंगे आप।

0: जाओगे? ना तो क्या करोगे?
1: जी हाँ, इस गीत को सुनने के बाद तो हमारे पैर भी थिरकने लगे, आपके भी थिरक रहे थे। बताइएगा मुझे कि कैसा लगा ये गीत सुनकर आपको। हमारे श्रोता का लिखना है कि सुरीला सफर का आज का विषय बहुत ही मजेदार है। सच में संगीत का जादू ही ऐसा है कि कभी कभी बेतुके और अटपटे शब्द भी धुन के साथ ऐसे घुल जाते हैं कि बरसों तक हमारी जुबान पर रहते हैं। उन्होंने कुछ गीतों का जिक्र भी किया है और लिखते हैं कि इन गानों के शब्दों का कोई मतलब भले ही समझ न आए, पर इनकी मस्ती और धुन सीधे दिल में उतर जाती है और सुनते ही मन झूम उठता है, जैसे कि अभी हम झूम उठे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर को सुरीला संगीत के साथ साथ अर्थहीन शब्दों वाले गीतों से सजाया गया है। ऐसे ही इस कार्यक्रम में नयापन हो तो कार्यक्रम सुनने की प्रतीक्षा बढ़ जाती है, वरना इस कार्यक्रम में कुछ भी नयापन नजर नहीं आता। तो इसके लिए आप धन्यवाद देते हैं हमें। कुछ अनोखे और जिसका कोई अर्थ ही न हो ऐसे गीतों से साझा आज का ये कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आएगा। और आपने भी लारा लप्पा गाने का जिक्र यहाँ पर किया, जो कि हमने आपको सुनवा भी दिया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो बड़े ही मजेदार शब्दों का गड़बड़ झाला लेकर आप आ रही हैं। ये वो शब्द होंगे जिनको हमने बहुत बार सुना है और हमारी जुबान पर चढ़ भी गए थे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये गीत तो हमारे गीतकारों ने लिखे हैं और हमें तो उन्होंने झूमने पर मजबूर कर दिया है ना। एक श्रोता का लिखना है कि आज का सुरीला सफर मेरे ट्रेन के सफर के साथ साथ चलेगा, आज के कार्यक्रम का लुत्फ सफर में ही उठाएंगे। क्या बात है, तो आपका सफर बहुत ही मंगलदायी हो, है ना, मंगलमय हो, ऐसी हम शुभकामनाएं आपको देते हैं। और सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम आपके इसी सफर में। और आज के दो सवाल अब हम आपसे पूछना चाहेंगे। वही कार्यक्रम से जुड़े सवाल ही हैं कि ऐसा कौन सा गीत है जिनके बोलों का स्पष्ट अर्थ तो नहीं है, लेकिन वो अजीब सा जो शब्द है आपको

आज भी याद है, जैसे अगर मैं अपनी बात कहूं तो त्रिदेव फिल्म का गाना है ना, ओए ओए ओए ओ वाह, ये गाना मुझे बहुत पसंद आता है। ये जो कार्यक्रम की शुरुआत में जिस तरह से गाया जाता है, अमित कुमार साहब गाते हैं, तो ये गाना जो शुरू होता है तो एक अलग ही रिदम महसूस होती है। और तो आपको भी बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द आपको पसंद आता है या आया किसी एक गाने का जिक्र बस। और दूसरा सवाल हमारा ये है कि आपको किसी एक गीत की वो पंक्ति जो बेतुकी या निरर्थक जिसे हम मानते हैं, कौन सी है जो आपको सबसे मजेदार लगती है। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं। और देखिए, कभी कभी क्या होता है कि गीतकारों ने ऐसे गीत लिख दिए हैं जिनका कोई मतलब ढूंढने बैठे तो शायद उलझ ही जाएगा, लेकिन सुनते ही वो गाना चेहरे पर हमारी मुस्कान जरूर आ जाती है। तो ऐसे ही शब्दों की मस्ती है इस गीत में, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार ने। फिल्म का नाम है कहते हैं मुझको राजा। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी हैं, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

राम राम सिया राम सलाम वालेकुम प्यार कर चुप चुप खुद पियो चुक चुक ठन ठन फुट फुट फुट फुट फुट फुट ठन ठन फुट फुट हाउ डू यू डू पाम चीक चिक चाम चीक चिक पाम चीक चिक चाम चीक चिक पम चुक बुब चुक बम चुक बुब चुक पम चुक बुब चुक बम चुक बुब चुक पड़ के बोल बेटा बम बम पड़ के बोल बेटा बम बम पड़ के बोल बेटा खिड़की खोल बेटा बम बम चिक बम बम चिक बम बम हे बम बम मकुक बम बम मकुक बम बम मकुक बम बम मकुक बाबा लोग सुनो काका लोग सुनो दादा लोग सुनो जल्दी जल्दी एक याले बाशा कुछ ना दे कुड़िये ये पुत्र देख भाई इधरा खाली है पिंजरा ए देख भाई इधरा अरे खाली है पिंजरा पिंजरे के अंदर निकलेगा बंदर।

0: पड़के बोल बेटा बम बम पड़के बोल बेटा बम बम पड़के बोल बेटा खिड़की खोल बेटा बम बम शिक बम बम शिक बम बम थप थप ले ले बुचट का का थप थप ले ले बुचट का का फट फट ले धोबी फट का का फट फट ले धोबी फट का का ले बुचट का धोबी फट का दिल सट का सदा सितारा मुरे जरा हटके चल वे दिखा दे प्यारे बटके यही से दिखेगा अलमत्ता दिल्ली बम्बई कलकत्ता हरे राम कृष्णा प्यार की कहानी चाहे देखो तो चोर चाहे काला पानी कल्ला जोर कल 20 साल पहले एक से एक नहले पे दहले एक से एक नहले पे दहले बैकुम बैकुम तारा तुड़ी जोधुर मस्त चोशुर बारी रेल कॉम जोमा जोम पाप इसे आलो दम कांदे की भाजी हाय मुल्ला काजी रसून की चटनी हाय कटनी का बटरा मुंशी मुनक्का हक्का पक्का हुजूर अगदा दिमागे फुरकत हुजूर अगदा दिमागे फुरकत कमाले हलकत कमाले हलकत चल हट नट कट पन घट चट फट फुटबॉल वॉलीबॉल डस्टबिन बेसबॉल पिंग पोंग किंग कॉन्ग बॉल बॉल हॉल हॉल
1: क्या शानदार गीत था और हम तो ये सोच रहे हैं कि क्या सोच के मजरूह साहब ने इस गीत को लिखा होगा, है ना? आपके मन में भी जरूर ये सवाल आया होगा। तो इस मजेदार गीत के बाद हम श्रोताओं के जो विचार हैं उनको शामिल करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि अर्थहीन शब्दों के गीतों से सजा सुरीला सफर कुछ अलग अंदाज में होगा, ऐसा हम सोचते हैं। कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये गीत के शब्द शब्दकोश में है भी कि नहीं। गीतकार

0: क्या सोचकर लिखा होगा इन शब्दों को और खूबसूरत तरीके से प्रस्तुतिकरण कर गीतों के शब्दों को गुनगुनाने के लिए इस प्रकार से ये हमारे लिए छोड़ दिया और गीत हमेशा के लिए यादगार गीत बन गए। तो फिर सुनते हैं खूबसूरत गीतों का ये सफर आपके साथ। बिल्कुल आप सुन रहे हैं, हमें उम्मीद है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मों में कई गीत ऐसे हैं जिसमें कुछ शब्द जोड़ दिए जाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता पर सुनने में मजा आता है। ये ताल धुन और सुंदर संगीत के संयोजन पर निर्भर करती है। जीवन से न हार जीने वाले जिंदगी है खेल जैसे करके आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र भी किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी शब्द अर्थ की तलाश छोड़कर सिर्फ धुन का हाथ थाम लेते हैं, फिर बेतुके से बोल भी सुरों में घुलकर ऐसी मिठास रचते हैं कि उनका कोई शब्दार्थ न होते हुए भी वे मन की भाषा बन जाते हैं। संगीत की यही खूबसूरती है, जहां शब्द चुप हो जाते हैं वहां धुन अपना अर्थ खुद लिख देती है। आज सुरीला सफर उन्हीं अलहड़ अटपटे और बेपरवाह बोलों की दिलचस्प दुनिया में ले जाएगा जहां अर्थ भले न मिले मगर आनंद भरपूर मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं आज आपको आनंद तो भरपूर मिल रहा है ना? सवालों को एक बार फिर से दोहरा देते हैं। हमारा पहला सवाल था, ऐसा कौन सा गीत यानी किसी एक गीत का नाम आपको बताना है जिनके बोलों का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं था लेकिन वो अजीब सा शब्द या वाक्य आपको आज भी याद है। जैसे कि हमने आपसे कहा ओए ओए, ये जो वाक्य हमें बेहद पसंद आता है, खासतौर से मुझे। और वहीं हमारा दूसरा सवाल है कि आपको किसी एक गीत की वो पंक्ति जो बेतुकी लगती है या निरर्थक लगती है या आपको हंसा देती है, कौन सी है जो आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगती है? जैसे कि अगला गीत जो हम सुनने वाले हैं ना, उसमें वो पंक्ति हमें बेहद पसंद आती है, कौन सी बताइए? फिल्म जंगली का गीत है वो। शुकू शुकू अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू, है ना? तो कभी कभी प्यार में दिल की बात कहने के लिए बड़े बड़े अल्फाज नहीं चाहिए होते दोस्तों, बस एक शरारती सी धुन और कुछ अनोखे बोल काफी होते हैं। और ये जो गीत अब आप सुनने वाले हैं इसके बोल भी उसी मस्ती और चुलबुलेपन का हिस्सा है। तो आइए सुनते हैं फिल्म जंगली का ये दिलकश और मस्त मौला गीत। शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन की धुन है। और हाँ, ये भी बताइएगा, फिल्म जंगली का एक और गीत है जिसे हम अक्सर कहीं ना कहीं उस शब्द को गाते हैं या पसंद करते हैं। लिखना शुरू कर दीजिए।
1: करूं मैं क्या सुकू सुकू, आई आई या करूं मैं क्या सुकू सुकू,

0: दुनिया से बेखबर चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार।
1: अय्या सुकू सुकू
0: अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा, सुकू सुकू।

0: बुराओं को मत ऐ दोस्तो, यूं ही मुझसे मत डरो, मेरे भोले प्यार को ना जानी ना समझो। हाथों में जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है कहानी ना समझो।
1: अय्या सुकू सुकू
0: अय्या करूं।

0: हेलो। हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील विल हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: सारे श्रोताओं ने इस बात का जवाब हमें दे दिया है कि वो कौन सा गीत है। वो यही गीत है चाहे मुझे कोई जंगली कहे। और भी श्रोताओं ने लिखा है कि श्रीदेवी का हवा हवाई गाना उन्हें बहुत पसंद आता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ऐसे उल्टे पुल्टे गीतों में मुझे जब जब फूल खिले का गीत रफी साहब का है वो पसंद आता है। और फिल्म कारवां का भी जो आशा जी की आवाज में है कि मैं कहां आप फंसी, वो वाला गाना इन्हें बेहद पसंद आता है। एक श्रोता को किशोर कुमार की आवाज में फिल्म मेरे सामने वाली खिड़की में उस गाने की जो शुरुआत है वो बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता को यम्मा यम्मा जो गाना आर डी बर्मन की आवाज में है वो बेहद पसंद आता है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हिंदी सिनेमा के गीतों में अटपटे या बेतुके के शब्दों जिनका शब्दकोश में कोई अर्थ नहीं है का इस्तेमाल बहुत पुराना है। इसके साथ साथ कुछ गीतों में दूसरी भाषा के शब्द या वाक्य का प्रयोग गीत के मीटर को ध्यान में रखते हुए भी किया जाता है, लेकिन वे बेतुके नहीं होते और उनका अर्थ होता है, जैसा कि दो फूल का गाना है मुत्तु कोड़ी कवाड़ी हड़ा। बिल्कुल सही कहा आपने, वो निरर्थक नहीं है, लेकिन चूंकि हम तमिल गीत को नहीं समझ पाए, उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाए, उस वाक्य को नहीं समझ पाए, तो हमें लगता है कि अरे ये क्या दिया है गीत करने। लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा है, जब हम समझते हैं तब पता चलता है, लेकिन उसको सुनते समय हमें लगता है कि कितना बेतुका सा शब्द लगता है ना। और वहीं और सारे गानों का जिक्र भी आपने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं अभी मुंबई की उड़ान पर हूं, इसलिए आज के दिलचस्प कार्यक्रम में प्रतिभागी नहीं बन रहा हूं, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं। अरे आप तो हमारे नियमित श्रोता है और लगातार लिखते हैं, अच्छी बात है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, हम ये उम्मीद करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का अंदाज और मधुर आवाज का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। अच्छा, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा में मंदाकिनी जी अपने आप में एक ऑल राउंडर उद्घोषिका हैं। अच्छा अच्छा, चलिए आपने हमारी तारीफ में लिखी है कुछ चंद पंक्तियां, शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। एक श्रोता लिखते हैं कि सच में संगीत अद्भुत कला है जिसे वरदान स्वरूप इंसानों को मिला है। कई पुराने गीतों में उटपटांग शब्दों को भी इतने सुंदर तरीके से लिखा गया है, ढालकर प्रस्तुत किया गया है कि आश्चर्य भी होता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अत्यंत सुंदर गीतों से सजे हुए सुरीला सफर में कई दोस्तों को नमस्कार लिखते हैं और हमें भी हंसती खिलखिलाती हुई। अच्छा हाँ, धन्यवाद, शुक्रिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की भारत में गीत शब्दों का अर्थ घटन करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन करना है, चाहे टिम्बकटू हो या काठमांडू, लारालप्पा कहते हुए अपलम चपलम हो, गापूजी गापूजी हो, या फिर देखिए डमडम डिगा डिगा होता है, अगर नहीं हुआ तो इनामिना डिका होगा, और होना ही है। विविध भारती के लिए इतना जरूर कहते हैं कि आहा झमाझम प्यारे प्यारे गीत लिए, जब छोटी बहना मंदाकिनी जी आ रही है तब झिंगुर तो बोलेगा, और चिकी मिकी जब हमारी नजर टिकी हुई है घड़ी की सुई की, और तो कब एक बजने वाला है, और चिल चिल के कजरी सुनने को मिले। क्या बात है, बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी इबारत पेश की है, शुक्रिया, मेहरबानी। और आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। अमित कुमार, सपना मुखर्जी और साथियों की आवाजें, फिल्म का नाम त्रिदेव। कितना चला था ये ओए होए, याद है आपको? इससे जुड़ी कोई घटना याद हो तो बताइए।

हमारे श्रोताओं ने हमारे सवाल का जवाब दे दिया है। आप लिखते हैं कि अजी किबला मोहतरमा ये गीत हमें बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि तू चीज बड़ी है मस्त मस्त ये मोहरा फिल्म का गाना हमें पसंद है। एक श्रोता को किशोर कुमार का फिल्म मिस मैरी का गाना गाना न आया बजाना न आया ये गाना बहुत पसंद आता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमसे आंख मिलाना बीए पास करके ये गीत इन्हें बेहद पसंद है। एक श्रोता को किशोर कुमार जी का एक गाना पसंद है जगत नारायण की जय जय बोलो और नगद नारायण छोड़ो, उसमें भी बीच में बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, शब्द आते हैं जो उन्हें बेहद पसंद हैं। वहीं एक श्रोता को मुझे संगम फिल्म का गीत लिखते हैं कि मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया ये गाना बेहद पसंद आता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि क्या बात है आज तो आपने मेरी मनपसंद का ये सबसे मनपसंद गीत सुनवा दिया जिसमें किशोर कुमार की आवाज है। और मैं अभी यही बताने वाला था कि मुझे ये गीत बहुत पसंद है, आपने जो सवाल पूछे थे उसका पहला जवाब यही है कि किशोर कुमार का गाना ये गीत हमें बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक गीत याद आ रहा है मैं हूं झुमझुम झुमझुम झुमरू ये गीत बहुत पसंद आता है। वहीं एक श्रोता को हेलन जी पर फिल्माया गया गाना आ जाने जा इसमें जिंगा लाला हूं जो शब्द आते हैं वो इन्हें बेहद पसंद आते हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये शालीमार फिल्म का गाना है, इसमें ये पंक्तियां आती हैं झिंगा लाला हुर हुर ऐसे करके आती हैं। तो आप कहते हैं कि इसका मतलब आज तक समझ नहीं आया मंदाकिनी जी, लेकिन गाने का आनंद तो आप उठाते हैं ना। एक श्रोता को इलू इलू गाना जो था वो बहुत पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नीलकमल पिक्चर का गाना है खाली डिब्बा खाली बोतल ये बहुत अच्छा लगता है। एक श्रोता को पांच रुपया बारह आना गाना जो है किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया हुआ वो बेहद पसंद आता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि पड़ोसन फिल्म का गाना इन्हें बेहद पसंद है, साथ ही फिल्म झुमरू का गाना आपने लिखा है जा रे जा तू मुंह धो के आ, जहां किशोर कुमार और आशा भोंसले इस गीत को गाते हैं वो गीत बहुत पसंद आता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे गे गे गे गे गेली जरा टिम्बकटू वाला गाना बहुत पसंद है। और एक श्रोता को पड़ोसन फिल्म का गाना बहुत अच्छा लगता है, साथ ही एक श्रोता ने लिखा है कि डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा ये गाना हमें बेहद अच्छा लगता है। आइए चलते हैं अगले गीत की ओर। खय्याम साहब का संगीत है, साहिर लुधियानवी के बोल हैं, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजें हैं, फिल्म का नाम है त्रिशूल।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि इन अटपटे और अर्थहीन जैसे लगने वाले शब्दों को लोगों के दिल तक पहुंचाने में सचमुच संगीतकार का बहुत बड़ा योगदान होता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत दिनों बाद ये तक धुम धुम गाना सुना, अटपटा है मगर सुर लय के कारण बहुत ही कर्णप्रिय लगता है। एक श्रोता लिखते हैं कि कोई भी गाना निरर्थक नहीं होता, जो संगीत मन को भा गया वही अर्थपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, कभी गीत निरर्थक नहीं होता। हमने कहा कि हमें कुछ शब्द ऐसे लगते हैं जो बेतुके से लगते हैं या निरर्थक लगते हैं, तो लेकिन उनका इस्तेमाल कितने खूबी के साथ किया गया है कि वो गीत हमारे मन में एक छाप छोड़ जाता है, तो उन गीतों का जिक्र आज हम कर रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बेतुके शब्दों से बने गीत अक्सर आपस में खेली जाने वाली अंतराक्षरी की शान होते हैं, जिसे सब बढ़ चढ़ कर गाना पसंद करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं, आप हर बार नया विषय खोजकर लाती हैं जो आपके रिसर्च वर्क को दर्शाता है। दूसरे, आपकी इबारत एकदम नपीतुली है, टू द पॉइंट, कोई फालतू बात नहीं है, गागर में सागर की तरह। आज अटपटे शब्दों वाले गीत विषय पर मुझे एक अलग तरह का गाना याद आ रहा है, मोहम्मद रफी साहब और शमशाद बेगम की आवाज में है और तारा रम पम पम पम करके ये गाना है जो इन्हें बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो हमारा दिमाग सुन्न हो गया है कुछ भी गाने समझ नहीं आ रहे हैं। अरे आप इस कार्यक्रम को सुनने के बाद तो आपको लगा होगा ना कि आज हमने किस तरह के गीतों को चुना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज प्रस्तुत गद्य में इबारत की बात सामने आई है, आज कुछ ऐसे गीतों की बाहर है जिनके शब्दों में अर्थ भले ही हमें शब्दकोश में न मिलते हों लेकिन उनकी धुन सुर लय ताल हमारे जहन में है ना, कितनी अच्छी बात। अरे दिल तो अभी से ही हक्कू बक्कू करने लगा है। और आपने कई शब्दों का जिक्र भी किया है जो किशोरदा अपने गानों में अक्सर करते हैं, ओ पांडुबा है ना, इस तरह के गाने किशोरदा ने बहुत गाए हैं, उनका जिक्र आपने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज के गीतों की गणना हास्य गीतों में की जा सकती है और हर जीवन में हास्य की बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि जीवन के आपाधापी में प्राय सभी के चेहरे से हंसी गायब हो गई है। इस दृष्टिकोण से आज का ये इबारत प्रशंसनीय है, अपितु सराहनीय भी है। अब देखिए ना, पुराने किशोर कुमार अभिनीत फिल्म आशा में किशोर कुमार ने एक गीत गाया है इना मीना डी का और संजीदगी से भरा वो गीत है, लेकिन जब उसे सुनते हैं तो उसका कुछ और ही रूप नजर आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए, जब इस गाने का जिक्र हो गया है तो सुन लेते हैं यही गीत। सी रामचंद्र यानी चितलकर साहब का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण की भूल है, किशोर कुमार की आवाज है, फिल्म का नाम है

0: चाहे खुशी खुशी उसे ये दिल दे दूंगा, कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न लूंगा, मगर ये कहूंगा
1: क्या
0: यही है यही है यही तो है वो।

तो किशोर कुमार और साथियों को आपने सुना, फिल्म का नाम था आशा और ये गीत तो हमने कई बार कई जगह गुनगुनाया भी है और कई कार्यक्रमों में हमने इस गीत को बखूबी और लोगों को गाते सुना भी है। लोग कोशिश करते हैं कि इस गीत को किस तरह से हास्य से परिपूर्ण बना दिया जाए, है ना? आपने भी कोशिश की कभी इस गीत को गाने की, बताइएगा। और अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं जहां हम आपको सुनवा रहे हैं बप्पी लाहिड़ी के संगीत निर्देशन में इंदिवर के बोल, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है हिम्मत वाला। बताइए इसमें कौन सी पंक्ति है जो हमें थोड़ा सा अटपटी लगती है लेकिन बड़ी मजेदार है?

0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत संगीत की उस अनोखी दुनिया की ओर ले जाती है जहां हर बात का अर्थ होना जरूरी नहीं होता। कभी कभी कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका कोई स्पष्ट मतलब नहीं मिलता, फिर भी वे धुन के साथ मिलकर यादों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। ऐसे ही गीतों से जुड़ा है आज का ये कार्यक्रम और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारे गानों का जिक्र भी किया है जिनमें हमें ये अटपटे और चटपटे शब्द सुनाई देते हैं और वो गीत हमेशा के लिए यादगार बन भी जाता है। फिलहाल आज का कार्यक्रम यहीं तक और फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में। अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखिए, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

श्रोताओं नमस्कार, त्रिवेणी में आपका स्वागत है। हम सूर्य को अक्सर एक पिता की उपाधि देते हैं, जो अपने बच्चों के जीवन को सुचारू रूप से चलाते रहने के लिए लगातार जलकर इस धरती को प्रकाशमान और जीवित रखता है। किंतु सूरज की इन जीवनदायी किरणों में कुछ हानिकारक पराबैंगनी किरणें भी शामिल हैं, जो हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण को

नुकसान पहुंचाती हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे पिता के प्यार के साथ उनका गुस्सा। और उस समय याद आती है माँ। यहाँ सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाने के लिए एक माँ की तरह हमारी ढाल बनती है ओजोन परत, जो इन पराबैंगनी किरणों को हम तक पहुँचने ही नहीं देती और हमारी रक्षा करती है।

ओजोन की ये परत तो हमारी रक्षा करती है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफार्म जैसी कई खतरनाक रसायनों के लगातार प्रयोग से हमने इस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया है और ये पतली हो गई है, जिसे ओजोन होल या ओजोन छिद्र कहा गया। इसका नुकसान ये हुआ कि सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें हम तक पहुंचने लगी हैं और त्वचा के कैंसर, असमय मोतियाबिंद, कमजोर होती इम्यूनिटी के साथ साथ पर्यावरण को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन देर से ही सही, हमने ओजोन परत के संरक्षण की ओर कदम बढ़ाया, क्योंकि हमें इसका महत्व समझ आ चुका है।

ओजोन परत के संरक्षण की ओर जागरूकता का परिणाम ये हुआ कि अब ओजोन होल कुछ हद तक बंद होने लगा है और हानिकारक पराबैंगनी किरणों के प्रभाव भी कम होने लगे हैं। इस जागरूकता को बनाए रखने के उद्देश्य से ही प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए हम प्रतिदिन छोटे छोटे प्रयासों से अपना योगदान दे सकते हैं, जैसे पुराने फ्रिज एयर कंडीशन की समय समय पर सर्विसिंग करवाते रहें, उपयोग न होने पर एसी न चलाएं, हानिकारक रसायनों वाले हेयर स्प्रे और अन्य पदार्थों का प्रयोग न करें, पुराने उपकरणों को रिसाइकल के लिए दें, यूं ही ना फेंकें, वाहन का इस्तेमाल तभी करें जब अति आवश्यक हो, अन्यथा सार्वजनिक परिवहन या साइकिल का उपयोग कर सकते हैं, CFC मुक्त उपकरणों को ही खरीदें। इस तरह ओजोन परत के संरक्षण की ओर कदम बढ़ाएं ताकि प्रकृति से मिले अनमोल उपहारों का केवल लाभ ही ना उठाएं बल्कि इनके महत्व को भी बनाए रखें, क्योंकि इनके बिना जीवन संभव नहीं।

तो प्रकृति के उपहारों का लाभ उठाने के साथ साथ कीजिए उनका संरक्षण भी, ताकि बनी रहे जिंदगी। इस संदेश के साथ आज की त्रिवेणी संपन्न होती है। दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन। सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौसी ड्रोन को रोककर नष्ट किया। हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। हौसी ने शहर को निशाना बनाने से इनकार किया। और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर से जुड़े प्रस्तावों में देशहित को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर दरों में कमी, छूट या रियायत की मांग से पहले राष्ट्रहित पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री आज बेंगलुरु में इंटरनेशनल टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस फाउंडेशन द्वारा आयोजित दो दिन के सम्मेलन न्यू एज टैक्सेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थी। श्रीमती सीतारामन ने शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और थिंक टैंक से कर नीति पर स्वतंत्र शोध को बढ़ावा देने का आग्रह किया।
1: The question should not only be
2: सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि इस साल के बजट में हमारे क्षेत्र को क्या मिलेगा। बड़ा सवाल यह है कि अगले दो दशकों में भारत की टैक्स व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्योंकि देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए टैक्स नीतियों पर बेहतर और व्यापक शोध की जरूरत है। साथ ही जहां भी संभव हो ऐसी नीतियों के व्यावहारिक विकल्प सामने आने चाहिए जिन्हें वास्तव में लागू किया जा सके।
0: विदेश मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी राजनयिक को तलब कर समुद्र में पाकिस्तानी नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। मंत्रालय ने कहा कि इससे भारतीय नौसेना की एक पाकिस्तानी नौसैनिक इकाई से टक्कर हुई। घटना अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास और सैन्य टुकड़ियों की आवाजाही की अग्रिम सूचना संबंधी समझौते का सीधा उल्लंघन है। मंत्रालय ने पाकिस्तान के प्रभारी राजनयिक से संबंधित पाकिस्तानी अधिकारियों को ये बताने को कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करना चाहिए। मंत्रालय ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय प्रभारी राजनयिक को भी पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के समक्ष विरोध दर्ज कराने का निर्देश दिया। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से तीन दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। जनरल सेठ रूस के थलसेना के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल आंद्रेई मोर्दोवीचेव के साथ पेशेवर सैन्य सहयोग और प्रशिक्षण सहित आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वे मॉस्को में राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे और रूसी रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भूटान की दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नीति आयोग के इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली शीर्ष प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा हैं। इस सूचकांक का शुभारंभ आज नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा किया गया, जिसमें उपराष्ट्रीय स्तर पर ई गतिशीलता के लिए नीतिगत ढांचा और क्रियान्वयन परिणाम दोनों का विवरण दिया गया। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बदलाव विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। श्री गौबा ने कहा कि 2040 तक सभी नई कार बिक्री का 40% विद्युत वाहन होंगे। उन्होंने बताया कि 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अधिकतम स्कोर 84 रहा, जो 2024 में 77 था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। ये सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। एक रिपोर्ट।
4: सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 6 देशों के पवेलियन, 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक समर्पित स्टार्टअप पवेलियन भी शामिल है। भारत के प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी सेमिकॉन इंडिया को संयुक्त रूप से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सहित पूरे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के उभरते रुझानों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पैनल चर्चा और रणनीतिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। यह सम्मेलन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए साझेदारी, निवेश के अवसर, तकनीकी सहयोग को तलाशने तथा विश्वसनीय वैश्विक सेमीकंडक्टर भागीदार के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेन देन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रूपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रूपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी पीटूएम लेन देन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रूपए से अधिक के P2M लेन देन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रूपए या उससे अधिक के बड़े लेन देन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रूपए प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज कोलकाता में करोड़ों रुपए के चिटफंड मामले में 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। ईडी की एक टीम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ उत्तर कोलकाता के नारकेलडांगा इलाके में एक कारोबारी के घर पहुंची। सूत्रों के अनुसार कारोबारी ने आकर्षक रिटर्न का वादा कर लोगों से धनराशि जुटाई और इसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया। इसी मामले में उत्तर और दक्षिण कोलकाता के 5 अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान कल से देश भर में शुरू होगा। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। ये विषय स्वच्छ और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सामूहिक भागीदारी और साझा जिम्मेदारी के महत्व को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
6: साल 2017 में शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह अभियान हर साल आयोजित किया जाता है और देश भर के लोगों को अपने आसपास की सफाई की जिम्मेदारी लेने और स्वच्छता में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर के अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत पौधारोपण भी किया जाएगा। राज्यों से अपील की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा पूरी होने के अवसर पर 7 अक्टूबर को विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित करें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। इससे खुले में शौच की समस्या खत्म हुई है और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को भी बढ़ावा मिला है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी दल के साथ हैं।
7: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। केंद्रीय टीम ने पटना जिले के मनेर और दानापुर के दियारा क्षेत्रों का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हो रहे इस दौरे के दौरान श्री चौहान राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा प्रभावित किसानों और परिवारों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
0: मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी आज इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली में शाम को हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिजली चमकने के साथ तूफान की आशंका है। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने इस अवसर पर कहा कि भारत ने पर्यावरण की रक्षा के साथ टिकाऊ आर्थिक विकास का उदाहरण पेश किया। मुंबई में 32वें विश्व ओजोन दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत तय लक्ष्यों को विकास से समझौता किए बिना हासिल किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के F-15 जेट को मार गिराया है। हौसी का ये भी कहना है कि पिछले कुछ दिनों में सऊदी अरब ने उनके विभिन्न जिलों पर 450 से ज्यादा हमले किए हैं। एक रिपोर्ट।
2: हौसी सेना के प्रवक्ता यहया सरी ने बताया है कि यमन के मारिब प्रांत के ऊपर सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को मार गिराया गया है। उनके अनुसार स्थानीय स्तर पर बनी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से सऊदी लड़ाकू विमान को निशाना बनाया गया। हालांकि सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इन हमलों में आम नागरिक हताहत हुए हैं। इससे पहले आज सुबह इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र स्थल मक्का में सऊदी अरब के सिविल डिफेंस ने संभावित हवाई हमले की चेतावनी जारी की है। हौसियों ने मक्का को निशाना बनाने से इनकार किया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 297 अंक बढ़कर 74,301 पर रहा। आज भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी की जयंती है।
9: वासुदेव कमल
10: कर्नाटक संगीत की रानी कहे जाने वाली MS सुब्बुलक्ष्मी भारत की सबसे सम्मानित शास्त्रीय गायिकाओं में से एक थी। 16 सितंबर 1916 को तमिलनाडु की मदुरै में जन्मी सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार बनी। डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी ने अपनी पहली रिकॉर्डिंग 10 साल की उम्र में की थी। कुंभकोणम में महामहम उत्सव में उन्होंने अपनी पहली सार्वजनिक प्रस्तुति दी जब वे महज 16 साल की थी। डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी ने कई भाषाओं में प्रदर्शन किया जिनमें हिंदी, बंगाली, गुजराती, तमिल, मलयालम, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ शामिल है।

0: लक्ष्मी ने अभिनय के क्षेत्र में भी प्रवेश किया और कई फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत वर्ष 1938 में फिल्म सेवा सदन से की। फिल्म मीरा में उनके अभिनय को भी काफी सराहा गया।
1: परमेश्वर के सामने राजा क्या, स्वामी क्या, गुलाम क्या, गौवें चराने वाले ग्वाल बालों के साथ मायावी कृष्ण को नाच गाना नहीं भाया, दुर्योधन के आलीशान महल को तज कर दीन विदुर की कुटिया को भगवान ने क्या नहीं अपनाया।
0: पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार समेत कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। समाचार कक्ष से वैष्णवी। इस अवसर पर देशभर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने भी उनके योगदान का स्मरण किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन। सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौसी ड्रोन को रोक कर नष्ट किया, हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, फिल्म का नाम आरती, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार रोशन।

ये स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के थे। फिल्म का नाम था आरती। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म आशिक, आवाज मुकेश की, शब्दकार शैलेंद्र हैं और धुन शंकर जयकिशन की।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

कार्यक्रम का अगला गीत SH बिहारी का लिखा हुआ, रवि का संगीतबद्ध किया हुआ, आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की, फिल्म का नाम अपना बना के देखो।

0: अपना बना कर देखो।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
1: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है माँ बेटा। गाने वाले कलाकार लता मंगेशकर और मुकेश। गीत रचना प्रेम धवन की और संगीत हेमंत कुमार का है।

0: कर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला और गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: और आइए अब सुनते हैं फिल्म रंगोली का दो गाना, स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के। इसे शैलेंद्र ने लिखा है और तर्ज शंकर जयकिशन की है।

और आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम है बंबई का चोर। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार रवि हैं।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
2: सुनिए,
3: कहिए।
1: सुनिए एक खुशखबरी।
3: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियाँ फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: सुनिए,
3: कहिए।
1: सुनिए एक खुशखबरी।
3: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियाँ फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
4: और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम समाप्त होता है। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली बस कुछ ही पलों में।

0: की सहेली
1: सभी सुनने वालों को, सखियों को, सहेलियों को, सखाओं को, श्रोताओं को चंचल वर्मा का प्यार भरा नमस्कार,
2: और सभी श्रोताओं को, हमारी सखियों को दीपा माहेश्वरी का, चंचल आपको भी
1: दीपा माहेश्वरी का, आपको भी
2: हेल्दी नमस्कार।
1: हाँ जी, हेल्दी नमस्कार। और त्योहार आते हैं ना, तो उस वक्त हम इतने कई बार मसरूफ हो जाते हैं ना कि सेहत की तरफ ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हम बिल्कुल सुबह जल्दी उठ रहे होते हैं, रात को देर से सो रहे होते हैं, और खाने पीने का समय है वो भी अनियमित हो जाता है, खाने पीने की जो चीजें हैं वो भी कुछ गड़बड़ा जाती है।
2: बिल्कुल, और खासतौर पर जो घर की महिलाएं हैं, क्योंकि सबको देने में, सबके लिए ध्यान रखने में, और जो घर में मेहमान आते हैं उनका ख्याल रखने में कहीं अपना ख्याल पीछे छूट जाता है।
1: बिल्कुल, सबसे पहले जो आगंतुक हैं, मेहमान हैं
2: जी,
1: हमारे अतिथि हैं, उनको हमारी कोशिश रहती है कि उनको पहले परोसा जाए, और सबका करते करते इतनी देर हो जाती है कि जो दोपहर के भोजन का समय होता है एक से दो के बीच का, तीन बज जाते हैं, चार भी बज जाते हैं।
2: हाँ बिल्कुल, ऐसा ही कुछ होता है। और आज तो बहुत कुछ होने वाला है हमारे कार्यक्रम।
1: बिल्कुल बिल्कुल, त्योहार की हम बात कर रहे हैं ना, क्योंकि ये हमारी विरासत है, धरोहर है, हमारी परंपराएं हैं जिन्हें हम निभा रहे हैं
2: जी।
1: और यही अगर हम नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश दे पाएंगे।
2: बात तो बिल्कुल सही है, और बहुत सारे संदेश इस बात को लेकर के हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी है, इसीलिए बात होगी। पहला विषय जो है हमने चुना है आज के लिए कि त्यौहार हमारी धरोहर, हमारी परंपरा, इस पे आप क्या सोचते हैं और आप कितना इसको आगे बढ़ाने में इसकी कोशिश जारी रख रहे हैं।
1: बिल्कुल, अगर कोई चीज को आगे बढ़ाना है, हमारी धरोहर को, तो आदान प्रदान बहुत जरूरी है ना।
2: अरे बिल्कुल,
1: क्योंकि जब तक हम चीज कोई किसी को देंगे नहीं, वो उसको ग्रहण कैसे करेगा, और वो ग्रहण करेगा तभी तो आगे पहुंचाएगा, यही तो होता है आदान प्रदान।
2: बिल्कुल सही कहा। और देखो ना भाई, आदान प्रदान अच्छी चीजों का हो वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप पर्यावरण में कुछ ऐसे विषैले पदार्थ लगातार अगर निकालते चले जा रहे हैं, तो फिर देखिए ओजोन परत के संरक्षण में गंभीर विषय अब बन चुका है वो, और उसमें कई सारी तकलीफें आ रही हैं। और यही बातों को समझने के लिए आज हम ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं।
1: बिल्कुल, इस पर भी विस्तार से बात होगी, और हमारे सुनने वाले शायद इस बात को समझ रहे हैं कि हम सीधे सीधे विषय नहीं बता रहे हैं, लेकिन बातों से उन्हें अंदाजा हो गया कि हम किन चीजों के बारे में, किन विषयों को लेकर आज बात करने वाले हैं।
2: अरे भाई इतना देखिए, गंभीर ना हो जाइएगा, आज व्यंजन भी है, क्योंकि मोदक के कई सारे प्रकार चंचल हमें बनाने हैं, और बहुत सारे संदेश आए हैं, और बड़े मजेदार कुछ रेसिपीज भी हमारी सखियों ने लिख भेजी है।
1: तो तुमने ओजोन दिवस की जब बात की, तो मुझे याद आया कि और भी दो महत्वपूर्ण दिवस आज हम मना रहे हैं। एक तो है हृदय में हस्तक्षेप द्वारा उपचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और आम बोलचाल की भाषा में डॉक्टर्स इसे इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी दिवस कहते हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2022 में घोषित किया गया था, और इसी दिन 16 सितंबर यानी 2077 को डॉक्टर एंड्रियास ग्रुटिजिक ने पहली बार एक सफल एंजियोप्लास्टी की थी, और इसीलिए दिल की जो बीमारियां हैं, जो सर्जरी है, उसके बारे में जागरूकता हो, इसलिए दिवस हम मना रहे हैं।
2: बिल्कुल, और ये दिवस के साथ याद आया चंचल, एक और मुख्य दिवस है आज, है दक्षिण के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो सितंबर 2023 में इस दिन के आयोजन का फैसला हुआ था, और 9 जनवरी 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये प्रस्ताव पारित करके 16 सितंबर को ये आधिकारिक दिवस घोषित किया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है ग्लोबल साउथ यानी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया के विकासशील देशों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी की कमी को पूरा करना, ताकि गरीबी, असमानता या जलवायु परिवर्तन जैसी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो सके, और ये देश पीछे कहीं ना रह जाएं।
1: बिल्कुल, जलवायु की बात होती है तो ओजोन की बात भी होती है, हम विस्तार से इन सब को लेकर बात करेंगे, लेकिन पहले गीत सुन लें।
2: गीत भी सुनेंगे भाई, साड़ियों का जो लगाव है उससे कैसे हम पीछे।
1: हाँ भाई, विषय बताते बताते हम ये तो भूल ही गए कि आज साड़ियों की बात भी होनी है, तो आज कौन सी खास साड़ी की बात होगी।
2: आज हम करेंगे मोठड़ा साड़ी, आप बताइएगा कौन से प्रदेश से आती है ये साड़ी।
1: जी

0: यशुदास की आवाज में बहुत खूबसूरती गीत हम सुन रहे थे, और गीत से पहले बहुत सारे महत्वपूर्ण दिवस की भी हमने बात की। इन्हीं में से एक है ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और ओजोन दिवस भी कहते हैं इसे हम। सूरज की प्रकाश, सूरज का जो प्रकाश है ये हमारे जीवन को संभव बनाता है, लेकिन जो ओजोन परत है वो जीवन के रूप में से संभव बनाती है जिसे हम जानते हैं। और ओजोन परत गैस की एक बहुत नाजुक ढाल की तरह होती है जो पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। इस तरह से ये पृथ्वी पर जीवन को संरक्षित करने में भी बहुत मदद करती है।
1: बिल्कुल, और अगर ओजोन परत ना होती तो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ज्यादा होती।
0: हाँ।
1: ये समताप मंडलीय परत एक अदृश्य ढाल की तरह हमें सूर्य की ज्यादातर हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। चंचल, ओजोन परत यूवीबी जो नाम के यूवी प्रकाश के जो हिस्से हैं उससे अवशोषित उसे अवशोषित कर लेती
0: है। बिल्कुल, आम बोलचाल की भाषा में अल्ट्रा वायलेट रेज को जानते हैं, तो वो सीधे हम तक ना पहुंचे इसीलिए बहुत झिल्ली जैसी एक लेयर होती है।
1: हाँ, तो ये कई तरह से कई प्रकार के हानिकारक प्रभाव हम पर डालती है, और शायद बहुत कम लोग इस बारे में जानकारी रखते हैं कि जीवन के लिए ऑक्सीजन से ज्यादा जरूरी ओजोन।
0: हाँ, सही कहा।
1: और इस दिवस का आयोजन करने के कारण भी ये खास है, ओजोन परत के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ ही इसे बचाने के समाधान की ओर ध्यान खींचना बहुत आवश्यक है।
0: बिल्कुल, जिस तरह से हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं तो ओजोन परत जो है जो हमारी सुरक्षा कर रही है उसको भी हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसीलिए इस बारे में ध्यान खींचा जा रहा है। और ओजोन परत की सुरक्षा के लिए इसे खतरनाक गैसों से बचाना है। सबसे ज्यादा खतरनाक गैसों में कुछ हैं CFC जिसे क्लोरोफ्लोराइड कार्बन के नाम से हम जानते हैं, हेलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन और मिथाइल ब्रोमाइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये कुछ ऐसी गैसें हैं जो कि इस परत को नुकसान पहुंचाती हैं। और जब 1970 के दशक के अंत में वैज्ञानिकों को इस बारे में पता चला कि मानवता इस सुरक्षा कवच में छेद कर रही है, यानी कि हम ही लोग इसको बिगाड़ रहे हैं, तो जब उन्होंने इसके प्रति चिंता जताई कि इस तरह से अगर ये होता रहेगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, और हमारा हम जो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, इनसे जो गैस निकलती है ना, ये वही गैसें हैं जो इस परत को नुकसान पहुंचाती हैं।
1: बिल्कुल, और जो हमारे जो निजी साधन है परिवहन के, उनका अधिक उपयोग करने से भी बचना है, और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना है, या साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं, पैदल चलने का प्रयास कर सकते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल जो बहुत ही अच्छे ये समाधान है। इससे पहले हम घर में भी काम कर सकते हैं।
0: हाँ।
1: वो कैसे कि भाई अगर आप हर कमरे में एयर कंडीशन चलाकर हर परिवार का एक एक सदस्य अलग अलग कमरे में बैठेगा और हर रूम का अलग अलग AC चलाएगा, तो बताइए कि कितना हम पर्यावरण का नुकसान पहुंचा रहे हैं।
0: बिल्कुल, वो गैस कितनी ज्यादा हवा में फैल रही है, इसके अलावा आपका भी बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आर्थिक नुकसान भी होता है, तो दोनों ही नुकसान को हम बचा सकते हैं, रोक सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, और साथ में बहुत जरूरी है कि आप AC को एक या तो कमरे में चला लीजिए, फिर भी ना संभव है तो कुछ इस तरह से कीजिए कि सारे लोग एक वक्त तो एक ही जगह पर बैठे। उसके साथ में बहुत जरूरी है कि आप खिड़की दरवाजे थोड़ी सी देर खुले रखिए, स्वच्छ और शुद्ध हवा का आवागमन भी घर के लिए बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, और इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही है कि लोगों में ओजोन परत के बचाव को लेकर उन्हें जागरूक किया जा सके, इसे संरक्षित करने के संभावित उपाय खोजे जा सकें। इसे देश दुनिया ओजोन परत पर बातचीत करती है और सेमिनार भी आयोजित किए जाते हैं ताकि इसकी सुरक्षा हो सके।
1: बिल्कुल, और चंचल ये दिन हमें याद दिलाता है कि ओजोन न केवल पृथ्वी पर बल्कि जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी ओजोन परत की रक्षा करना हमें आज से ही जारी रखना होगा।
0: बिल्कुल, जिस तरह से हमारे लिए हवा पानी जरूरी है, सूरज की किरणें भी जरूरी हैं, तो सूरज खुद जलकर हम तक ये रोशनी प्रकाश और बहुत सारी चीजें हम तक पहुंचाता है, वो जलता रहे लेकिन उसे कोई नुकसान ना पहुंचे।

0: तो भाई सूरज की सुरक्षा के लिए, यानी कि हम सब सूरज की जब रोशनी हमें मिलती है तो वो अल्ट्रा वायलेट रेज सीधे हम तक ना पहुंचे, उसकी सुरक्षा के लिए ओजोन परत की सुरक्षा बहुत
1: बहुत
0: जरूरी
1: जरूरी
0: है।
1: है, और
0: और
1: हमारे पर्यावरण के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी
0: हमारे
1: है।
0: श्रोता भी इसी बारे में बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, और उनका भी यही कहना है कि ये एक महत्वपूर्ण परत है और शहकारी पदार्थों का उपयोग कम करना जरूरी है, पर्यावरण अनुकूल साधनों को अपनाना होगा, लोगों में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है, ओजोन परत की रक्षा हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य की रक्षा करना है। ये
1: जी
0: लगभग सभी
1: सभी
0: हमारे
1: के,
0: श्रोताओं ने
1: हाँ
0: लिखे
1: जी
0: थे।
1: हाँ
0: जी
1: बिल्कुल इसी तरह के आए हैं। और देखिए ना, जब ये सारी बातें होती है जागरूकता की, तो एक चीज की और जागरूकता आ जाती है कि जब त्योहार आ रहे हैं तो मन कैसे एकदम जागा जागा सा रहता है, बिल्कुल है ना, खुश खुश रहता है, और घर में सारा चहल पहल रगी रहती है। सुबह जल्दी उठना है कोई परिवार का सदस्य, क्योंकि कुछ तैयारी करके देर से सोया है, तो कुछ परिवार के सदस्य जल्दी उठ करके उसकी तैयारी कर रहे होते हैं।
0: ये देखिए
1: और
0: ना, ये जो सावन का महीना आता है ना,
1: जी
0: इसमें तीज, फिर रक्षाबंधन, फिर खत्म होते होते फिर ये जो आते हैं गणेश चतुर्थी, और महाराष्ट्र में तो चलिए बहुत धूमधाम से मनाया ही जाता है, अब तो देश के हर हिस्से में ये
1: बिल्कुल
0: बहुत धूमधाम से मनने लगा है।
1: जी।
0: इसके
1: और
0: खत्म होते होते कुछ दिन बाद ही फिर नवरात्रि आ जाएंगे, फिर दिवाली की शुरुआत हो जाएगी, और यूं जो सिलसिला है ना, अभी रुकने नहीं वाला है।
1: बिल्कुल, वो इसलिए रुकने नहीं वाला है चंचल, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, हमारी परंपराएं हैं, और जीवन में त्योहार ये सिर्फ कैलेंडर पे आने वाली तारीखें नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, परंपरा और भावनाओं से जुड़े खूबसूरत अवसर होते हैं।
0: बिल्कुल
1: और हमारे देश में अगर त्योहारों का देश कहा जाए तो कोई बड़ी बात है ही नहीं इसमें। ये
0: हाँ
1: अलग अलग धर्म है, भाषाएं हैं, और अलग अलग क्षेत्रों के लोग अपने अपने त्योहार मनाते हैं, लेकिन हर त्योहार के पीछे एक भावना दिखाई देती है, खुशियां बांटना और लोगों को एक दूसरे के करीब लाना।
0: देखिए, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग त्योहार तो होते ही हैं दीपा, लेकिन एक ही त्योहार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है।
1: बिल्कुल
0: कहीं खान पान का थोड़ा सा फर्क होता है, कहीं पहनावे का, तो कुछ कुछ रीति रिवाजों का बहुत थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन कुल मिला के हमें कह सकते हैं कि वो चीजें होती मिलती जुलती ही हैं, जो उनका मतलब है, अर्थ है, वो एक ही होता है।
1: जी
0: अब दिवाली हो, होली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरुपर्व, पोंगल, गणेश उत्सव, नवरात्र, हर त्योहार का जो है अपना एक अलग रंग होता है, स्वाद होता है, और एक संदेश लेकर भी वो आता है।
1: बिल्कुल
0: त्योहारों के माध्यम से हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है वो अपने जड़ों से जुड़ती हैं, रीति रिवाजों को जानती हैं, और जो हमारे पूर्वज हैं वो बड़े प्यार से इन चीजों को संजो कर रखते हैं।
1: और त्योहारों की सबसे सुंदर बात चंचल ये लगती है कि इसमें परंपरा के साथ अपनापन जुड़ा होता है। और त्योहार आते ही देखो ना, घर में साफ सफाई शुरू हो जाती है, तरह तरह के पकवान बनते हैं, फिर घर भी सजता है, रिश्तेदारों को और मित्रों को हम जो मिलने मिलाने का एक सिलसिला सा शुरू हो जाता है, कहीं पर हम आमंत्रण दे रहे हैं, कहीं पर हम आमंत्रित हैं, इस
0: जी
1: तरह की बातें भी होती है। और कई बार तो त्योहारों का इंतजार इसलिए भी होता है कि इसी बहाने परिवार के सभी लोग एक साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, और फिर वो पुरानी यादों को फिर से जिया जाएगा।
0: बिल्कुल, जब हम दिवाली मना रहे हैं तो पिछली दिवाली पर क्या हुआ था ये याद करते हैं,
1: हाँ
0: इस साल जब हम गणेश उत्सव मना रहे हैं तो याद
1: जी
0: करते हैं कि पिछले साल मूर्ति कैसी थी, कौन कौन मेहमान आए थे, किस तरह से धमाल मस्ती हुई, क्या पकवान घर में बनाए गए थे। ये पिछली जो बातें होती है ना, वो यादों की एक फहरिस्त तैयार होती जाती है।
1: बिल्कुल। और परंपराएं केवल पूजा पाठ या रस्मों तक सीमित नहीं होती हैं, इनसे पीछे जीवन को बेहतर बनाने की सीख भी छिपी होती है चंचल। जैसे दीपावली हमें अंधकार पर प्रकाश का विजय का संदेश देती है, होली आपसी भेदभाव भुलाकर प्रेम के रंग में रंगने की सीख देती है, फिर देखिए ना, ईद हमें भाईचारे और साझेदारी का संदेश देती है, तो क्रिसमस प्रेम और करुणा की भावना हमें जगाता है हमारे अंदर। यानी हमारे त्योहार हमें हर साल याद दिलाते हैं, मानवता, प्रेम और सद्भाव ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।
0: और हमारे एक संदेश में हमें बताया गया है कि त्योहार हमारी धरोहर और हमारी परंपराएं हैं। हम सभी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि पूरे साल हम विभिन्न त्योहार उत्साहपूर्वक मनाते हैं जो हमारी धरोहर हैं, और हम परंपरा के अनुसार इन्हें मनाते हैं। जैसे इस समय हम गणेश उत्सव मना रहे हैं, हमने घर में पूजा के कमरे में मिट्टी से बने हुए गणेश जी की स्थापना की है। 11 दिनों तक सुबह और शाम घर के सभी सदस्य आरती में उपस्थित रहते हैं। एक बेटी है जो कि बाहर जॉब करती है, बाहर उसकी पोस्टिंग है, लेकिन फिर भी वो वीडियो कॉल के माध्यम से इस पूजा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा देती है, और यही हमारी धरोहर है, हमारी परंपरा। परंपरा है। कई सालों से इस परंपरा को हमारे घर के सभी बड़े निभा रहे हैं, इसे हमने भी कायम रखा है। यही तो बात हम भी कह रहे हैं ना कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को पूंजी के रूप में इन चीजों को सौंप कर जाने वाले हैं।
1: और एक हमारे जो हमारी सखी है उन्होंने कुछ अलग अंदाज में लिखा है, वो कहती है, आए त्योहार खुशी की बहार, दीप जले सजे घर के द्वार, रंग बिरंगे उमंगों का मेला, रह न जाए कोई अकेला, मिलकर गाए खुशियां मनाए, प्यार का संदेश हम सब पहुंचाएं।
0: तो बस हर दुख छोड़कर हर चीज को भुलाकर हम भी खुशियों की रंगरेलियां मनाएं।
1: चलिए

0: भाई चंचल, देखिए गम छोड़ना तो चाहिए बिल्कुल, त्योहारों में मिलने का जो असली अर्थ तो वही है। साथ में हम ये परंपराएं क्यों मनाते हैं, क्यों ये हमारी धरोहर है, अपने आने वाली पीढ़ी यारे हमारे बच्चों को जरूर इस बारे में बताना चाहिए। क्यों विशेष व्यंजन बनते हैं, जैसे कि प्रकृति के अनुरूप जो जो उस वक्त उपलब्ध होते हैं,
1: जी
0: चाहे
1: जी
0: आप धान की बात कीजिए, अनाज की बात कीजिए, फल सब्जियां जो भी उपलब्ध होती हैं उस वक्त प्रकृति के हिसाब से, जो भी वो पैदावार होती है
1: जी
0: उनसे जुड़ी हुई व्यंजन जब बनते हैं, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, उसके पीछे क्यों ये बनाया जाता है, इस पे
1: हाँ
0: विचार विमर्श हो, उस पे डिस्कशन घर में बैठ के कीजिए, आप देखिए इतना आनंद आएगा और बच्चों में जो ज्ञान वर्धन होगा उसके बाद वो वाकई में हमारी परंपराओं और हमारी इन धरोहरों की जो असली जो महत्वपूर्ण इसकी
1: जी
0: महत्ता है उसको समझेंगे।
1: बिल्कुल। बच्चों के ऐसे सवाल होते हैं कि भाई आप गणपति जी को भोग लगाते हैं तो चावल के आटे वाला ही मोदक क्यों
0: क्यों
1: लगाते
0: लगाते
1: हैं,
0: हैं
1: अन्नकूट पर पूजा करते हैं तो क्यों उस समय ये वाली ही सब्जियां बनती हैं। जैसे
0: जी
1: बहुत सारे, जो भारत एक कृषि प्रधान देश है और जो त्योहार हैं वो भी कृषि प्रधान बहुत सारे होते हैं, बैसाखी है, अन्नकूट है, पोला है, ऐसे न जाने कितने त्योहार हैं
0: बिल्कुल
1: जो कृषि पर ही निर्धारित होते हैं। जब नई फसल आती है ये अक्टूबर के महीने में,
0: जी
1: तब जो भी फल सब्जियां या धान उगाए जाते हैं उन सबका भोग लगाया जाता है अन्नकूट में।
0: जी
1: इसी तरह से बैसाखी में जब सरसों की खेती होती है, सरसों काटी जाती है, गेहूं कटता है और जो भी अनाज कटते हैं तो उनकी उनकी वो खुशियां मनाई जाती
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: और उन्हीं से ही जुड़ी हुई चीजें बनती हैं घर में, है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: इसी तरह से संक्रांति आती है, तो क्योंकि सर्दियों में हमारे शरीर को गर्माहट की जरूरत होती है तो तिल का
0: तिल का
1: विशेष रूप से
0: विशेष रूप से
1: ग्रहण
0: ग्रहण किया जाता
1: जी
0: है, बिल्कुल। और आखिर त्योहार की असली खुशी तभी है ना चंचल, जब हमारे चेहरों के साथ साथ किसी और के चेहरे पे भी मुस्कान आए, तो त्योहार की खुशियां उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
1: इसी तरह से एक संदेश में हमारे श्रोताओं का कहना है कि त्योहार पहले भी हमारी धरोहर थे और आज भी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले संयुक्त परिवार होता था, एक बड़ा परिवार होता था, सब साथ मिलकर खुशियां मनाते थे, त्योहार मनाते थे, खूब आनंद आता था। आज क्योंकि एकाकी परिवार हो गए हैं और अलग अलग हो गए हैं सब, लेकिन छोटे परिवार हो गए हैं, त्योहार हम आज भी मनाते हैं। तो ये बात
0: बिल्कुल
1: सही है, महानगरों में जगह की कमी के चलते एकल परिवार ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन जब कोई त्योहार होता है तो भले हम 4 दिन एक साथ ना बैठे, लेकिन उस दिन जब त्योहार मनाया जा रहा है तो घर पर पूरी चहल पहल होती है। वो जो छोटा सा भी घर हो ना तो पूरा मेहमानों से भरा पूरा लगता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश आया है, ये कहते हैं कि वर्तमान समय में पश्चिमी संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के बीच हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारे त्योहारों का मूल स्वरूप और पवित्रता बनी रहे।
1: इन बातों को हम और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि एक छोटे से अंतराल का समय हो गया है।
0: जी
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
5: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
4: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
6: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
7: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी। अम्बिका
6: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, इस समय कार्यक्रम सखी सहेली, और कार्यक्रम हम फिर से लेकर आ गए हैं अंतराल के बाद, है ना?
0: जी बिल्कुल चंचल, सृष्टि की रचना जब हुई, ऐसे हमारी एक सखी ने लिख भेजा है कि तब से मनुष्यों ने खास अवसरों पर मिलजुल कर जो कार्यक्रम संपन्न किए, वे कालांतर में त्योहारों का उन्होंने रूप ले लिया, और आने वाली पीढ़ियों ने नित नए प्रयोग कर उसमें कुछ जोड़ भी दिया, और अब ये कहती हैं कि उसी लोग उन्हें उसी बातों को ही आधार मानकर एक निश्चित दिन पर ऐसे आयोजनों की परंपरा करते चले आ रहे हैं, और हम आज भी पूर्वजों की जो राह है उस पर चलते हुए उन सभी परंपराओं का पालन करते हुए हम नियत तिथि पर होली, दिवाली, रक्षाबंधन जैसे त्यौहार मनाते चलते आ रहे हैं।
1: और भाई जिस तरह से एक नियमित क्रम चलता रहता है त्योहारों का, हमारे कार्यक्रम में भी हमारी बातें, कुछ जानकारियां और गानों का एक क्रम चलता रहता है, तो गाना सुन ले।
0: चलिए सुनते हैं।
8: ये तो कहो

0: तो भाई जब हम घर पर बहुत सारे मेहमान आते हैं तो हम उनसे नहीं पूछते हैं कि वो कौन है, क्योंकि हम सबको जानते हैं, लेकिन कई बार कुछ अजनबी चेहरे भी आते हैं और वो भी हमारे चिर परिचित बन जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और त्योहारों के बीच में जब अगर एक सुंदर सी साड़ी पहनने को मिल जाए ना घर की महिलाओं को, घर की एक महिला को, जो उसके जो चेहरे की मुस्कान जो
0: जी
1: होती है, वो जो खुशी होती है, वो एक अलग ही होती है। और ऐसे में अगर मोठड़ा साड़ी मिल जाए राजस्थान के प्रसिद्ध, तो फिर तो बात ही क्या है।
0: बिल्कुल, और राजस्थान की बहुत कहते हैं ना कि डिमांड वाली साड़ियों में से ये एक है, और लहरिया का ही एक वर्जन भी इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जैसा लहरिया होता है ना उससे मिलता जुलता ही ये होता है। लहरिया में बस सीधी सीधी लहरें होती हैं, लेकिन जो मोठड़ा साड़ी है उसमें जो लहरें होती हैं वो एक दूसरे को काटती हुई थोड़ी सी आड़ी तिरछी, और फिर वो चौकोर बन जाती हैं आड़ी तिरछी जब काटती हैं, और देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दो लहरिया साड़ी एक के ऊपर एक चढ़ा दी गई हो, और इसी की वजह से इसका जो डिजाइन है वो ज्यादा भरा भरा और आकर्षक लगता है।
1: बिल्कुल। कुछ और खास बातें हैं चंचल इस मोठड़ा साड़ी की, जैसे लहरिया से थोड़ी अलग बनाती है जिस इसको। लहरिया में एक साथ दो रंग होते हैं, पर मोठड़ा में जहां दो रंग मिलते हैं वहां तीसरा रंग अपने आप बन जाता है। जैसे लाल और पीला मोठड़े के बीच में नारंगी आपको दिखेगा, और यही इसका असली आकर्षण भी है।
0: बिल्कुल। और मोठ राजस्थानी में किसी दाने या गांठ को कहा जाता है, और क्योंकि ये जो साड़ी होती है इसे बांधने के समय गांठें लगाई जाती हैं, और मोटी मोटी गांठें लगाई जाती हैं, इसीलिए इसका नाम मोठड़ा साड़ी पड़ गया। और ये साड़ी बंधेज की तकनीक से ही बनाई जाती है। इसमें कपड़े को दो बार अलग अलग दिशा में बांधकर रंगा जाता है, पहले एक रंग में रंगकर सुखाया जाता है, और फिर दूसरी दिशा में बांधकर दूसरे रंगों में इसको रंगा जाता है।
1: बिल्कुल। और पहले ये साड़ियाँ सूती कपड़ा माने कि कॉटन में बना करती थी, लेकिन आजकल अब तो शिफॉन में भी बनने लगी है, जॉर्जेट में भी बनने लगी है ये वाली साड़ियाँ। और क्योंकि शिफॉन बहुत हल्की होती है और आप चाहें तो रोजमर्रा में भी इसको पहन सकते हैं, इस वजह से ही इसकी मांग भी बहुत ज्यादा होने लगी है बाजार में।
0: हाँ, लहरिया और मोठड़ा जो है ना ये ज्यादातर इसी मौसम में पहना जाता है, और ये होते हैं थोड़ी चिपचिपी गर्मी वाले दिन।
1: जी,
0: तो क्या होता है कि जो ऐसी हल्की फुल्की साड़ियां हो जो हमें तकलीफ ना दें, हमें बहुत आरामदायक एक महसूस कराए, इसीलिए सूती जॉर्जट शिफॉन ऐसे कपड़े में इन साड़ियों की डिमांड जो है वो ज्यादा
1: होने लग जाती है। और सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला रंग भी इसमें है, जैसे कि पिंक रानी जो गुलाबी
0: कलर
1: होता,
0: गहरा वाला होता ना, रानी महारानी की पिंक जिसे कहते हैं।
1: बिल्कुल। और साथ में लाल पीला हरे रंग का एक अलग अलग रंग के कॉम्बिनेशन बहुत पसंद करती है महिलाएं। तो ये गोटा पट्टी वाला मोठरा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में रक्षाबंधन पर जो सोगी की रस्म में गोटा वर्क वाला मोठड़ा उपहार में भी दिया जाता है।
0: और राजस्थान में मोठड़ा को सुहाग और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। दीपा, नई दुल्हन जब पीहर से आती है तो उसका जो पहला सावन का तोहफा आता है उसमें मोठड़ा साड़ी भी कई बार रखी जाती है, और कुछ कुछ जगह पर इसका जरूरी भी माना जाता है। सावन, तीज, रक्षाबंधन मैं तो पहनते ही है, इसके अलावा शादी ब्याह में भी बहुत पहनी जाती है मोठड़ा साड़ी। और राजस्थान में मान्यता ऐसी है कि सावन में लहरिया मोठड़ा पहनना बहुत शुभ माना जाता है।
1: बिल्कुल। और एक संदेश आया है, ये कहती है कि ये पारंपरिक हस्तकला है राजस्थान की, इसमें कपड़े को एक दिशा में मोड़ने के बाद दूसरी दिशा में भी लहरिया लाइन काटी जाती है। साथ में इन्होंने भी यही कहा है कि शिफॉन, जॉर्जेट, कॉटन, कोटा, डोरिया जैसे हल्के मुलायम कपड़ों में पहना जाता है। इसमें गोटा पट्टी, जरी, आरी तिरी वर्क और खूबसूरत बॉर्डर का भी काम किया जाता है, जिससे पहनने पर ये साड़ी बहुत सुंदर लगती है।
0: अभी महिलाओं को कई बार लगता है ना कि हमारे वार्डरोब में साड़ी नहीं है तो ले ली जाए, कई बार हमारा बजट भी हमें लगता है कि रोक देता है, तो ये साड़ी जो है क्योंकि हल्की फुल्की भी आती है और वर्क वाली भी आती है, तो 300-400 रुपए से शुरू होकर 4-5 हजार तक आप जैसी कीमत में लेना चाहें वैसी साड़ी आप ले सकती हैं इसमें। और प्लेन, गोटा वर्क वाली और इन्हीं के अनुसार इनकी जो कीमत है वो अलग अलग मिल सकती है बाजार में। जब भी मोटड़ साड़ी लेनी हो तो थोड़ी सी पहचान जो है इसकी वो कर ले, और पहचान करने के लिए क्या करना है कि असली मोटड़ा जो है वो हाथ से बनाया जाता है, उसके जो रंग की किनारी है वो थोड़ी सी अनियमित मिलेगी आपको, और पीछे की तरफ जो है रंग थोड़ा थोड़ा हल्का दिखेगा। मशीन प्रिंट वाली जो साड़ी होती है उसके पीछे सफेद रंग रहता है, तो थोड़ी सी पहचान करके आप साड़ी लीजिए और बस उत्सवों पर, त्योहारों पर और किसी भी खास मौके पर पहन लीजिए।

0: कसम ये खुदाई न होती।
1: चंचल देखिए त्योहार आए हैं, घर में बहुत साज सज्जा भी कर ली है, बहुत सारी चीजें भी बन गई हैं। कुछ आदान प्रदान करेंगे या नहीं करेंगे तोहफों का?
2: तोहफों का भी होता है, और कई बार क्या होता है ना, मान लीजिए हम जहाँ रहते हैं हमारे पास पड़ोस में वहाँ भी वही उत्सव मनाया जा रहा है, तो कई बार जो बहुत सारे पकवान घर में बनते हैं उनका भी आदान प्रदान होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजों का भी आदान प्रदान होता है। अगर मान लीजिए मेरे घर में आज बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं और कोई बहुत बड़ी कढ़ाई मेरे घर में नहीं है, बहुत बड़ा भगोना मेरे घर में नहीं है, कितनी सामग्री बनाई जा सके, तो वो भी हम पड़ोस के घर से ले लेते हैं कई बार। और बहुत सारी चीजें सजावट की भी कई बार आदान प्रदान होती हैं, और जो घर में मेहमान होते हैं उनके साथ में आपसी प्रेम भावनाएं, इनका आदान प्रदान
1: होता है। बिल्कुल सही कहा। और हमारी श्रोता ने लिखा है कि आदान प्रदान ये विनिमय प्रथा का एक प्रकार है, जिसमें लेन देन या अदल बदल की एक प्रक्रिया है, जिसमें दो पक्षों के बीच वस्तुओं के अलावा अपने अपने विचारों का भी आदान प्रदान किया जाता है। अब वो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सखी सहेली इस फेसबुक पेज पर हमारे द्वारा लिखी कमेंट उद्घोषिकाएं हमारी पढ़ती हैं, यानी सहेलियां पढ़ती हैं, तो इस प्रक्रिया में भी विचारों का वर्चुअल आदान प्रदान होता है।
2: क्या
1: बिल्कुल सही कहा आपने भाई, आप अगर संदेश नहीं लिखेंगे तो फिर ये कार्यक्रम की खूबसूरती कैसे बनेगी और ये आदान प्रदान कैसे पूर्ण होगा?
2: और ये बहुत जरूरी आदान प्रदान है। और इसी को लेकर एक और संदेश है, इसमें लिखा गया है कि रिश्ते एक सुंदर आदान प्रदान है, जहां कोई अपना समय देता है, कोई विश्वास, कोई प्रेम बांटता है, कोई मौन में भी साथ निभाता है। इन छोटे छोटे हिस्सों में जीवन की बहुत बड़ी खुशियां बन जाती हैं।
1: बिल्कुल। एक संदेश और आया है, वो कहते हैं कि पहले आदान प्रदान पड़ोसी में चीजों का होता था, चीजों के बीच भावनाओं और विचारों का भी हो जाता था, मन की बातों का आदान प्रदान होता है। ये रिश्ते कभी कभी इतने अंतरिम हो जाते हैं कि अपनी रास की बातें भी हम पास पड़ोसियों से कर लेते हैं। शायद इसी आदान प्रदान से रिश्तों में अपनापन आता है। पर अगर कभी मतभेद हो जाए तो यही राजदार अपनी बातों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आदान प्रदान तो करें, साथ में उन्होंने एक सावधानी दी है कि थोड़ा संभल कर करें, ये हमारा अनुभव है।
2: एक अन्य संदेश में एक बात कही गई है, आदान प्रदान हमारी आवश्यकता भी है, कर्तव्य भी, क्योंकि हम समाज में रहते हैं जहां हमें तमाम जरूरतों के लिए एक दूसरे से लेना भी पड़ता है और उनकी जरूरत होने पर उन्हें देना भी पड़ता है। हालांकि रोजमर्रा की जिंदगी में तमाम चीजें अपने सामर्थ्य से हम खरीद लाते हैं या उत्पादित भी कर लेते हैं, लेकिन पैसा एक ऐसी चीज है जो हमें अक्सर सबसे ज्यादा आदान प्रदान में लेना देना पड़ता है। जैसा कि हम सब एक शादी में तमाम पैसे खर्च करने के लिए एक दूसरे लोगों से मदद ले लेते हैं, बाद में उन्हें वो पैसा लौटा भी देते हैं, इसी तरह से उनकी डिमांड पर कई बार उनके लिए पैसे की व्यवस्था कर देते हैं और वो आदमी भी हमें बाद में भुगतान कर देता है। तो बिल्कुल इस तरह का जब आदान प्रदान होता है तो रिश्तों का खास ख्याल रखिए, क्योंकि इसमें रिश्ते बिगड़ने नहीं चाहिए और हमारे कार्यक्रम का जो तालमेल है वो ना बिगड़ जाए, इसलिए गाना सुन लेते हैं।
1: चलिए सुनते हैं।

0: भाई हमने बहुत सारे त्योहारों की जब हम बात कर रहे थे तो हमने आदान प्रदान की बात भी कर ली, जो त्योहार हमारे धरोहर हैं परंपरा इनकी बात भी कर ली, हम क्या पहनेंगे मोटड़ा साड़ी उसकी बात भी कर ली, लेकिन अभी तक खाने पीने की कोई बात नहीं हुई।
1: अरे भाई हो रही है ना, देखिए मोदक बनेंगे, बहुत प्रकार के मोदक होते हैं, तो जिसमें हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है कि उकड़ी से मोदक होते हैं जो कि भाप में पके हुए सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक मोदक हैं।
0: और ये उकड़ी चे मोदक यानी कि चावल के आटे के मोदक होते हैं जो खास तौर पर महाराष्ट्र में इन्हीं मोदक का भोग लगाया जाता है गणपति बप्पा
1: जी
0: को।
1: ये बता रही हैं कि चावल के आटे के आवरण और ताजे नारियल गुड़ की भराई वाले ये मोदक भाप में पकाए जाते हैं। उसके अलावा तले हुए मोदक भी होते हैं, इन्हें गेहूं के आटे या मैदे से बनाकर तेल या घी में आप तल के बना सकते हैं। फिर मावा यानी कि जिसे खोया बोलते हैं वो मोदक भी होते हैं, तो इसमें चीनी और मेवो को झटपट तैयार किए जाने वाले ये मोदक होते हैं, मतलब अंदर जो फीलिंग है वो मावे के साथ चीनी और सूखे मेवों की होगी। और बेसन के भी मोदक बनते हैं जिसमें भुने हुए बेसन और घी से लड्डू की तरह बनाए जाने वाले मोदक होते हैं। चॉकलेट मोदक भी होते हैं जिसमें चॉकलेट के स्वाद वाले आधुनिक और इंस्टेंट मोदक बनाए जाते हैं। साथ में हमारी सखी बता रही है कि ड्राई फ्रूट्स के भी बन सकते हैं जिसमें अंदर जो भरावन है वो ड्राई फ्रूट्स यानी काजू बादाम पिस्ता इन सब का भी आप कर सकते हैं। तो ये तो प्रकार बता दिए।
0: इसी तरह से प्रकार ही बताने के लिए एक और संदेश आया है और इन्होंने बताया कि बहुत सारे प्रकार के मोदक बनाए जाते हैं, सभी के घर में मोदक का स्वाद अलग अलग प्रकार का होता है, बनाने का तरीका भी थोड़ा अलग हो सकता है, इसीलिए मोदक अलग अलग तरह के स्वाद में नजर आते हैं। चावल के आटे के आवरण वाले, नारियल की गुड़ की भरावन वाले मोदक होते हैं, तले हुए मोदक में मैदे गेहूं के आटे से बनाए जाते हैं और भरावन नारियल या ड्राई फ्रूट्स की जाती है और ये घी में तले जाते हैं। मावा मोदक भी बनते हैं जिनमें मावा चीनी और मेवे से के मिश्रण से इन्हें बनाया जाता है। चॉकलेट मोदक जो है बच्चों के बड़े लोकप्रिय होते हैं जो चॉकलेट और मावा से बनाए जाते हैं। ड्राई फ्रूट के मोदक में काजू पिस्ता बादाम इस तरह की चीज़ों से इनको बनाया जाता है। तिल और गुड़ के मोदक भी बनाए जाते हैं और तिल गुड़ से पारंपरिक स्वाद वाले मोदक

0: बच्चों और युवाओं के बीच में ये चॉकलेट मोदक है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसमें चॉकलेट और बिस्किट का या फिर नट्स जो आप सूखे मेवे हैं उसका मिश्रण भरकर मोदक का आकार दे सकते हैं। फिर एक मोदक का प्रकार बताया है, रसवंती या रसमलाई मोदक।
1: क्या
0: इसमें
1: बात
0: ताजे
1: है,
0: पनीर, मिल्क पाउडर, चीनी और केसर पिस्ता के मिश्रण से बनने वाला है ये मोदक। बहुत नरम और स्वादिष्ट होता है। इसके अलावा मावा और पनीर मोदक भी बनता है, जिसमें मावा और यानी या चीनी, इलायची पाउडर मिलाकर आसानी से जो मोदक का मोल्ड होता है ना, उससे उसकी मदद से बन जाता है। फिर एक और है जिसमें कि बेसन सूजी वाला, जैसे कि हमारी एक और सखी ने लिखा था कि बेसन और बारीक सूजी को घी में भूनकर और चाशनी या बूरा मिलाकर सांचे में आप इसे तैयार कर सकते हैं।
1: तो चलिए ये तो हुई बहुत सारे मोदक की बात, अब एक गीत सुन लिया जाए।
0: चलिए।

0: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: आज के मेहमान दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं जानी मानी कहानीकार, उपन्यासकार और कवियत्री मनीषा कुलश्रेष्ठ से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित किया है जो साहित्यकार हैं, कथक की नृत्यांगना और कथक पर उन्होंने बहुत सारा काम किया है और वायुसेना से भी उनका अच्छा खासा जुड़ाव रहा है और यायावरी उनकी विशेषता है। वो है जानी मानी साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। मनीषा जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: नमस्ते ममता, बहुत आभार आपका।
0: मनीषा जी, चलिए आपको हम बचपन के गलियारों में ले चलते हैं जहां से आपने रेडियो में कदम रखा था और मेरे ख्याल से राजस्थान आकाशवाणी, तो किस जगह पर आपने पहली बार अपनी आवाज रेडियो पर सुनी दी और कैजुअल अनाउंसर के रूप में थी?
1: बिल्कुल बिल्कुल ममता, मैं कॉलेज में पढ़ रही थी और अगर मैं बचपन में कहूँ तो बच्चों के कार्यक्रम आते थे तो हम स्कूल की तरफ से आकाशवाणी में जाते ही

0: थे और उदयपुर की बात है, मैं मीरा गर्ल्स कॉलेज में पढ़ रही थी तब कैजुअल अनाउंसर्स के लिए एक विज्ञापन निकला था और हमारा कॉलेज और हॉस्टल और आकाशवाणी एकदम पास पास ही थे, तो मुझे लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए और मैंने ऑडिशन दिया और हो गया। उसके बाद मैं लंबे समय तक, जब तक मैंने अपनी पढ़ाई एमफिल नहीं कर लिया तब तक मैं आकाशवाणी से जुड़ी रही। आकाशवाणी उदयपुर की बात है ये।
1: जी, तो लेखन में कैसे आपने कदम रखा?
0: मजेदार बात बताऊं तो आकाशवाणी ही वो एक योजक रहा मेरे और साहित्य के बीच में। हुआ ये कि क्योंकि मैंने बीएससी किया था और आकाशवाणी में आने के लिए और वहां पे अपनी स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको अच्छी हिंदी की जरूरत होती है और अच्छी किताबें, वहां की लाइब्रेरी बहुत रिच थी, तो मुझे लगता है कि आकाशवाणी आके मुझे लगा कि मुझे हिंदी में एमए करना चाहिए
1: जी,
0: और मुझे अपनी हिंदी पे काम करना चाहिए।
1: क्या बात
0: तो
1: है।
0: मैंने बीएससी के बाद सीधे हिंदी में एमए किया और साहित्य से जुड़ाव मेरा वहीं से शुरू हुआ। और एमए कर रही थी तभी साहित्य अकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य अकेडमी युवा का,
1: क्या बात
0: तो
1: है।
0: मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: तो पहली बार आपने कविता लिखी या कहानी लिखी?
0: पहली मैंने कविताएं लिखी। कविताएं तो मैंने बचपन से लिख ली, जब मैं किशोरावस्था में थी तब माँ कहती थी कुछ लिखो, क्योंकि मेरी माँ को भी साहित्य में बहुत रुचि थी और वो कविताएं लिखती थी, तो मैं माँ की डायरी देखती थी तो मुझे लगता था मैं भी कविताएं लिखूं। तो मैंने किशोरावस्था में एक कविता लिखी थी, एक्वेरियम में जो मछली है उसको और एक किशोरी लड़की की जो मानसिकता है उसको कंपेयर करते हुए बचपन में एक कविता लिखी थी, एक्वेरियम।
1: जी,
0: हाँ, बस ये कि मेरा मन इस एक्वेरियम में मचलती हुई मछली जैसा है, उसकी शुरुआत कुछ ऐसी थी। और तब मैं 12 साल की थी तो मैंने कविताएं पहले लिखना शुरू किया, लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे कविताओं में ज्यादा जगह नहीं मिल पाती अपने आप को अभिव्यक्त करने की, तो मैं कहानी की तरफ आई।
1: जी, तो पहली कहानी छपने की बड़ी लोगों को खुशी होती है और इंतजार भी होता है, तो पहली कहानी छपने का वो इंतजार और वो खुशी साझा कीजिए हमारे श्रोताओं के साथ।
0: बिल्कुल ममता, मैंने बहुत सारी कहानियां लिखी और मैं भेजा करती थी, साक्षात्कार एक पत्रिका होती थी, भैरव जी उसके संपादक थे, हंस में मैं बहुत सारी कहानियां भेजती थी। और तुम हैरत में पड़ जाओगी कि तब संपादक बड़े कड़क होते थे और मेरी बहुत सारी कहानियां वापस आ जाती थी, और उस निराशा को मेरे जो सहयात्री हैं अंशु वो देखते थे, तो कई बार वो जो खेत चरित्र पत्र आता था ना उसको ऑफिस में ही फाड़ देते थे, आके बताते नहीं थे कि
1: अच्छा
0: कहानी लौट आई है।
1: क्या बात
0: लेकिन
1: है।
0: एक कहानी ऐसी थी जिसको स्वीकार किया, मतलब 5-6 कहानियों के खेत सहित वापस आने के बाद एक कहानी प्रेत कामना राजेंद्र यादव जी ने स्वीकार की, और जब वो छपी तो मेरी खुशी का पारावार नहीं था। और सच पूछो तो मैं साहित्य की दुनिया में बस एक कहानी के लिए आई थी,
1: क्या
0: वो
1: बात है।
0: अलग बात है कि साहित्य की दुनिया ने मुझे रोक लिया, क्योंकि वो कहानी छपी उसके बाद मेरे पास फोन आया कि अगली कहानी कब। तो मुझे लगता है कि आपकी जो नियति होती है वो निश्चित कर लेती है कि आपको कहाँ जाना है, क्योंकि मैंने तो कथक भी चुना था अपने लिए, मैंने उसके अलावा बहुत सारी रेडियो में भी जाने का सोचा था, लेकिन उसके बाद ये हुआ क्योंकि वायुसेना अधिकारी की पत्नी थी तो मेरे पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं थे, क्योंकि हर 3 साल बाद सामान बांधो और चल पड़ो,
1: जी,
0: तो मुझे लगा कि लिखना मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है,
1: क्या बात है।
0: तो मैंने कहानी लिखी और वो छपी।
1: आपने जिक्र किया अंशु जी का, जो आपके पति हैं, और
0: जी
1: वायुसेना का जिक्र किया कि वायुसेना अधिकारी, तो वायुसेना में पति होना बहुत ही कड़क मिजाज होता है और माहौल बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो कैसे आपने साधा, अपने जीवन को कैसे जोड़ा
0: मैं
1: अपने
0: सच
1: सूत्र को?
0: बताऊं ना तो मैं जितने सैन्य अधिकारियों से मिली हूं उनसे नरम मिजाज कोई नहीं होता, वो होते होंगे अपनी
1: डिसिप्लिन्ड
0: कार्यशैली
1: माने
0: में,
1: जाते हैं।
0: डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासन होता है, समय की एक सीमा रेखा को वो समझते हैं, और बहुत सारी चीजें, बहुत औपचारिकताएं भी होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सेना में पत्नियों का सम्मान बहुत है, और क्योंकि हम बहुत सारे समय अकेले रहती हैं तो आपस में एक परिवार की तरह रहता है। तो अंशु से तो मतलब अगर मैं बात कहूं तो उनसे बड़ा मेरे लिए सपोर्टर कोई नहीं रहा, उन्होंने मुझे हमेशा उत्साहित किया कि मैं लिखूं। और तुम्हें याद होगा कि मैं एक हिंदी नेस्ट नाम से एक साहित्यिक पत्रिका वेब पोर्टल जो कि हिंदी का पहला वेब पोर्टल है वो हमने शुरू किया था। वो अंशु ने ही चाहा था कि मैं साहित्य में इस तरह से इन्वॉल्व हूँ, तो मैंने उनकी सहायता से उसे आरंभ किया था
1: जी।
0: तो एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा, कड़क वो नहीं है बिल्कुल भी और अनुशासित है।
1: वैसे तो बहुत नरम दिल लगते हैं बातचीत में, क्योंकि हमारी भी मुलाकात हो चुकी है और आपकी जो एक कार्यशाला है उस कार्यशाला में बाकायदा वो सहयात्री से नजर आते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पति का साथ आपकी निजी जिंदगी में तो होता ही है लेकिन आपकी व्यावसायिक जिंदगी में जहां पे आपका लेखन है वहां पर अगर पति पूरी तरह समर्पित हो तो ये बड़ी बात है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई।
0: बहुत शुक्रिया।
1: और अब बात चल रही है अंशु जी की, आपके जीवन साथी की, तो मुझे लगता है यहाँ पर एक गाना होना चाहिए उनके नाम।
0: बिल्कुल, मुझे याद है कि जब हमारी सगाई हुई थी तो मुझसे कहा गया कि कोई गाना सुनाइए, तो मुझे उनकी आंखें देखकर एक ही गाना याद आया, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं।
1: तो सुनते हैं घर फिल्म का ये गाना।

0: गाने के बाद मनीषा जी हम आपकी साहित्यिक दुनिया पर दस्तक देते हैं। आपके 7 उपन्यास पूरे हो चुके हैं और अपने साहित्य की दुनिया में उपन्यास लिखना बहुत चुनौती की बात होती है, तो कहाँ से शुरू करें हमें तो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी लेखन यात्रा बहुत लंबी है। हम शिगाफ से शुरुआत करते हैं, कैसे आपके जहन में ये विचार आया, विस्थापन की बातें हैं इसमें?
1: बिल्कुल ममता, अगर मैं कहूँ तो कश्मीर हम लोग रहे हैं तो,
0: और कश्मीर का पूरा परिदृश्य है।
1: हाँ, कश्मीर मेरा रहना हुआ और वहाँ के अनुभवों को देखना हुआ, तो मैं हमेशा ये कहा करती हूँ कि जब भी कोई एक पेड़ गिरता है तो दूसरा पेड़ भी उस विस्थापन को झेलता है। तो जब वहाँ से कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए तो ऐसा नहीं है कि खाली उन्होंने ही उस आतंकवाद का सारा दुख झेला है, जो लोग रह गए थे और उन लोगों ने भी अपनी खुली जड़ों के साथ उस विस्थापन को झेला है वहीं रहकर। तो कश्मीर शिगाफ जब मैंने लिखा तो वो एक दरार की बात है, एक जमीन के भीतर पड़ जाने वाली दरार की बात है जिसका भरना मुश्किल होता है
0: जी।
1: तो मैंने उसको आंखों से देखा था तो मुझे लगा कि मेरे को इस पे, उसके बाद क्या हुआ, मैंने वो पूरी घटनाएं देखी, काफी घटनाएं देखी। वो एक ऐसा समय था जब आपकी अगर श्रीनगर या अनंतनाग या अवंतीपुर पोस्टिंग होती है तो आपको सशस्त्र गाड़ियों में स्टेशन से सिर्फ वहां जाते थे और मैंने कोई कश्मीर नहीं देखा था। तब पोस्टिंग हुई 1-1.5 साल और बस वहां रहे और आ गए, ऐसा मतलब कोई कश्मीर देखने की जो उत्साह था वो देख नहीं पाए। लेकिन उसके बहुत सालों बाद जब मैं लेखक बन गई, तो जब मैं युवा लेखक थी तो साहित्य अकेडमी की एक कार्यशाला हुई
0: थी, अभी भी युवा लेखक
1: की
0: हैं आप

0: कोई कह नहीं सकता कि आप
1: तो उस कार्यशाला में दोबारा से पहलगाम जाना हुआ, तब मेरी बहुत सारी चीजें ऐसे मेरे जहन में आई कि मैं उनको लिखूं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और वो ब्लॉग का जमाना था, तो ब्लॉग पे काफी चीजें, मेरे को लगता था कि ब्लॉग को एक फॉर्म बना के शिगाफ नाम से उपन्यास लिखा जाए, तो
0: जी
1: मैंने उसको लिखा दो सहेलियों के बहाने से। तो
0: और ये उपन्यास बहुत चर्चित हुआ, लोगों ने इसे
1: बिल्कुल
0: एक पाठशाला की तरह भी इस्तेमाल करते हैं जो आपके और हम सबके बाद की पीढ़ी के युवा लेखक आते हैं तो वो उपन्यास लिखने के लिए इस उपन्यास को पढ़ते हैं, जिसमें से एक मैं भी हूँ कि मैंने भी उसे इसलिए पढ़ा कि देखती हूँ उपन्यास लिखने की शैली कैसी होती है और उसमें से क्या कुछ सीखा जा सकता है, तो मेरे लिए भी बहुत ये बड़ी बात है और इस उपन्यास को मैंने भी बहुत पसंद किया है। अब हम आपके उपन्यास स्वप्नपाश की बात करते हैं जो मानसिक तनाव की और एक तरह से मानसिक रोग की बात भी है उसमें,
1: बिल्कुल
0: तो
1: विदलन
0: कैसे
1: कहें
0: आपने
1: तो।
0: लिखा, क्या किसी डॉक्टर से सलाह ली, क्या आपके जहन में कहाँ से आया किरदार ये?
1: दरअसल सिजोफ्रेनिया शब्द पहले शिगाफ में आया था,
0: जी
1: तो वो शब्द मैंने इस्तेमाल तो कर लिया, पर मुझसे मेरे एक डॉक्टर मित्र हैं, वायुसेना में ही थे, डॉक्टर दीक्षित, उन्होंने पूछा क्या तुम जानती हो सिजोफ्रेनिया एग्जैक्टली होता कैसे है। मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने मुझे कुछ केसेस पढ़ने के लिए दिए,
0: जी
1: तो मैं चौंक गई कि ऐसे भ्रम होते हैं लोगों को कि उनसे कोई बात कर रहा है, उनके सामने कोई बैठा है जो कि है ही नहीं, एक काल्पनिक पात्र उनके जीवन में हमेशा, या कई कई काल्पनिक पात्र हमेशा साथ चलते हैं। तो ऐसा होना, जब मैंने वैसे केस हिस्ट्रीज पढ़े
0: जी
1: तो मुझे लगा कि मुझे ये किताब लिखनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में मनोविदलन या मानसिक जो विक्षेप है उन पे बहुत कम किताबें हैं। तो क्योंकि मैं फिर यहाँ विज्ञान काम आया, क्योंकि मैं विज्ञान की छात्रा रही हूँ, तो मेरी उत्सुकता थी इस मनोविकारों के बारे में जानने की, तो मैंने काफी रिसर्च किया। मैंने कुछ पात्रों से मिली, मैं
0: जी
1: एक ऐसे पात्र से मिली जो बिल्कुल ही देसी एक आदमी था, उसके बारे में मैंने जाना कि वो रास्ते में चल रहा था और रास्ते भर बात करता जाता था, सामने से हट जाओ नहीं तो तुम्हें एक थप्पड़ मार देंगे, तो वो अपने आप से बात करता था। हम पहले कहा करते थे ना कि ये लोग पागल हैं या ये लोग उनके ऊपर कोई साया है, तो वो सब नहीं होता था। तो मैंने
2: FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 4:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोकगीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम। हेलो गोरबंद।

0: राम राम गोपा जी।
1: ए राम राम श्याई, राम राम श्याई, अब्रोन्याऊं भिजो कोकिनीर गाऊं भिजो।
0: ना रईसा गाना सोमना।
1: ओ हो रईसा भाई सोमना में कोई करो।
0: खेती बाड़ी में काम करा बाबा जी।
1: ओ हो खेती बाड़ी कैसी के भाई अब की?
0: तुमसे तो फोरी है काको जीओ।
1: अरे फोरी तो भाई राम जी अब के टेम से बरसियो को जी ना भी है। और तू बता क्या ने भाई?
0: सब ठीक है।
1: अरे वो हमारी बेटा धनी प्रोग्राम कैसी हो लागे?
0: प्रोग्राम बहुत बढ़िया लागे।
1: अच्छा ए पावना खाई करे भाई?
0: पावना पुलिस में।
1: ए
0: पुलिस में?
1: अच्छा पुलिस में। ओ हो ए तो पावना निकी काको के हाका नहीं करी? हाका तो कौन करे धने?
0: हाका कौन करो?
1: आए गणी गणी करता बोला
0: बापत बाद दे यानी बेन कल
1: पुलिस आ दे दे तो कह दी काको जी आका नहीं करे जी।
0: ठीक है दे।
1: आए बे पुलिस में जिकू डरा आप बेन डराई दे मैं टेंशन मत कर दूं।
0: ना ठीक काको जी।
1: ए मारी पोती आवड़ी थोड़ी हदी करी नी बेटा।
0: हां लूणी बाई हूं बात करो।
1: ए लूणी बाई।
2: हां काका।
1: ए रईसा भाई तुमसे बात करना चाहूंगा बोलो। हेलो
2: हेलो।
0: हां लूणी बाई। राम राम।
2: राम राम साहब। राम राम साहब। भाई जी की करे टाबर टोली?
0: सब ठीक है भाई जी।
2: टाबरा को लाड रखो।
0: टाबर मोटा मोटा है।
2: टाबर टोली तो कौन देवे लड़े तो कोनी?
0: नहीं कोई कौन लड़े टाबर के लड़े।
2: ए थारी सेवा चाकरी करे?
0: हां सेवा चाकरी तो घणी करे।
2: ए गाड़ी बताओ।
0: हां बताओ।
2: आज कूड़ को भार वो सेता ए जितना होता उतना ही बताऊ तो बताओ कहीं होता है?
0: भाई भाई जी आत को ना आवे।
2: अरे हो रही है आपर हगणारे घर में लाज जावे
0: तो आत को नहीं आवे।
2: काका थाना आवे कहियो?
1: ए तो हमारा दल लेव घड़ी होती है की?
2: नहीं काका।
1: तो काई हुए
2: काका? वो तो ताकड़ी होती है। आज कूड़ बताई दे जित हुए भी तो ही बताओ के होई ले भाई
1: आज। ए भाई को पूछो भोगा में कई पूछा
2: रईसा भाई आज कई होना ला?
0: इंजन की सीटी आलो।

0: Ганом Жигар.
1: Эй, не мешгар, я и ромром, я и я бронял видео, как и нергал видео.
0: Ну, мадрахик, вадо, на гору.
1: О, горе, биг бай, шулам, мулик, му.
0: Шулам, окей, але кака, кья, но?
1: Эй, како, реди, реди, дэ, бадо, дэ, кья, но?
0: Реди, реди, он, идам, сэй, он.
1: Oh, I see it in a cheese, dead a piggy, Nagor me, cheese, are you?
0: Lower Puram.
1: I see a lower Puram. Oh, can you come to your crew?
0: I
1: was shaken with body, they go puppy, paid cash, while they paid go, but not guys, but I had to come, can up for tie.
0: Ah, come to come over
1: there. I say, you all with your girl, but you are me, Shepian, you.
0: A big, a big,
1: hey, to Kako, a Jual, cut down, got you up in an operator.
0: Ah, hello.
1: Hey, doop, take me, I don't. Hey, doop, anytime. तावड़ो देख मैं आ जाऊं चिया देख शर्मा जाऊं जब हवा चले मुझे छूने मैं उसमें समा जाऊं क्या होता है
0: ए
1: छतो ओनी में लुनके ए लुनके
2: हां कई को काका
1: ए भाई के ता छटा होता तुम कहीं के होता हो
2: काका मैं तो को पसीना हुए कहियो
1: ए सही के उठ ए भाई मजूरी जाओ जी पसीनो को नी में धाने
0: हां हो सा हो
1: ए भाई हुए बजे लोन की भाई को बोल हेलो
2: हेलो
0: हेलो लोनी भाई
2: हां भाई जी पके लागो
0: हां और कहीं हाल है
2: और बस रेडी रेट है टाबर काई करे
0: हां स्कूल जावे
2: स्कूल जावे टाबर का लाड रखो चीजें दिरो खाऊं ना
0: अरे रखा लाड नहीं रखा
2: ए तो कने खेत कने लियो जको कातरा ग्वार पड़िया काकड़िया खड़ार ले जाई जो टाबर ने
0: हां बढ़िया ले जाओ
2: आज कहीं उणाला
0: आज वो खाना आने के सिटे में मारे मन ढोल ले
1: ए लोन के भाई
2: हां काका
1: ए भाई की इंजन की सीटी मन डोले तू मन मत डोला इंजन की सीटी बैठाई दे
2: ए ऐ बेटा लो

0: राम राम काका।
1: हे राम राम शाही, राम राम शाही, आप रो न्याओ वीडियो को के नीर गांव वीडियो।
0: गांव करडू है काका।
1: आओ हो करडू के ना आइयो।
0: ओ आजो अपने सुरतगढ़ कन्ने है। कितना दी साइड में।
1: ओ हो सुरतगढ़ से कौन बोलता हो?
0: जय प्रकाश बोलू काका।
1: ओ जय प्रकाश ही बटी खाई करो थे हो?
0: खेत में बैठा काका, रुकाला बैठा आप, मैं तो करन को ला भी नहीं।
1: अब मैं तो बीरा राम जी का खेला, आप हम कहीं कर सकते हैं?
0: है तो राम जी का ही खेल।
1: ए और घर में परिवार में हगले क्या नहीं हो?
0: आओ सब राजी खुशी है, अपना सुनाओ।
1: ए प्रोग्राम कैसे बुला के थोने हो?
0: प्रोग्राम काका क्या पूछो, मटीरी नहीं लगा मिठो।
1: सवाल करता उसका जवाब बिना ना पड़ेगा
0: भाई। सवाल काका आज आयो तो बता दे।

0: बढ़िया से बढ़िया काम हम आप रहा पचा नेटा घर जोर हुआ
1: और
0: काका ते आड़ी पूछी बिरु के यार तू यो
2: ए हमने जो पूछा उसका मुंह बोले होता है दांत ही भाई काम में लेता है खेत में भाई को पूछो फोगा में क्या पूछे
0: नहीं दादी
2: हां दादी
0: गुआर मूंग बडनाली
2: हां
0: भाई जी यो
1: हां भाई
0: आज के हुणोला प्रोग्राम में
1: राम निवास को भजन सुना दे भाई
0: काका आयो
2: भाई
0: जी के भजन होनो जन पांता होरी चढ़ी भजनी चलाई दो
2: अगर बेटी खाऊ जो तुम्हारी बेटी
0: आई ला।

0: है मारा भैया वो जो भयंकी बोयंकी शिव की पिशिन को बोगाम।
1: हेलो गौरबम।
0: ए बोगाम में कोई भाई गीते बजने होना चाहता है, तुम कहीं के उठा हो?
1: काका इतवार के दिन 12 बजे ले प्रार 1 बजे तक नागौर आकाशवाणी फोन करना है काका। नंबर है मिंडी 1058 दुओ दुओ चौको मिंडी 1068।
0: आई वाह मारी बेटा, ए के भाई जी का कहीं भाई मीनो पूरो कोनी पाछो फोन।

0: विक्रम भाई है टांटोर भरत सर्कस में राम सरोन जगदीश राम जी लाड़िया हूँ सुख दयाल जी गुड़ा भगवान दास हूँ
1: द्वार का फोन गड़गड़ी जो
2: इस कार्यक्रम में काका की भूमिका में थी सुभाष कंडारे और लोणी की भूमिका में थी भीखी देवी चौधरी।
1: ओ भाइयो
0: काका
1: अब बताओ आज के प्रोग्राम में तकनीकी हयो किसका है
0: राजा राम गेदर
1: आज के प्रोग्राम के प्रस्तुत गीता
0: अशोक कुमार गोयल
1: अब हंडिश लगो मारे भैया
0: स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो
1: हेलो गवर्नमेंट हो गए
0: लूण किने दिरा सीख और करते हैं
1: रोम रोम श्याय।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो गोरबंद। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 5 बजे हैं, नीचे सुनिए कार्यक्रम युवा वाणी।

तपते सूर्य के उस भयंकर रौद्र रूप की वो ढाल है, पराबैंगनी विशेली रश्मियों के सम्मुख वो महाकाल है। यदि न होती वो नील आभा, न होता ये चराचर जगत, झुलस जाती सृष्टि की काया, रुक जाता जीवन का स्पंदन सतत। जी हाँ दोस्तों, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं युववाणी, मैं हूँ कंचन रोशन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की बात से। 16 सितंबर यानी कि एक ऐसा दिन जो सिर्फ कैलेंडर का पन्ना ही नहीं बल्कि हमारी धरती माँ की सेहत से जुड़ा सबसे बड़ा दिन भी है। जी हाँ, आज पूरी दुनिया मना रही है विश्व ओजोन दिवस। दोस्तों, क्या हमने कभी सोचा है कि अगर आसमान में वो अदृश्य छतरी ना हो तो हमारा क्या होगा? वो छतरी जो सूरज की तीखी और जानलेवा पराबैंगनी किरणों को खुद पर झेल लेती है और हम तक सिर्फ गुनगुनी धूप पहुंचने देती है। फ्रेंड्स, आज का दिन उसी सुरक्षा कवच यानी कि ओजोन परत को सुक्रिया कहने और उसे बचाने का जो संकल्प है उसको लेने का दिन है। निश्चित रूप से इस प्रकार की जो प्रकृति की देन है उन्हें हमें बचाना चाहिए, और विशेष रूप से अगर हम उन्हें हमारे कारणों से संकट में डाल रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे फर्ज भी बनते हैं उन्हें बचाने को लेकर या इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को कम करने को लेकर। सवाल उठता है, क्यों मनाया जाता है ये दिन? इस दिन को ओजोन दिवस के रूप में हम याद करते हैं क्योंकि दरअसल साल 1987 में आज ही के दिन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए गए थे। इस साल की थीम भी बेहद है यानी कि 2026 की, जो हमें याद दिला रही है कि पर्यावरण संरक्षण

में जो हमारा योगदान है वो एक वास्तव में बहुत बड़ा रोल रखता है और हमें उसको ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो विज्ञान और पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक भारत ने आर्थिक विकास के साथ साथ ही पर्यावरण को सुरक्षित रखने में एक मिसाल पेश की है। हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत मिले अपने लक्ष्यों को समय से पहले ही हासिल कर लिया है, लेकिन क्या एक देश या एक सरकार के प्रयास काफ़ी होंगे? दोस्तों, अगर उत्तर की बात करें तो बिल्कुल नहीं। हर एक व्यक्ति जब जुड़ा होगा तभी इस प्रकार के प्रयासों को हम निरंतर बनाए रख सकते हैं, या फिर हम यूँ कहें कि सफलता की इस मुकाम तक ले जा सकते हैं। दोस्तों, ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली गैसें, हमारे एयर कंडीशनर्स और फ्रिज से निकलने वाले जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं उनसे आती है, जिन्हें हम CFC कहते हैं। अगर हम अपने कूलिंग उपकरणों की समय पर सर्विसिंग कराएं, गैस लीक होने से रोकें और स्टार रेटेड पर्यावरण अनुकूल उत्पाद ही खरीदें, तो हम अपनी ओजोन को फटने से बचा सकते हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रयास हमारे द्वारा किए जाने चाहिए और बहुत ही कहें कि हम जरूरी भी है। हम अपने घरों में बिजली बचाएंगे और ऐसे स्प्रे का इस्तेमाल बंद कर देंगे जो हवा को जहरीला बनाता हो। निश्चित रूप से इस प्रकार के छोटे छोटे प्रयास वो बहुत बड़ा हम यूँ कहें कि सामने आएगा उस रूप में कि जिसे हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के लिए वो काफ़ी अनुकूल सौदा साबित होगा। जैसे धूप में हम छाता लगाते हैं, वैसे ही ओजोन धरती का छाता है। छाता फटेगा तो हम सब बीमार हो जाएंगे, इसलिए पैड लगाना भी उतना ही जरूरी है जितना कि हम सब की अलग अलग प्रकार की ज़रूरतें होती है, जिसे हम अच्छे से जानते हैं, बचपन से हमने सीखा है, समझा है, लेकिन उसको हम प्रैक्टिकल में तभी कन्वर्ट कर पाएंगे जब हम उन सारी चीज़ों को सीरियसली लेंगे, उसी रूप में जिस रूप में हमारे लिए हमारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, उसी प्रकार से हमारा नेचर भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। आओ मिलकर हाथ मिलाएं, धरती का सुरक्षा कवच बचाएं, ओजोन परत सुरक्षित होगी तभी तो खुशहाल भविष्य हम पा सकेंगे। दोस्तों, ये तो बात हुई ओजोन दिवस विशेष की। अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: लीजिए सुनिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, खेतीबाड़ी सजीव फोन इन कार्यक्रम में आज दिनांक 16 सितंबर 2026 को फोन इन का विषय है, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशुओं में नस्ल सुधार। इस विषय से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में इस बार विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर महेश कुमार मीणा, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग नागौर। आप भी अपनी पशुपालन संबंधी समस्या या जिज्ञासा के निवारण हेतु हमारे टेलीफोन नंबर 240-168 पर आज दिनांक 16 सितंबर 2026 को शाम 7 बजे से 7:30 के बीच हमें कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर एक बार पुनः नोट करें, 240-168, और नागौर का STD कोड है 01582। सूचना समाप्त हुई।
3: दोस्तों, बात करते हैं जलवायु परिवर्तन। आज जो कि वैश्विक स्तर पर बहुत ही गंभीर संकट बन चुका है, जो हम सब अच्छे से जानते हैं, और इससे निपटने के लिए जो हरित ऊर्जा है, ग्रीन एनर्जी या नवीकरणीय ऊर्जा ही एकमात्र और सबसे प्रभावी विकल्प के रूप में हम देख सकते हैं। पारंपरिक जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल के अत्यधिक उपयोग से भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ है, जो पृथ्वी का तापमान बढ़ा रही है। इसके विपरीत, अगर हरित ऊर्जा के स्रोत प्रकृति से मिलते हैं और ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। निश्चित रूप से अगर हम बात करें हरित ऊर्जा के विकल्पों की, तो सबसे बड़ा नाम आता है सूर्य की रोशनी से बिजली बनाने के लिए सोलर पैनल का उपयोग करके सौर ऊर्जा बनाना, सोलर एनर्जी। भारत इसे

क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिस परिवर्तन को हम अपने आसपास भी देख सकते हैं। इसके साथ ही पवन ऊर्जा, हवा की गति का उपयोग करके पवन चक्कियों के माध्यम से विद्युत उत्पादन किया जाता है, जो अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों के अनुकूल उसे लगाया, स्थापित किया और उपयोग में लिया जाता है। साथ ही बहते हुए पानी या नदियों पर बांध बनाकर टरबाइन की मदद से बिजली बनाना, जल विद्युत जो ऊर्जा है उसके रूप में उसको जल को कन्वर्ट करना, इसके साथ ही बायोमास और जैव ऊर्जा भी इन्हीं के विकल्पों में शामिल है। कृषि अवशेषों, कचरे और जैविक पदार्थों से जो ऊर्जा का निर्माण किया जाता है उसे ही बायोमास या जैव ऊर्जा हम कहते हैं, जिसमें भी प्रदूषण बहुत ही कम होता है और काफ़ी किफ़ायती भी है। साथ ही भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के भीतर की प्राकृतिक गर्मी, भाप और गर्म पानी का उपयोग करके जो बिजली पैदा की जाती है वो भी इन हरित ऊर्जा विकल्पों में शामिल है। दोस्तों, निश्चित रूप से हरित ऊर्जा के उपयोग से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन लगभग शून्य हो जाता है, इससे वायु की गुणवत्ता भी सुधरती है। साथ ही जीवाश्म ईंधन के भंडार सीमित हैं और एक दिन खत्म हो जाएंगे, वहीं हरित ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो कभी न खत्म होने वाले, यानी कि अक्षय ऊर्जा सोर्स हैं। साथ ही ये आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए आर्थिक विकास की गति को भी बनाए रखने वाले हैं, यानी कि सतत विकास के अनुकूल हैं। दोस्तों, हमारी बातें आगे भी जारी रहेगी, पहले सुनते हैं कार्यक्रम का ये सॉन्ग।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: दोस्तों अब बात करते हैं करियर की। पर्यावरण विज्ञान और रिन्यूएबल सेक्टर आज के समय में युवाओं यानी कि हम सब के लिए सबसे तेजी से बढ़ते और सबसे सुरक्षित करियर विकल्पों में से एक है। जलवायु परिवर्तन और ग्रीन एनर्जी पर बढ़ते फोकस के कारण इस सेक्टर में नौकरियों की भी भरमार है। दोस्तों अलग अलग क्षेत्र में पर्यावरण के संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और सस्टेनेबिलिटी पर काम किया जा रहा है। एनवायरमेंटल साइंटिस्ट कंसल्टेंट के रूप में ये पर्यावरण पर इंसानी जो असर है उसका अध्ययन करते हैं और कंपनियों को प्रदूषण कम करने की सलाह देते हैं। इसके साथ ही एनवायरमेंटल इंजीनियर वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन करने का काम करते हैं। इसके साथ ही ESG एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आजकल हर बड़ी कॉरपोरेट कंपनी में ESG यानी कि एनवायरमेंटल सोशल एंड द गवर्नेंस डेटा को एनालाइज करने के लिए काफ़ी हद तक ये जो पोस्ट है उसकी मांग बढ़ रही है। इसके साथ ही इकोलॉजिस्ट यानी कि जंगलों, वन्य जीवों और उनके इकोसिस्टम के संरक्षण पर काम करने वाले भी काफ़ी हद तक इनकी भी मांग और डिमांड बढ़ रही है। निश्चित रूप से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके साथ ही फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में साइंटिस्ट और ऑफिसर की पद पर, इस प्रकार की पोस्ट पर निश्चित रूप से अलग अलग प्रकार की जॉब्स अवेलेबल।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अंटार्कटिका के उस विवरण में दिखता है हमारी प्रकृति का हास। जब विज्ञान ही बन जाए सहारक तो कैसे हो जीवन का विकास। ये छेद केवल अंबर में नहीं हमारी चेतना का शरण है। प्रकृति से किया हर छल मानव जाति का अपना मरण है। उठो हे ज्ञान पुंज है तरुण रक्त, अब मौन तोड़ने का समय है। किताबों के पन्नों से निकलकर इस धरा को जोड़ने का समय है। चलो संवारे उस जीने आवरण को, फिर से हरित संकल्प उठाएं, ओजोन की उस छतरी के नीचे मानवता का नया कल सजाएं। जी हाँ दोस्तों, निश्चित रूप से हमारे प्रयास हमें करने होंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट्स हैं, NGOs हैं, उनके द्वारा प्रयास किए जाते हैं, लेकिन जब तक जमीनी स्तर पर मूल रूप से हम सब नागरिकों के द्वारा प्रयास नहीं होंगे, तब तक वो हमें सफलता के रूप में कन्वर्ट होते भी नहीं दिखेगा। दोस्तों, इन्हीं संकल्पों और विचारों के साथ आज का युवाणी बस यहीं तक। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 5:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम पणिहारी।

गैस परिजन आवे ने एलपीजी गैस आन सबरा कहीं है अपनी धरती में एक सीमित भंडार होने की वजह अनुचित उपयोग आना पृथ्वी पर हमेशा वास्ता खत्म कर दे। इस वास्ते देखो अपने घर में घरेलू गैस रो उपयोग तो करनो पर मैंने व्यर्थ में खर्च नहीं करनो। जीरो कहीं है कि बा आपने तो घना दिन तक काम आवे ही है साथ साथ बार लोगारो भी सहयोग हो जावे जीरे इनकी घड़ी जरूरत हो और समय रहता बाने भी आ चीज मिल जाए या गैस मिल जाए है नहीं बना। देखो बना आप जब भी घरेलू गैस रो उपयोग करा तो आपने यही बात रो ध्यान रखनो कि आप जगह गैस चूल्हा रो उपयोग कर रहे हाँ वो चोखो और ठीक होना चाहिए और जबकि गैस पाइप टंकियों गैस चूल्हा ने जोड़ रखियो है बाबी चोखी होनी चाहिए। और आपने ध्यान रखना कि देखो समय समय पर और आप जब भी खानो बनावा तो बीरा कहीं है कि कई बार थोड़ा खाना का छोटा टुकड़ा अंश यानी कि या जी कि आप बिना लिक्विड कह सका है नहीं और बी अनली सुगंध वह कहीं है खाना रहा पाइप पे पड़ जावे और बी खाना री सुगंध वह कहीं है चूहा जगह हो नहीं बिना कुतर देवे। जीरो कहीं है धीरे धीरे गैस लीक होती रहे और गैस री खपत घनी होवे और कई बार तो बिना देखो गैस लीक होने बड़ा बड़ा हादसा भी हो जावे जकारो भुगतान घना ही लोगों ने जान माल की क्षति होने चुकावनो पड़े। तो बने देखो एक वास्ते घरेलू गैस रो उपयोग करता टाइम अपने घनी प्रकार की सावधानियां रखनी है नी। तो बना बाता तो हाल काम की आप आगे भी बतावा पर आभार सुनाओ प्यारो गीत।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: पेड़ा देखो, घरेलू गैस रो उपयोग आप बचत क्या कर सका, इस बारे में अपनी बात चल रही है नी। तो पेड़ा देखो, घरेलू गैस रो आप जद उपयोग कराओ तो अपने सबों पहला तो ये बात रो ध्यान रखनो कि अपने खानों में सगलो काम पूरा होने के बाद रेगुलेटर ने बंद कर देना। और बिना देखो, गैस की खपत कम होवे मेरे वास्ते अपने हमेशा खानों और दूजी चीज़ा बनावता टाइम घनी बातों ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि देखो, खाना बनाता टाइम अपने जितनी गैस कम या तेज री जरूरत हो मेरी लो अपने पीती ही रखनी। और ध्यान रखना कि भाई गैस पर रखिया पतीला रे लो कटी आरम पार तो नहीं निकल रही, क्योंकि देखो अपनी घनी बहना ने भरम होवे कि घनी लो आरम पार निकलने हूँ चीज घनी भीगी बने, तो आ अपनी बहना की घनी गलत फहमी होवे क्या, क्योंकि देखो गैस री खपत घनी होवे और आपने हमेशा खानों बनावने बाद गैस रे रेगुलेटर ने बंद कर देवनो, क्योंकि जीरो देखो गैस लीक होने वाली घटनाओं भी आप बच जावा। बिना देखो, जटे अपने वास्ते घरेलू गैस री बचत करने पर फायदा होवे नहीं, भी यही अपने करने एक और संसाधन है बिजली, जिन्हें अपने उपयोग करने पर जटे घना ही लाभ मिले बटे ही बिरो उचित उपयोग और जरूरत के हिसाब खर्च करने पर अपनी जेब पर बिरो भार कम पड़े और आप ये वरदान ने खर्च होने भी बचा सका। जी हाँ, कि बिना देखो

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पणिहारी FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। शाम के 6 बजने को है कुछ पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से लेके जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
2: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रूपीज की सीलिंग रहा करती थी, ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रूपये पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
1: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र RCMC या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते चैनलों के माध्यम से निर्यात को सुगम बनाना है। 3 लाख रुपए से अधिक की निर्यात खेपों के लिए वैध RCMC या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता बनी रहेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर कल 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान देश भर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपना 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
3: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
1: महान कलाकार अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि कई दशकों से उनके सहज अभिनय, अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा और शानदार काम ने भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर गहरी छाप छोड़ी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज थिम्फू में भूटान के विदेश मंत्री लिन्यो डी एन थुंगेल से मुलाकात की और व्यापक सहयोग की समीक्षा की। इस दौरान विकास, साझेदारी, ऊर्जा, व्यापार, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में भारत भूटान की बहुआयामी सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। इस सूचकांक में उपराष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत ढांचे और कार्यान्वयन परिणामों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। दक्षिण कोरिया में विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप में मिली शाह, मोना अग्रवाल और अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल R2 टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। राकेश निदागुंडी, आनंदा कृष्णा और स्वरूप उन्हालकर ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल R1 स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की यह पहली पेशकश। फिल्म का नाम जो जीता वही सिकंदर। माफ कीजिएगा, फिल्म का नाम कयामत से कयामत तक।

अभी आपने गीत सुना, हमने लिया था फिल्म कयामत से कयामत तक से। आवाज़ थी अलका याग्निक और उदित नारायण की। यह है फिल्म संगीत की अगली पेशकश। फिल्म का नाम सैनिक। आवाज़ें हैं कुमार शानू और साधना सरगम की।

कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल की गाये फिल्म दिल है कि मानता नहीं के इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत अभी ही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी नागौर का चरमी चैनल है। शाम के 6:20 हुए हैं। डीजे सुनिए कार्यक्रम माटी के स्वर। कार्यक्रम की यह पहली पेशकश आवाज़ बशीर अहमद खां की है।

0: बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: यह हमारे कार्यक्रम की अगली पेशकश आवाज मनभार गौड़ की है।

0: माटिका स्वर कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी नागौर का ये चरण है। शाम के 6:30 होने को है। कुछ पल में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और उसके पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला, 25,000 रुपए प्रतिमाह वेतन वाले भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कवरेज के दायरे में आएंगे। देश भर में कल से 1 महीने का स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू होगा। प्रदेश में 305 नगरीय निकायों में प्रमुखों के पद के लिए दावेदारों की जोर आजमाइश। विश्व ओजोन दिवस के मौके पर प्रदेश में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। और राज्य में कई हिस्सों में मॉनसून की सक्रियता बरकरार, कल 22 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस निर्णय से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के दायरे में आ जाएंगे। सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
2: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
1: केंद्र सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए 0 व्यापारी छूट दर के तहत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से नहीं वसूले। 2,000 रुपए से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रुपए प्रति लेनदेन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। यशोभूमि में 3 दिन का ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ये सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में काम करेगा और सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के हितधारक को साथ लाएगा। इस दौरान विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और नवाचारों को गति देने पर मंथन किया जाएगा। सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मंडल शामिल हो रहे हैं। प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड्स, सिंगापुर और स्वीडन का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 देशों के पवेलियन, 12 राज्य सरकार के पवेलियन और एक समर्पित स्टार्टअप पवेलियन शामिल होगा। देश भर में कल से स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान शुरू होगा। ये 17 अक्टूबर तक चलेगा। इसके तहत साफ सफाई के लिए चिन्हित स्थलों और अधिक आवाजाही वाले सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ बनाने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और सर्कुलर इकोनॉमी तथा वेस्ट टू वेल्थ पहल के जरिए स्वच्छता से समृद्धि को बढ़ावा दिया जाएगा। इस अभियान का विषय स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत रखा गया है। ये विकसित भारत के लक्ष्य में सामूहिक भागीदारी और साझा जिम्मेदारी के महत्व को दर्शाता है। साल 2017 में शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। ये अभियान हर साल आयोजित किया जाता है और देश भर के लोगों को अपने आसपास की सफाई की जिम्मेदारी लेने और स्वच्छता में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी से आज कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने मुलाकात की। लोकभवन में उन्होंने ये शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल श्री बागड़ी से मिलने राज्य की प्रधान महालेखाकार मणि के भी लोकभवन पहुंची। श्रीमती मणि के ने राज्यपाल को राजस्व और व्यय संबंधित लेखा परीक्षण वार्षिक रिपोर्ट पेश की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान नगरीय निकाय चुनाव 2026 के तहत आज जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम तथा सुकेत नगर पालिका के 10 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हुआ। इन मतदान केंद्रों पर ईवीएम में मतगणना के दौरान तकनीकी खराबी सामने आने के बाद फिर से वोटिंग करवाई गई। वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे से की जाएगी। इस बीच राज्य के 305 शहरी निकायों में अध्यक्ष, सभापति और महापौर पद के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया पूरी हुई। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 18 सितंबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस बीच मेयर और अध्यक्ष पद के चुनाव तथा बोर्ड गठन को लेकर राजनीतिक दलों में जोड़ तोड़ और मंथन तेज हो गया है। उदयपुर में भाजपा के पारस सिंघवी को महापौर पद का आधिकारिक प्रत्याशी घोषित किया गया है। यहां कुल 80 में से 53 वार्डो में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है। अजमेर में मेयर पद के लिए बीजेपी से अनामिका शर्मा और कांग्रेस से किरण गढ़वाल ने नामांकन दाखिल किया। डीडवाना कुचामन जिले के नावा में आज एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। नावा थानाधिकारी सुरेश चौधरी ने बताया कि ये दुर्घटना तेज रफ्तार डंपर और कार की टक्कर से हुई, जिसमें कार सवार लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे का शिकार हुआ परिवार मिठड़ी के पास पालड़ी गांव का रहने वाला था। उधर श्रीगंगानगर जिले के समीजा इलाके में आज एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 12 व्यक्ति घायल हो गए। 7 गंभीर घायलों को श्रीगंगानगर रेफर किया गया। समीजा थाना अधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि हादसा सलेमपुर बाजूवाला रोड पर 2 एपीडी की रोही में हुआ, जहां एक पिकअप सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सलुम्बर जिले में जल संरक्षण और भूजल स्तर की निगरानी के लिए शुरू की गई पहल अब अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने जा रही है। जिला प्रशासन और जल ग्रहण विभाग की ओर से तैयार किए गए माय वेल ऐप की ग्लोबल लॉन्चिंग 18 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी में होने जा रही है। जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग के अधीक्षण अभियंता रतन सिंह भाटी ने बताया कि इस ऐप के जरिए गांवों के कुओं का जलस्तर मापकर उसका रिकॉर्ड ऐप पर दर्ज किया जा सकता है। इससे भूजल स्तर में हो रहे बदलावों की जानकारी आसानी से मिल सकेगी।
3: इसके पीछे उद्देश्य है कि जो गांव वाले हैं, गांव के लोग हैं, उनमें ये अवेयरनेस आए, जागरूकता आए कि पानी जो है उसका वाटर का रिचार्ज कितना हो रहा है, बारिश कितनी हो रही है, उसका यूज क्या हो रहा है, ड्रा डाउन कितना हो रहा है, कितना हम यूज कर रहे हैं, ताकि पानी के यूज को लेकर के लोगों में सेंसिटिविटी आए, एक सोच सुधरे और लेटर ऑन पानी को लेकर के आसपास के जो लोग हैं वो एक कोऑपरेटिव बना सकें, ताकि पानी का मैनेजमेंट अच्छा हो, गांव के लेवल पे पानी को कैसे यूज करना उसको वो ही मैनेज करें। ये इसका मूल उद्देश्य है हमारी परियोजना का।
1: आज विश्व ओजोन दिवस है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत तय लक्ष्यों को विकास से समझौता किए बिना हासिल कर लिया है। श्री सिंह आज मुंबई में ओजोन दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पर्यावरण संरक्षण के साथ समावेशी आर्थिक विकास का उदाहरण पेश किया है। श्री सिंह ने इस अवसर पर नेट जीरो पोर्टल और NAPCC डैशबोर्ड भी लॉन्च किया। प्रदेश में भी विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम हुए। विश्वकर्मा जयंती कल मनाई जाएगी। इस दिन श्रम और कौशल का सम्मान किया जाता है और देशभर में कार्यस्थलों तथा कारखानों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। एक रिपोर्ट।
4: विश्वकर्मा जयंती को औद्योगिक जगत, कारीगरों, शिल्पकारों और श्रमिकों द्वारा भगवान विश्वकर्मा के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कामगारों द्वारा बेहतर भविष्य, सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों और अपने कार्यक्षेत्र में सफलता के लिए कामना की जाती है। देश में वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी। इस योजना में 18 व्यवसायों में लगे कारीगर और शिल्पकार शामिल किए गए हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना में टूल किट सहायता के साथ ही ऋण भी प्रदान किए जाते हैं। योजना के तहत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है। सुदर्शन नाहर, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: प्रदेश के 22 जिलों में कल बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, टोंक, कोटा, बूंदी, बीकानेर, श्रीगंगानगर, फलौदी और जोधपुर सहित कई जिलों में कल हल्की बारिश के आसार हैं। जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में अगले 3-4 दिन हल्की बारिश का सिलसिला बना रह सकता है। राज्य के पश्चिमी जिलों से 19 सितम्बर से मानसून की विदाई शुरू होने की संभावना है। ज्यादातर हिस्सों में मानसून की सक्रियता अब धीरे धीरे धीमी पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान की सीमा के आसपास बने चक्रवाती परिसंचरण की परिस्थितियों को मानसून की वापसी के लिए अनुकूल माना जा रहा है। इस बीच पाली के जोजावर सहित आसपास के इलाकों में आज कुछ देर तेज बरसात हुई। श्रीगंगानगर में झमाझम बारिश के साथ ओले भी गिरे। राजधानी जयपुर में भी दोपहर बाद छितराई बारिश हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला, 25,000 रुपए प्रतिमाह वेतन वाले भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कवरेज के दायरे में आएंगे। देशभर में कल से एक महीने का स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू होगा। प्रदेश में 305 नगरीय निकायों में प्रमुखों के पद के लिए दावेदारों की जोर आजमाइश। विश्व ओजोन दिवस के मौके पर प्रदेश में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। और राज्य में कई हिस्सों में मॉनसून की सक्रियता बरकरार, कल 22 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से फलौदी जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख प्रतापा राम ने तैयार किया है। जिले में नगरीय निकाय चुनाव 2026 की प्रक्रिया, फलौदी नगर परिषद और बाप नगर पालिका के सभी 60 वार्डों के परिणाम घोषित होने के साथ पूरी हुई। दोनों निकायों में 11 सितंबर को मतदान हुआ था। कुल 44,308 पंजीकृत मतदाताओं में से 38,456 मतदाताओं ने वोट डाले। जिले में कुल 86.79% मतदान हुआ। फलौदी नगर परिषद में 86.37% और बाप नगर पालिका में 88.66% मतदान दर्ज किया गया। वोटिंग के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। नव मतदाताओं, महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और थर्ड जेंडर मतदाताओं ने भी मतदान किया। 14 सितंबर को फलौदी और बाप में मतगणना कर सभी 60 वार्डों के परिणाम घोषित किए। अब अध्यक्ष पद के लिए चुनावी जद्दोजहद शुरू हो गई है। आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और इसके बाद नाम वापस लिए जा सकेंगे। 21 तारीख को दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा और इसी दिन अध्यक्ष के नतीजे घोषित होंगे। अगले दिन 22 तारीख को उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। इससे पहले जिले भर में चुनावी हलचल रही। प्रत्याशियों ने लोगों से घर घर जाकर संपर्क किया। वहीं राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाएं की रैली निकाली, वहीं निर्वाचन विभाग की ओर से स्वीप गतिविधियों के तहत लोगों को शत प्रतिशत मतदान देने का आग्रह किया गया। साथ ही कई जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से मतदान के प्रति प्रेरित किया गया। स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय समारोह मेजर शैतान सिंह स्टेडियम फलौदी में आयोजित हुआ। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने सुबह 9:05 पर ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। आरएसी और पुलिस सहित विभिन्न दलों ने मार्च पास्ट किया तथा बैंड वादन हुआ। इसके बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रियंका तलानिया ने राज्यपाल का संदेश पढ़कर सुनाया। विद्यार्थियों ने व्यायाम प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों और वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर नगर परिषद सभागार में सांस्कृतिक संध्या आयोजित की गई। जिले के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने सामाजिक जागरूकता और भारतीय संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदर्शनी में विभाजन के दौरान लोगों की पीड़ा, संघर्ष, विस्थापन और बलिदान से जुड़े प्रसंगों को प्रदर्शित किया गया। हरियाली तीज के अवसर पर महिला और बाल विकास विभाग की ओर से सक्षम नारी, स्वस्थ बचपन, समृद्ध राजस्थान कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम नगर परिषद सभागार में हुआ, जहां राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और ग्राम साथिनों के खातों में विभिन्न मदों के तहत डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित की गई। इनमें रक्षाबंधन के अवसर पर 1,100 रुपए, दो यूनिफॉर्म के लिए 1,000 रुपए, सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए 2,000 रुपए तथा मोबाइल डेटा रिचार्ज की राशि शामिल है। पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना के तहत भी राशि दी गई। नगर परिषद सभागार में अटल गौरव स्मृति समारोह का जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और आमजन ने चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। इस कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान 15 जिलों में 5,659 करोड़ रुपए के 944 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। फलौदी जिले में 49 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। फलौदी में पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। लंबे समय से बारिश नहीं होने से खेतों में खड़ी फसलें सूखने लगी हैं। कई क्षेत्रों में फसलें पीली पड़ गई हैं। किसानों ने फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए गिरदावरी करवाने की मांग की है, ताकि प्रभावित किसानों को राहत मिल सके। फलौदी जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, केंद्रीय मंत्रिमंडल कर्मचारी भविष्य निधि रो फायदो बत्ता लोगों ने दिरावण सारू तनख्वाहरी सीमा 15,000 बधार 25,000 रुपया हर माह करण रो फैसलो कीनो। देश में काल एक महीना रो स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू करियो जावेला। प्रदेश में 305 नगरीय निकाया माए मुखिया रा ओहदा सारू दावेदाना री जोर आजमाइश। विश्व ओजोन दिवस रे मौके राज्य में न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी चिया। हर प्रदेश रा कई हल्का माए चौमासारी बिरखा। काल 22 जिला माए बरसात रो येलो अलर्ट। समाचार सागर में सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय मंत्रिमंडल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ माए शामिल फेवनसारू जरूरी तनख्वाहरी सीमा 15,000 बधार 25,000 रुपया प्रतिमाह करती नी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव मंत्रिमंडल री मीटिंग पाछे आज खबर नवीसा ने आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि इन फैसलाओं 51,00,000 बत्ता और कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज रा दायरा माया जावेला। सरकार रो सालाना खर्च करीब 11,339 करोड़ रुपया फेवन रो अनुमान है। इनु मजूरा सारू सामाजिक हिफाजत रो दायरो बध जावेला।
2: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी, ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
4: केंद्र सरकार कहो है कि लोगों बीच सामान्य तौर किणी रकम रो यूपीआई रजरिए लेन देन माथे कोई फीस नहीं लगेला। वित्त मंत्रालय रे मुजब कारोबारियां सारू शून्य व्यापारी छूट दर रा तहत लेन देन सागे कारोबारियां रा 2,000 रुपया ताई रा चुकारा माथे कोई फीस नहीं लगेला। मंत्रालय रे मुजब यूपीआई फीस किणी जनाकानियों कारोबारी ने 2,000 रुपयों बत्ता चुकारा री सूरत माई लागेला। मंत्रालय साफ कीनो है कि यूपीआई ऐप मुहैया करावन वाली कंपनियां प्लेटफॉर्म फीस नहीं ले सके है। 2,000 रुपयों बत्तारा लेन देन माथे 0.4% री फीस लागेला। 75,000 रुपया या इनो बत्ती रकम रा हर लेन देन माथे बत्ताऊ बत्ता 300 रुपया लागेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया प्रदर्शनी रा 5वां संस्करण रे शुरुआत रो कार्यक्रम है। सेमिकॉन इंडिया में विनिर्माण क्षमता ने मजबूत बनावण, निवेश लावण और नवाचारा ने गति देवण रे बारे में चर्चा करी जावेला। सम्मेलन में 600 प्रदर्शक न्यारा न्यारा देशों री 300 कंपनियां और 50 देशों रा नुमाइंदा शामिल फैला। प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड्स, सिंगापुर और स्वीडन रा नुमाइंदा रा 12 राज्य सरकारां रा और एक समर्पित स्टार्टअप रो पवेलियन शामिल फैला। देश में काल स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान शुरू करियो जावेला। 17 अक्टूबर ताई चालन वाला ई अभियान रा तहत साफ सफाई सारो पिछाण करी जी ठोड़ा और बत्ती आवाजाही वाली जगह ने साफ करण माथे जोर दियो जावेला। इस आगे नौजवाना री भागीदारी बधावण और सर्कुलर इकोनॉमी और वेस्ट टू वेल्थ पहल रे जरिए स्वच्छता से समृद्धि ने बधावो दियो जावेला। ये अभियान रो मुद्दो स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत राखी चियो है। साल 2017 में चलाई जो स्वच्छता ही सेवा अभियान स्वच्छ भारत मिशन रो खास हिस्सो है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ेऊ आज जयपुर रा लोकभवन में कर्नाटक रा राज्यपाल थावरचंद गहलोत शिष्टाचार भेंट कीनी। राज्यपाल श्री बागड़ेऊ राज्य री प्रधान महालेखाकार मणि के ई लोकभवन में मुलाकात कर आमदनी और खर्चाओं जुड़ी लेखा परीक्षण वार्षिक रिपोर्ट पेश कीनी। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राजस्थान नगरीय निकाय चुनाव 2026 रा तहत आज जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम सागे सुकेत नगर पालिका रा 10 मतदान केंद्रा में पाछा वोट पड़िया। वोटां री गिनती रे दौरान आ मतदान केंद्रा माथे लगाई जी ईवीएम में तकनीकी खराबी आ जावण रे कारण वोट उजू पड़िया। वोटां री गिनती काल समारे 8 बजे शुरू फैला। ई बीच राज्य रा 305 शहरी निकायां में अध्यक्ष, सभापति और महापौर ओहदा सारू पर्चा दाखिल करण रो काम पूरो फेंक्यो। काल आरी जांच करी जावेला और 18 सितंबर ने नाम पाछा लिया जा सकेला। ई बीच मेयर और अध्यक्ष ओहदा माथा चुनाव और बोर्ड बनावण रे बारा माय सियासी पार्टियां माय जोड़ तोड़ और विचार करण रो काम तेज फेंक्यो है। उदयपुर माय भाजपा रा पारस सिंघवी ने महापौर ओहदा सारू पार्टी रा उम्मीदवार बनाई चिया है। वठे 80 मायू 53 वार्ड माय भाजपा जीत हासिल कीनी। अजमेर माय मेयर ओहदा सारू भाजपा री ओरू अनामिका शर्मा और कांग्रेस री ओरू किरण गढ़वाल नाम पाना दाखिल कीना। डीडवाना कुचाम

0: ਵੀ ਕੋਰ ਮਾਥੇ ਉਬੀ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਟਕਰਾ ਜਾਵਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਾਦਸੋ ਵਿਓ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਲੂਮਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਏ ਪਾਣੀ ਬਚਾਵਣ ਅਰ ਪਾਣੀ ਰਾ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਾਰੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਰ ਜਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਓਰੋਂ ਮਾਏ ਵੈਲ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਚਿਓ ਹੈ। ਈ ਐਪ ਰੀ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰੀ ਸਿਡਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਜਾਵੇਲਾ। ਜਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿਕਾਸ ਅਰ ਭੂ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਰਾ ਐਸੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਬਤਾਇਓ ਕਿ ਈ ਐਪ ਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਾਵਾਂ ਰਾ ਕੂੜਾ ਬਾਵੜਿਆਂ ਮਾਏ ਪਾਣੀ ਰੋ ਲੈਵਲ ਨਾ ਪਰ ਵਾਨੋ ਰਿਕਾਰਡ ਐਪ ਮਾਥੇ ਦਰਜ ਕਰਿਓ ਜਾਵੇਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰਾ ਲੈਵਲ ਮਾਏ ਫੇਰਿਆ ਬਦਲਾਵ ਰੇ ਬਾਰਾ ਮਾਏ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਲਾ।
1: ਇਸਕੇ ਪਿੱਛੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਾਂਵ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਗਾਂਵ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਨਮੇਂ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਏ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸਕਾ ਵਾਟਰ ਕਾ ਰਿਚਾਰਜ ਕਿਤਨਾ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਤਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਕਾ ਯੂਜ਼ ਕਿਆ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ, ਡਰਾਡਾਊਨ ਕਿਤਨਾ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਹਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕੋ ਲੇਕਰ ਕੇ ਲੋਕੋ ਮੇਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਆਏ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੁਧਰੇ, ਔਰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਪਾਣੀ ਕੋ ਲੇਕਰ ਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅੱਛਾ ਹੋ, ਗਾਂਵ ਕੇ ਲੈਵਲ ਪੇ ਪਾਣੀ ਕੋ ਕੈਸੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਸਕੋ ਵਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇ। ਯੇ ਇਸਕਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਮਾਰੂ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਕਾ।
0: आज विश्व ओजोन दिवस है। इस मौके पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह बतायो कि भारत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रा तहत तय लक्ष्य विकास उ समझौता करिया बगैर हासिल कर लीनो है। वे आज मुंबई में राखी जया ओजोन दिवस रा कार्यक्रम में बोल रहा है। मंत्री कहो कि भारत पर्यावरण री हिफाजत करण सागे सगला ने सागे लेर माली विकास री मिसाल पेश कीनी है। श्री सिंह ई मौके नेट जीरो पोर्टल और NAPCC डैशबोर्ड ही शुरू कीना। प्रदेश में आई विश्व ओजोन दिवस रे मौके कई कार्यक्रम राखी जिया। भरतपुर रा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान माए राखी जी संगोष्ठी माए ओजोन परत रा महत्व रे बारा माए जानकारी दी री जी। अजमेर री MDS यूनिवर्सिटी माए सवाल जवाब री होड़ राखी जी। विश्वकर्मा जयंती काल मनाई जावेला। ये दिन श्रम और कौशल रो मान करियो जावे है। ये मौके देश भर माए कमठाना और कारखाना माए खास पूजा अर्चना करी जावे है। पेश है एक रपट।
2: विश्वकर्मा जयंती औद्योगिक जगत कारीगरा शिल्पकारा और मजूरा कानियों भगवान विश्वकर्मा रा त्योहार रा तौरू मनाई जावे है। ये दिन कामगार बेहतर भविष्य, सुरक्षित कामकाजी हालात और वारा कामकाज माए कामयाबी री कामना करे है। देश माए साल 2023 माए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चलाई जी ही, जिन माए 18 भांतरा कारोबार माए लागोड़ा कारीगर और शिल्पकार शामिल करी जा है। PM विश्वकर्मा योजना रा तहत टूल किट और वासागे दूजा काम माथे कर्जी दियो जावे है। योजना रा तहत हाल ताई 30 लाख पात्र लोगा रा नाम मांडिया जा चुका है। समाचार कक्षों सालेहा गाजी।
0: अरबे मौसम। प्रदेश रा 22 जिला माए काल बारिश रो येलो अलर्ट जारी करी चियो है। मौसम विभाग रे मुजब जयपुर, टोंक, कोटा, बूंदी, बीकानेर, श्रीगंगानगर, फलौदी और जोधपुर समेत कई जिला माए काल हल्की बिरखा रा आसार है। जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभाग रा कुछ जिला माए आवता 3-4 दिन ताई हल्की बिरखा रो दौर चालतो रहवण री संभावना है। दूजगानी राज्य रा आतुणी हल्का माए 19 सितंबर उ चौमासा री विदाई शुरू हेवण रा आसार है। ई बीचे आज पाली जिला माए जोजावर समेत अरसारा रा हल्का माए कुछ देर ताई जोरदार मेह बरसियो। श्रीगंगानगर माए झमाझम बारिश सागे ओला पड़िया, जबकि राजधानी जयपुर माए दोपहरा पाछे कठे कठे बिरखा फी। लाडला 24 घंटा माए अजमेर, पाली, भरतपुर, कोटा, धौलपुर, डूंगरपुर, नागौर और राजसमंद समेत कई जिला माए हल्की मझला दर्जारी बिरखा फी, जिणु पारो 1-4 डिग्री सेल्सियस ताई उतर गयो। जैसलमेर माए सबू बत्तो 39.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करी जियो। जल संसाधन विभाग रे मुजब ई चौमासा माए हाल ताई डीग और धौलपुर माए सामान्य बत्ती बिरखा फी है। जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और उदयपुर समेत 14 जिला माए सामान्य कम, जबकि अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, नागौर, सीकर और कोटा समेत 24 जिला माए सामान्य बरसात हुई है। आखिर माए खास समाचार एक कर फेर सुन ले रहो। केंद्रीय मंत्रिमंडल कर्मचारी भविष्य निधि रो फायदो 32 लोगों ने दिरावण सारू तनख्वाही सीमा 15,000 बधार 25,000 रुपया।

0: प्रतिमाह करण रो फैसलो की नो। देश में आए काल एक महीना रो स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू करियो जावेला। प्रदेश में आए 305 नगरी निकाय माए मुखिया रा ओहदा सारू दावेदारा री जोर आजमाइश। विश्व ओजोन दिवस रे मौके राज्य माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी चिया। और प्रदेश रा के हल्का माए चौमासारी बिरखा। काल 22 जिला माए बरसात रो येलो अलर्ट। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। प्लीज सुनिए कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनन वाला सगला बाया बाया और टाबरा ने गणा हेतु गणा कोडू आपके मनोज भाई का राम राम। देखो भैया चौपाल माथा मा इन्हें राम राम कराई हाँ। और खेतीबाड़ी कार्यक्रम के मायने खेतीबाड़ी संबंधी पशुपालन संबंधी बातचीत आप करा करा हाँ। आज आप वो कार्यक्रम है खेतीबाड़ी जिको फोन इन कार्यक्रम है। कोई भी पशुपालक भाई आपके पशुओं संबंधी पशुपालन संबंधी डेयरी संबंधी डेयरी व्यवसाय संबंधी जानकारी लेनी चाहे तो आपके स्टूडियो के मायने डॉक्टर महेश कुमार जी मीणा जी का संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग नागौर द्वारा है एन अभी राम राम सा।
1: राम राम शाह।
0: तो आप फोन करो ला 015 82 एसटीडी कोड नागौर का है 240 168। एक बार वापस फोन नंबर 015 82 240 168 माते फोन माते बातचीत कर पर डाक साहब आप कोई भी जानकारी प्राप्ति कर सको जिकी कर सको डेयरी व्यवसाय संबंधी। और आज को मुख्य विषय है कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशुओं में उन्नत नस्ल। तो डॉक्टर साहब आज हम बातचीत करा। पहले तो बात आप बताओ कृत्रिम गर्भाधान काई चीज है।
1: कृत्रिम गर्भाधान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसके अंदर अपन जैसे पशु अपना ताव में आता है हीट में आता है तो अपने जो प्राकृतिक जो है वो तो अपने इसका क्रॉस करवाते हैं लेकिन इसका जो अपने प्राकृतिक जो जो बेल हैं अपने मेल सांड हैं उनका वीर्य संकलन करके उनको अपने ठंडे अगर अपन कहें तो उसको इस प्रकार की गैस होती है लिक्विड नाइट्रोजन जिसका तापमान बहुत ही कम होता है -196°C उस गैस के अंदर एक बड़ी टंकी में भर के और उसको अपने वीर्य को संग्रहित करके उसमें रखते हैं और जब कोई पशु अपने ताव में आता है तो अपने वैज्ञानिक विधि से उसमें वीर्य का वो जो है उनका अपन कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं। कृत्रिम गर्भाधान शुरू हुआ इसका ध्येय ये था कि अपने पशुओं की नस्ल में सुधार हो।
0: बिल्कुल बढ़िया बात।
1: पहले अपने जो जैसे उदाहरण में दूं अपने नागौरी गाय है हरियाणवी गाय है ये ठीक अच्छी गाय हैं इनका दूध भी होता है ठीक है लेकिन बहुत कम दूध इनके होता है तो इनके दूध में कैसे वृद्धि की जाए ताकि अपने पशुपालकों को किसानों को अधिक से अधिक इसकी आय हो इसलिए कृत्रिम गर्भाधान किया गया। इसमें क्या अच्छी नस्ल का वीर्य है उससे ये अपने गर्भाधान करवाते हैं तो आने वाली जो संतति होती है जो संतान होती है जो बछड़ियां या जो पाड़ियां अपनी जो फीमेल पैदा होती है मादा तो वो अच्छी नस्ल की होगी नस्ल का सुधार होगा और जब वो बड़ी होके तैयार होगी तो उनका दूध है वो जैसे उनकी माँ का दूध मान लो 4 लीटर प्रतिदिन था तो उनका लगभग 6 से 8 लीटर प्रतिदिन यानी इस प्रकार वो दुगुना तक हो जाता है। तो ये उसका मुख्य ध्येय उसका ये था। अब अपन बात करें इसमें बहुत अच्छा सब्जेक्ट विषय आपने लिया आज मैं इसमें बताऊं कि अभी सरकार ने एक बहुत ही अच्छी कृत्रिम गर्भाधान के तहत एक सेक्स सोर्टेड सीमन कृत्रिम गर्भाधान योजना का लॉन्च किया है। पिछले वर्ष से इसका सरकार में ये लागू हुआ है अपने और पिछले वर्ष लगभग 2 लाख का ये टारगेट था लक्ष्य था। इसमें क्या है कि अपने जो कृत्रिम गर्भाधान करवाएंगे इसमें जो नस्ल आएगी जो काफ पैदा होगा अपना बछड़ा बछड़ी वो सिर्फ इसमें मान लो 80% तक बछड़ियां ही पैदा होगी या भैंसों में पाड़ियां ही नहीं फीमेल काफी पैदा होगी। इससे क्या होगा कि पशुपालकों को तो ये फायदा होगा कि भी बछड़ियां ही पैदा होगी या पाड़ियां ही पैदा होगी तो बड़ी होके वो दूध के पर्पज में डेयरी में अपने काम आएगी और ये जो बछड़े और आप देख रहे हैं कि इन सालों में क्या हालत हो रही है निराश्रित गोवंश सड़कों पे घूम रहा है गौशालों में निराश्रित गोवंश है तो ये निराश्रित गोवंश अगर कम होंगे इसके अपने मेल तो ये एक बहुत ही मतलब बड़ी समाज के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो अभी अपन देख रहे हैं 2-4 सालों से कितनी दुर्घटनाएं इनसे हो रही है कितने मतलब ये रोडों पे घूम रहे हैं, कितने ये प्यासे भूखे तिसे घूम रहे हैं, तो ये भी परेशान नहीं होंगे और ये पशुपालकों के लिए भी फालतू का ये खर्चा
0: बचेगा।
1: नहीं होगा, ये बचत हो जाएगी।
0: और डॉक्टर साहब क्यों मतलब है कि नर मेल या नर पाडा पैदा हुई कम मात्रा में हुई तो मैंने पौष्टिकता भी चौकी मिली
1: बिल्कुल सही बात है,
0: और बैंक पोषण बढ़िया हुई और ओरिजिनल गर्भाधान हुए बीमें भी अच्छा फायदा अपना मिली।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: अथवा तो कृत्रिम गर्भाधान हुई, कृत्रिम गर्भाधान अपना अच्छी नस्ल का पशु पैदा कर सका और दूध में बढ़ोतरी कर सका। डॉक्टर साहब साथ साथ जान दूध की बात आई, पशुओं की बात आई, तो डेयरी व्यवसाय अगर आप शुरू करा तो कम वो कम कोई नयो आदमी शुरू करना चाहे, नयो पशुपालक करना चाहे, नयो किसान काम करना चाहे तो कितना पशु होना चाहिए?
1: देखो बहुत बढ़िया बात पूछी है आपने। आज के इस बेरोजगारी के ज़माने में ये पशुपालन जो व्यवसाय है अपना जो पुरातन से चला आ रहा है, आज के समय में ये और ज़्यादा ये प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि अब खेती तो हो रही है कम, जमीन तो है उतनी है, तो वो तो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो अब खेती को लोग साथ में पशुपालन का करते हुए ये इस प्रकार का ये कि रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम बन रहा है। तो इसके लिए भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने कई प्रकार के पशुपालकों को ऋण देने के लिए व्यवस्थाएं कर रखी है, कई योजनाएं चला रखी है। मैं बात करूं भारत सरकार की एक NLM योजना है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, ये भारत सरकार की एक योजना है, इसके तहत पशुपालकों को डेयरी के लिए लोन दिया जाता है, ऋण दिया जाता है जिसे कहते हैं अपन। लेकिन ध्यान रहे ये ऋण हमेशा ये पशुपालन विभाग नहीं देता है, ये ऋण तो बैंक के मार्फत ही मिलेगा अपने को।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: पशुपालन विभाग तो इसका प्रचार प्रसार करना, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत हो करना सॉल्व करना, अपने पशुपालकों से आवेदन करवाना, इसका ऑनलाइन आवेदन होता है तो ऑनलाइन आवेदन करवाना, इसमें वो पूरी सहायता करता
0: करते हैं,
1: है।
0: बिल्कुल सही।
1: तो मैं इसका संक्षिप्त में थोड़ा सा आपको बताऊं, ये बहुत ही अच्छी योजना है, ये इसमें बकरी पालन भी है, भेड़ पालन भी है और डेयरी भी है इसमें। तो इसमें आप कम से कम 10 गायों से अपना व्यवसाय शुरू करें, डेयरी के पर्पज से उद्देश्य से आप कर रहे हैं, पर्पज इसका स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप 10 गायें आपके पास होनी चाहिए।
0: बिल्कुल सही।
1: तो 10 गायें आप लोगे तो आप जो आपके नजदीक बैंक है तो वहां जाके आप संपर्क कर सकते हैं, जहां आपका अकाउंट है, आपकी KCC चल रही है, तो उस बैंक में आप जाएं। बैंक को सरकार लक्ष्य देती है कि आप अपने क्षेत्र में इतने रुपयों का ऋण वितरित करेंगे, तो उनके
0: बिल्कुल
1: पास
0: सही।
1: लक्ष्य है, टारगेट है, तो वहां आप जाएं और संपर्क करें कि हमें कैसे लोन मिलेगा। तो वहां आपको एक सिंपल आवेदन करना होता है और उसके बाद में जब आपका आवेदन एक्सेप्ट हो जाता है, स्वीकृत हो जाता है, तो फिर पशुपालन के डॉक्टरों के द्वारा आपके पशुओं का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किया जाता है और आप लोन ले सकते हैं और ये छोटा अपना स्टार्टअप ये जो है डेयरी का कर
0: कर
1: सकते
0: सकते हैं,
1: हैं।
0: बिल्कुल मोटी
1: तो
0: बात है।
1: इनमें पालन संबंधी किसी प्रकार की समस्या हो, इसके लिए हमारे हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पे हमारे कर्मचारी बैठे हैं, नज़दीक जो बड़े कस्बे हैं हमारे हॉस्पिटल हैं, वहाँ डॉक्टर बैठे हैं, तो वहाँ आप कभी भी जाके उनसे इसके बारे में विस्तृत जानकारी
0: ले सकते हैं।
1: ले सकते हैं।

0: सकते हैं।
1: ठीक है डॉक्टर साहब, आज तो बात आप करी ही, भैया ने वापस याद दे रहा हूँ, पशुपालक आपा खेतीबाड़ी संबंधी भी खेतीबाड़ी डॉक्टर विशेषज्ञ आया करें, आज पशुपालन का विशेषज्ञ डॉक्टर महेश कुमार जी मीणा एड़ा है, आपा का फोन नंबर एडेगा 015-82-240-168, कोई भी भाई फोन कर पर आपकी समस्या पूछ सके। और अब ले एक छोटो सो ब्रेक।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: तो डॉक्टर साहब आप बातचीत कर रहे हैं कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशुओं में नस्ल सुधार और साथ साथ डेयरी व्यवसाय की। आप बहुत बढ़िया बात बताई कि 10 पशुओं आप शुरू कर सका और सरकार भी अपन समय समय माता जी की आप बैंक को जाकर बातचीत करा, विभाग को बातचीत करा तो आप ऋण ले सका। तो खेती और पशुपालन है जी को एक अटूट रिश्ता है, दोनों में एक दूसरा को विशेष संबंध है। और आज के टाइम में डेयरी व्यवसाय है जी को पशुपालक वास्ते सदियों अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी बन रहा है, क्योंकि मानसून अनिश्चित है, फसलें खराब भी हो जाए और फसलों का बाजार भाव भी किसान नहीं सही मिल पावे, वास्ते में पशुपालन अगर साथ करे तो भी को फायदा भी ले सके। तो डॉक्टर साहब, उन्नत नस्ल की गायें किसी किसी हुए अगर आप पशुपालन करा और दूध ज्यादा पैदा करने वाली गायें किसी खरीदनी चाहिए?
5: बहुत ही बढ़िया सवाल थे पूछा मनोज जी। पशुपालकों से मैं ये कहना चाहूँगा आकाशवाणी के माध्यम से कि जब आप इस प्रकार के व्यवसाय के बारे में सोचें या जाएं तो आप सबसे पहले इसके जो विशेषज्ञ हैं, जो हमारे चिकित्सा अधिकारी हैं, उनसे आप संपर्क जरूर करें। और अपन नागौर के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अपने यहाँ जो डेयरियाँ खुल रही है और जो अब डिमांड, जो दूध की मांग बढ़ रही है, तो इसमें अपने थारपारकर नस्ल है और दूसरी इसी से मिलती जुलती साहीवाल नस्ल।
1: बिल्कुल बोली बात है।
5: ये नस्ल अपने नागौर के क्लाइमेट के, जलवायु के, वातावरण के हिसाब से बहुत ही सूट करती है और ये इनका दूध भी बहुत ही अच्छा दूध होता है, इनकी फैट परसेंटेज है और स्वास्थ्य के लिए है तो ये दूध भी इनका अच्छा है। तो मैं ये सजेशन, ये सुझाव दूंगा कि थार या साहीवाल ये जो दो हैं ये आप प्रेफर करें। इसके अलावा अपने जैसे नजदीक अजमेर जिला है वहाँ गिर नस्ल भी काफी है, तो अपने नागौर की अपन बात करें तो थावड़ा जो भेरुंदा रिया बेल्ट है वहाँ गिर भी काफी चल रही है, तो गिर के दूध की और साहीवाल और थारपारकर ये अपने दूध के पर्पज के हिसाब से बहुत ही नागौर के क्लाइमेट के हिसाब से शूट करती है, तो ये अपना
1: बहुत बढ़िया बात है। डॉक्टर साहब बतायो, गिर है, साहीवाल है, थारपारकर है, अपन की देसी गायें की नस्ल है। देखो बातचीत अपन और करा, एक फोन आया है। राम राम सा।
6: राम राम सा, राम राम।
1: कौन बोलो सर, किसा गांव बोलो सर?
6: मैं तो वजी हूं बोला।
1: बोलो जी, काय नाम है साहब को?
6: मारा नाम धनजी शर्मा है।
1: अच्छा सर धनजी, आपको काई प्रश्न है डॉक्टर साहब? पूछो।
6: ऑपरेशन हो ऐसा माँ के पड़ोस के माए जी अबार 5 दिन पहले एक भैंस के इंजेक्शन लगायो कृत्रिम गर्भाधान वालो, तो बा भैंस मतलब 10 मिनट में खत्म हो गई कंपाउंडर करने या तो इनको कोई सोई हुए कि या कोई दूजो कारण हो?
5: धनजी मैं आपसे निवेदन करूं, आपको बताऊं कि कृत्रिम गर्भाधान या जैसे आप कह रहे हैं आपने भैंस के करवाया और इसे वो 10 मिनट में खत्म हो गई, भैंस की मृत्यु हो गई, इसका कृत्रिम गर्भाधान से कोई संबंध नहीं होता है।
6: अच्छा।
5: कई बार कोई इस प्रकार वो आकस्मिक ऐसा होना होता है कि अपने एआई कर रहे हैं, कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं और पशु

0: भैंसों में अक्सर देखा गया, आप जो कह रहे हैं ये भैंसें कई बार अचानक गिर जाती है, वो जैसे अपने
1: नहीं
0: ये,
1: गिरे नहीं था।
0: हाँ कई बार नहीं भी गिरती है, तो कई बार ऐसे क्या है कि ये जो अपने जैसे आदमियों में अपन बोलते हैं ना कि हार्ट फेल हो गया, तो इस प्रकार भैंसें क्या है कि फैट की मात्रा इसमें काफी होती है, इनमें इस प्रकार की ये शिकायत कई बार सुनने को मिलती है, लेकिन कृत्रिम गर्भाधान का ये दुष्प्रभाव नहीं है, इसका कोई रिएक्शन इसमें कतई भी बिल्कुल भी नहीं है।
1: ऐसा कोई फायदा मिल सके?
0: इससे फायदा, अगर आपने बीमा करवा रखा है,
1: बीमा कराया डॉसा
0: बीमा कराया हुआ है, तो निश्चित रूप से आपको, जैसे ये भी मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है, और पशुपालन विभाग और जीपीएफ विभाग मिलके ये बीमा कर रहे हैं, तो अगर आपने बीमा करवाया है तो भैंस के कान में कुड़की भी लगी हुई होगी, कुड़की लगी हुई है, बीमा किया हुआ है, तो नजदीक का डॉक्टर है उससे आप तत्काल उनको सूचना दें, और वो इसके पोस्टमार्टम या पंचनामा जो भी है करके, और बीमा विभाग का सर्वेयर आएगा, वो फोटो खींच के अपलोड करके और वो बीमा विभाग को भेजेंगे, और आपको कितने का बीमा है, शायद वो मेरे हिसाब से अधिकतम अधिकतम 40,000 का होता है, तो अगर बीमा करवा रखा है तो निश्चित रूप से आपको क्लेम मिलेगा।
1: तो देखो धन जी, भैंस के हार्ट अटैक टाइप की कोई बीमारी आएगी हुई है और वो कृत्रिम गर्भाधान के टाइम कुदरत के रूप ही खत्म होगी हुए हैं, तो डॉक्टर साहब बताए आपने अगर बीमा कराया तो जरूर फायदा मिले, तो अपन भी को फायदा लेना है और जानवर के है जी को तो है ही। डॉक्टर साहब कोई भैंस पालन करने चाहे तो किसी किसी नस्ल लावे और काई करे?
0: देखो भैंसों में अपने ऐसा है कि भैंस पालन में राजस्थान की और हरियाणा की अपने इस परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ कुंभी जो मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं यही अपने सूटेबल भी है और इनका दूध भी अधिक होता है, बाकी और भी नस्ल है
1: डॉक्टर
0: जैसे,
1: साहब बात करें, एक फोन आया। राम राम सा, राम राम सा,
2: राम राम सा, राम राम सा,
1: कौन बोलो सा और कैसा गाँव बोलो सा?
2: गोपाल राम।
1: ऐसा
2: हेलो,
1: आपको नाम बताओ और गाँव बताओ। हाँ
2: गोपाल राम।
1: तो आपकी काई समस्या है डॉक्टर साहब, पूछो।
2: खेती बाड़ी संबंधित
1: तो
2: है
1: थोड़ा
2: कुछ
1: थोड़ा
2: है
1: साफ बोलो और रेडियो की आवाज धीमी
2: फसल
1: रखो।
2: नष्ट। हेलो
1: हाँ बोलो सा,
2: हेलो,
1: आवाज आ रही है।
0: हाँ
1: आवाज आ
0: बोलो,
1: रही है?
0: सुन रहे हैं, बोलो आप बताओ।
2: फसल संबंधित कुछ बात है?
0: हाँ पूछो, आपकी कोई समस्या है कोई?
1: आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। चलो एक छोटा सा ब्रेक ले वहां।
3: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: बदलो बदलो, आदत बदलो।
5: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
4: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: तो डॉक्टर साहब आप बात करता भैंस पालन की, किसी किसी नस्ल की भैंस आप रखा तो अच्छा दूध प्राप्त कर सका और आप की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके?
0: भैंसिया के बारे में थोड़ा बताऊं कि मुर्रा नस्ल की भैंस अपने सबसे ज्यादा उचित रहती है, क्योंकि ये अपने को आसानी से उपलब्ध भी हो जाती है और अपने क्लाइमेट को ये सूट भी करती है, और इनका दूध है वो अन्य नस्ल की भैंसों से सबसे अधिक होता है, तो मुर्रा नस्ल की अगर अपन डेयरी करें भैंसों की तो किसानों को अधिक इसमें लाभ होता है।
1: बिल्कुल पूरी बात है डॉक्टर साहब की। मुर्रा नस्ल की अगर अपन भैंस खरीदा और वह की नस्ल की भैंस है कि अपन डेयरी खोलना तो अच्छा दूध आवे और आप अगर नागौर के क्लाइमेट वास्ते भी बढ़िया है। डॉक्टर साहब आप पशुपालन करा डेयरी करा तो संतुलित पशु आहार गाय ने कहीं कहीं देना चाहिए और भैंसिया ने कहीं कहीं देना चाहिए?
0: बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि अपन डेयरी कर लेते हैं, पशु पालते हैं घर पे, सब कुछ है, लेकिन अपने को इसका न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए इसकी जानकारी बहुत कम लोगों की होती है, न वो इसमें पूछने का वो कभी प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीबाड़ी। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। मैं हूँ आपकी चिर परिचित मित्र विमलेश। नमस्कार श्रोता मित्रों, तो करते हैं एक सुंदर विचार से शुरुआत, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं, हमें जीवन मिला है एक दूसरों में खुशियां बांटने के लिए, इसलिए हमें हमेशा दूसरों के जीवन में खुशियां और सौहार्द बांटना चाहिए। धन्यवाद आपका संदेश के लिए। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम। चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू, रविन्द्र, रौनक सेन। और इसके साथ साथ ही संदेश मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। वो लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम के द्वारा सुंदर व उपयोगी प्रस्तुति के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी जी का, ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे, ग्राम नजीरपुर पोस्ट मोती नगर मसौदा जिला अयोध्या से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा जी का। धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पर्यावरण से संबंधित लघु लोक कथाओं और परंपराओं की। आपको विशेष रूप से ये बता दें कि इस सप्ताह हम जो लोक कथाएं या प्राचीन मान्यताएं लेकर आए हैं, उनमें हमने प्रयास किया है कि वैज्ञानिकता और तर्क से बढ़कर लोगों की प्राचीन मान्यताओं को सामने लाएं, जो आज भी हमें महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। लोक कथाएं और मान्यताएं भी बहुत कुछ कहती हैं, ये भी इतिहास का स्रोत हैं। इसी क्रम में आइए चलते हैं जापान के घने जंगलों में। आज हम बात करेंगे जापान की बहुत प्राचीन पर्यावरण संबंधी मान्यता कोदामा की। कोदामा एक मान्यता है जो सदियों से जापान के पर्वतीय और वन्य क्षेत्रों में चली आ रही है। इसके अनुसार कोदामा यानी पेड़ों की आत्मा। भारत की बात कहें या किसी भी देश की, वहां की प्राचीन मान्यताओं में अक्सर एक बात मानी जाती है कि जंगल या पेड़ों पर जीवात्मा या प्रकृति की आत्मा वास करती है, क्योंकि पेड़ों में भी जीवन है। आपको बता दें कि यदि जापान में लोग किसी पुराने जंगल में जाएं और यदि वहां कोई बहुत पुराना बहुत विशाल पेड़ दिखाई दे, तो लोग उस वृक्ष का अभिवादन करते हैं और उसे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वे मानते हैं कि पेड़ केवल लकड़ी, फलों, औषधियों और छाया का ही स्रोत नहीं है, लेकिन इस पर कोदामा का निवास हो सकता है। तो कल्पना कीजिए श्रोताओं, आप जापान में हैं और किसी जापानी टूरिस्ट गाइड के साथ समूह में जंगल घूमने गए हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और अचानक आप सबकी नजर एक बहुत पुराने पेड़ पर पड़ती है, जिसका तना इतना विशाल है कि उसे कई लोग मिलकर भी शायद पूरी तरह घेर न पाए। वो मातृवृक्ष है जो लगभग आधे जंगल का पोषण कर रहा है। तो ऐसे पेड़ को देखकर आपको गाइड जरूर बताएगा कि जापान की लोक मान्यता के अनुसार ये केवल पेड़ नहीं है, इसमें कोदामा का वास और आशीर्वाद है, इसीलिए लंबी आयु इसे मिली है। गाइड कहेगा कि पुराने पेड़ों का विशेष सम्मान करें, क्योंकि वे मातृवृक्ष हैं और आसपास के जंगलों को उन्होंने ही उगाया है, उससे ही दूसरे छोटे पेड़ों को जीवन मिला है। साथियों, और यही बात कोदामा की परंपरा को

0: पर्यावरण की दृष्टि से बहुत रोचक बना देती है, क्योंकि जब किसी समाज को ये महसूस होने लगे कि पेड़ में भी जीवन है, पेड़ का भी सम्मान है, तो कुल्हाड़ी उठाने से पहले, उनकी अंधाधुंध कटाई करने से पहले वो समाज 10 बार सोचेगा, और यही पर्यावरण के प्रति सच्ची जागरूकता है। कोदामा की लोकमान्यता हमें आधुनिक भाषा में एक बहुत सुंदर विचार देती है, पेड़ों और प्रकृति को केवल संसाधन मत समझिए, उसे जीवन का आधार समझिए। सचमुच कितनी अद्भुत बात है ना श्रोताओं। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं ये लकड़ी है, ये पानी है, ये जमीन है, लेकिन प्रकृति हमें शायद ये याद दिलाती है, मैं केवल तुम्हारे उपयोग की वस्तु नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जीवन का आधार हूँ। श्रोताओं, भारत, जापान, अमेरिका और दुनिया के सभी देशों में प्रकृति के प्रति ऐसी मान्यता है जो हमें संदेश देती हैं कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति और पेड़ों को कितनी गहरी और सम्मान की दृष्टि से देखा था। तभी तो हमारे भारत में भी पेड़ों या वनस्पति को नमन किया जाता है। तो उमंग के हमारे प्रिय श्रोताओं, जब भी किसी पुराने पेड़ के पास से गुजरें, एक पल जरूर रुकिए, उसकी छाल को देखिए, उसकी शाखाओं को देखिए और सोचिए, इस पेड़ ने हमसे पहले न जाने कितनी ऋतुएं देखी होंगी, कितनी पीढ़ियां आईं और चली गईं, और ये पेड़ हमें सांस और जीवन देता हुआ अब भी खड़ा है। और शायद यही प्राचीन जापानी परंपरा कोदामा की सबसे सुंदर सीख का सारांश है, क्योंकि जिस दिन से हम पेड़ों को केवल काटे जाने वाली लकड़ी के रूप में देखना बंद कर देंगे, उसी दिन से शायद हम जंगल को भी केवल जमीन का एक टुकड़ा समझना बंद कर देंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जापान की कोदामा परंपरा पर। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वॉटर। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित ये एक संगीत प्रधान कार्यक्रम है, जिसके द्वारा बताया गया है कि निरंतर अभ्यास और कार्य करते रहने से असंभव से भी असंभव लगने वाला कार्य संभव हो जाता है।
1: हेलो चिल्ड्रन।
2: हेलो मैम।
1: हाउ आर यू ऑल?
2: वी आर फाइन मैम।
3: आई एम गुड मैम।
1: वेरी गुड, वेरी गुड दैट यू ऑल आर गुड। डू यू लाइक गोइंग टू द गार्डन?
2: यस मैम, आई लाइक इट।
1: व्हाट डू यू सी इन द गार्डन? टेल मी Vanya, Soham, Lavish, what do you see in the garden?
4: I see beautiful flowers.
1: And any other thing that you like in a garden?
5: I like sitting under the tree.
1: And you, Soham?
6: I like to see butterflies.
1: Yes, butterflies are really beautiful. Now tell me, do you hear something in the garden? Children, tell me. Any sound?
2: Yes, ma'am.
5: Yes, ma'am. I listen to the sweet chirping of birds.
1: Very good. That there are so many beautiful things in a garden, isn't it?
2: Yes, ma'am.
1: So, children, when all these beautiful things come together, they make what? They all make a beautiful
2: garden.
1: Wonderful! You have replied so well. So children, when small and little things come together, they make a big and beautiful thing. Okay?
2: Yes, ma'am.
1: All right. So now, let us have some puzzle. Ready?
2: Yes, ma'am.
1: Okay. Tell me, if so many trees are together, what will they make?
2: A jungle!
1: That's correct! And if so many grains of sand are together, as far as you can see, they will make
2: a desert!
1: Very nice! Let us recite

0: So children, you have just heard this song. What did we learn? Tell me.
1: Little things together make big things.
0: Little things together make
2: big things.
0: Yes. So, if all of you little children live together with love and kindness, you will spread happiness all around.
3: लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत. और अब सुनते हैं कार्यक्रम श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन. इस कार्यक्रम में महान तपस्वी, दार्शनिक और चिंतक श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के बारे में एक सुंदर नाटक द्वारा समझाया गया है और उनकी शैक्षिक प्रविधियों की चर्चा की गई है.
4: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदों के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे. शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं. प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन.
5: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ.

उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहां बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पौंडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: आहा, वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस

0: छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
1: जी।
0: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
2: वो क्या था सुबोध जी?
0: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
1: जी।
0: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती में कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
1: जी।
0: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करें। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
2: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
0: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
1: जी।
0: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
2: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
0: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
1: जी।
0: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
2: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
0: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
2: हाँ?
0: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
2: और ब्रह्मचर्य?
0: रामकृपाल
1: जी,
0: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
1: जी।
0: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
2: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
1: जी।
0: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
1: जी हाँ।
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें एक दो विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
2: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि

0: चेंज है। उसके अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं, बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो, वो बच्चे में सभी छह इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: छह इंद्रियों में भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो पांच ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये पांचों इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे, यानी शिक्षा ऐसी हो जैसे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल,
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

0: श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पौंडेचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। रात्रि 8 बजे कुछ में आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम चीयर

0: अच्छा खिलाड़ी, वो भी मेडल जीत चुके थे लास्ट टाइम, तो ये एक काफी एक्सपीरियंस और यंग टीम का कॉम्बिनेशन है रेसलिंग में।
1: सारिका, एशियन गेम्स से पहले पहलवानों की तैयारियों पर खास ध्यान दिया गया। उन्हें न सिर्फ एक्सपोजर के लिए बाहर भेजा गया बल्कि विदेशी जमीन पर ट्रेनिंग भी दी गई और फॉरेनर कोच ने भी हमारे पहलवानों को ट्रेनिंग दी। इसका कितना फायदा इस बार मिलेगा?
2: बिल्कुल, इसका काफ़ी फ़ायदा आपको इस बार एशियन गेम्स में देखने को मिलेगा। मैं खुद नेशनल कैंप में रह रही हूँ और ट्रेनिंग कर रही हूँ नेशनल कैंप में। तो हमारे गर्ल्स रेसलिंग में फॉरेन कोच हैं, जापनीज कोच अकाशी, जो कि बहुत टेक्निकल हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे वर्ल्ड स्टेज पे जापान जो है वो वुमेन्स में लीड करता है। आप वर्ल्ड चैंपियनशिप देख सकते हैं, आप ओलंपिक्स देख सकते हैं, तो जापान के 2 से 3 गोल्ड आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो जापानीज कोच हमें उनकी टैक्टिक्स बताते हैं, टेक्निक्स बताते हैं, कैसे उनके साथ कॉम्पीट करना है, क्या उनकी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी हमें लेके चलनी है। अपना ट्रेनिंग प्लान जैसे हमारा चेंज किया गया है, उनका मानना है कि जैसे बाउट्स अगर दिन में होती हैं तो हमारी ट्रेनिंग भी दिन में ही होनी चाहिए, जो हमारी बाउट प्रैक्टिसेस होती हैं।
1: अच्छा,
2: स्पीड वर्क पे उन्होंने बहुत फोकस किया है, एंड्योरेंस पे। साथ ही हमारे हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर इयान बटलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं हर तरह से। तो ऐसे ही फ्री स्टाइल में आप देख सकते हैं कोच शाको हैं। सेम अभी जो फ्री स्टाइल की टीम थी वो आर्मेनिया ट्रेनिंग के लिए गई थी, ट्रेनिंग कैंप था, बहुत अच्छा फॉरेन एक्सपोजर था। उसके बाद रशिया में उन्होंने एक टूर्नामेंट खेला जिसमें उन्हें रशियन रेसलर्स के साथ कॉम्पीट करने का मौका मिला। काफी अच्छी परफॉर्मेंस वहां पे रही, सुजीत कलकल ने वहां पे गोल्ड जीता, विकास कालीरमन ने ब्रॉन्ज जीता, और उनके साथ ही बहुत सारे इंडियन रेसलर्स को वहां पे फॉरेन एक्सपोजर मिला और प्लेयर्स के साथ कॉम्पीट करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। सेम अगर हम देखें तो ग्रीको रोमन की जो टीम है उसके अंदर भी काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। आप सुमित मलिक को देख सकते हैं, सुनील कुमार को देख सकते हैं, काफी अच्छे प्लेयर्स हैं। उनके साथ भी कोच गोगी जो हैं वो लगे हुए हैं उनकी ट्रेनिंग कराने के लिए। तो बहुत ही अच्छा एक्सपोजर, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग, बहुत ही अच्छी प्रिपरेशंस जो हैं वो रेसलर्स की चल रही हैं।
1: अभिषेक, एशियन गेम्स में हमारा 15 सदस्यीय कुश्ती दल भाग लेने जा रहा है। इसमें पुरुष फ्री स्टाइल में अमन सहरावत 57 किलोग्राम, सुजीत कलकल 65 किलोग्राम, सागर जगलान 74 किलोग्राम, दीपक पूनिया 97 किलोग्राम, रजत रूहल 125 किलोग्राम भार वर्ग में शामिल हैं। वहीं महिला फ्री स्टाइल में दीपांशी 50 किलोग्राम, अंतिम पंगाल 53 किलोग्राम, मनीषा भानवाला 57 किलोग्राम, मानसी अहलावत 62 किलोग्राम, निशा दहिया 68 किलोग्राम, प्रिया मलिक 76 किलोग्राम भार वर्ग में शिरकत करेंगी। ग्रीको रोमन शैली में सुमित दलाल 60 किलोग्राम, अमन बरोनिया 77 किलोग्राम, सुनील कुमार 87 किलोग्राम और नितेश सिवाच 97 किलोग्राम भार वर्ग में देश की चुनौती रखेंगे। लेकिन इतने पहलवानों की मौजूदगी में महिला दल की ज्यादा तगड़ी दावेदारी मानी जा रही है, इससे आप कितने सहमत हैं और वजह क्या है?
0: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारी वुमेन्स टीम कंसिस्टेंटली इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करते आ रही है और एक नया ब्रीड भी ऊपर आ रहा है। जैसे दीपांशी फोगाट 50 केजी में है, 17 साल की है, उन्होंने ट्रायल्स में सबको सीजेंड प्लेयर्स को हरा के एशियन गेम्स में अपनी दावेदारी पेश की है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि हमारा नेक्स्ट लेवल, क्योंकि हमें एले ओलंपिक्स भी देखना है, तो किस तरह से यंग ब्रीड हमारी परफॉर्मेंस कर रही है। तो अंतिम पंगाल तो है ही, निशा दहिया है, सीजन प्लेयर है, उनसे उम्मीद रहेगी। पर हमें यह भी देखना है कि ये जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, चाहे वो दीपांशी हो, मानसी अलावत हो, एज ग्रुप टूर्नामेंट्स में इंटरनेशनल लेवल पे ये जीत के आ रहे हैं, तो एशियन गेम्स में इनको एक पास एक बहुत बड़ा मौका है कि अपने आप को जो है किस लेवल पे ये देखती है और आगे कैसे इस परफॉर्मेंस को लेके जाती है। मेंस खिलाड़ियों में मैं अमन शेरावत की बात स्पेशली करना चाहता हूं, क्योंकि उनका जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है पेरिस ओलंपिक्स में, जब रेसलिंग एक बुरे दौर से गुजर रहा था, कैंप नहीं हो रही थी, फिर भी वो मेडल लेके आए हमारे लिए और उसके बाद से वो कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। तो अमन शेरावत के पास एक्सपीरियंस है, 57 केजी, लोअर वेट कैटेगरीज में हमेशा फ्री स्टाइल में हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उनसे काफी उम्मीदें हैं। और सुजीत कलकल 65 केजी एक ऐसे कैटेगरी में है जो कि बजरंग पुनिया का कैटेगरी कहा जाता है, और बजरंग पुनिया के बाद अगर ऐसा कोई रेसलर आया है जो इतना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, वो सुजीत कलकल है, तो उनके लिए बहुत बड़ा मौका मैं मानता हूँ एशियन गेम्स में कि किस तरह से वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं।
1: एशियन गेम्स में कुश्ती में कंपटीशन का लेवल काफी तगड़ा होता है, और सारिका आमतौर पर किन देशों की कठिन चुनौती होगी और उनके खिलाफ हमारी क्या रणनीति होगी?
2: बिल्कुल, एशिया को जो है वो कुश्ती का हब माना जाता है। एशिया में सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको कुश्ती में देखने को मिलता है। एशियन नेशंस हैं जैसे जापान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना और इंडिया, ये बहुत ही तगड़े माने जाते हैं कुश्ती में, बहुत स्ट्रांग नेशंस हैं। इनकी जो टीम होती है वो काफी अच्छी होती है। आप मंगोलिया को भी ले सकते हैं, ये सारे देश काफी अच्छी टक्कर देते हैं। बहुत अच्छा कंपटीशन रहेगा जिसमें आप देख सकते हैं 50 किलो में यूई सुसाकी आपको कॉम्पीट करती नजर आएंगी, जो कि कई बार की वर्ल्ड चैंपियन है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो ऐसे ही हर एक वेट में 57 kg में आपको देखने को मिलेगा कॉम्पिटिशन काफी अच्छा। 68 में भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंडर्स हैं और 62 में भी मंगोलिया है, जापान है, 76 में किर्गिस्तान है। तो बहुत ही अच्छा कंपटीशन रहेगा और जो मेडल की दावेदारी है वो इंडियन प्लेयर्स की ऐसे ही रहेगी, क्योंकि इंडिया की टीम मैं मानती हूँ कि अभी इन सब से ऊपर बढ़ के आ रही है। जापान को अगर कोई सबसे ज्यादा टक्कर दे सकता है तो वो अभी इंडिया की टीम है
1: जी। और अभिषेक, कुश्ती से अब शूटिंग की तरफ चलें तो निशाने लगाने के इस खेल में हमारी सबसे तगड़ी दावेदारी है। प्रतियोगिता की बात करें तो मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में पार्थ राकेश माने, हिमांशु ढिल्लो, रुद्रांश पाटिल, विमेंस 10 मीटर एयर राइफल में इलावेनिल वलारीवान, सोनम उत्तम मस्कर, विदर्शा विनोद, मेन्स 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, नीरज कुमार, रुद्रांश पाटिल, विमेन्स 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में आशी चौक से विदर्शा के विनोद, तिलोत्तमा सेन, मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में केदारलिंग बी उचा गनवे, गौरव कमलजीत, विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में सुरुचि सिंह, ईशा सिंह, मनु भाकर, मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में अनिश भानवाला, विमेंस 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में ईशा सिंह, मनु भाकर, राही सरनोबत, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में केदारलिंग बी उचा गनवे, सुरुचि सिंह, मेन्स ट्रैप में किनान चेनाई, अवर रिजवी, शपथ भारद्वाज, विमेन्स ट्रैप में नीरू, मनीषा कीर, आशिमा अहलावत, मेन्स स्कीट में अनंतजीत सिंह नरूका, भवतेक सिंह गिल, मैराज अहमद खान और विमेन्स स्कीट में पारिनाज धालीवाल, राजा ढिल्लो, महेश्वरी चौहान जैसे 30 शूटर्स विभिन्न वर्गों में शामिल हैं। युवा और अनुभवी खिलाड़ियों से भरे इस दल में किन खास पर नजरें रखनी चाहिए?
0: बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया आपने धर्मेंद्र जी। पहले तो यहाँ बता दो कि शूटिंग एज ए स्पोर्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है मल्टी डिसिप्लिनरी इवेंट्स कॉम्पिटिशन्स में, चाहे वो एशियन गेम्स हो, ओलंपिक्स हो। सबसे पहले हम लोग शूटर्स को हमारे देखते हैं कि ये कितने मेडल्स जीतेंगे। तो लास्ट टाइम भी जो हमारा 100 का छलांग हम लोगों ने मेडल टैली में पार किया था, उसमें शूटिंग का बहुत बड़ा एक योगदान था। 22 मेडल्स हम लोग लेके आए थे, उसमें से 7 गोल्ड मेडल है, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। उन 7 गोल्ड मेडल्स में आप देखिए तो एथलेटिक्स जो था हमारा सबसे टॉप में था, 28 मेडल्स आए थे, उसके बाद शूटिंग का नंबर है। तो इस बार भी हमें 100 से पार करना है तो शूटिंग टीम को अच्छा करना होगा। और इस बार मुझे ज़्यादा होप्स इसलिए भी है क्योंकि उसके दो कारण हैं। एक कारण ये है कि इस साइकिल में अगर आप देखेंगे तो पिछले एशियन गेम्स के बाद जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ उसमें हमने शूटिंग में काफ़ी अच्छा किया। मनु भाकर 2 मेडल लेके आई और स्वप्निल कुसाले 50 मीटर राइफल 3 में मेडल जीता, 3 मेडल्स हमारे आए शूटिंग में। उसके बाद जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ लास्ट ईयर उसमें हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, हमने इंडिविजुअल कैटेगरीज में मेडल्स जीते, ऐश्वर्य प्रताप तोमर, ईशा, एलाविनिल। तो ये सारे जाएंगे इस एशियन गेम्स में कैरिंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हम लोगों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल के जैसे प्लेटफॉर्म में इंडिविजुअल में मेडल जीता है। ये उम्मीद है हमें कि पिछले बार जितना 22 मेडल्स था उससे हम लोग ज्यादा जीतेंगे इस बार।
1: अगर हांगझोऊ एशियन गेम्स 2023 में हमारे शूटर्स ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पदक जीते नहीं थे बल्कि कह सकते हैं कि बटोरे थे, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज समेत कुल 22 पदक जैसी आपने बात की भारत की झोली में आए थे। अभिषेक, इस बार पदकों की संख्या से आगे निकलना हमारे निशानाबाजों के लिए खुद कितनी बड़ी चुनौती होगी?
0: चुनौती तो है क्योंकि शूटिंग एशियन लेवल पे एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें बहुत स्ट्रांग कंटेंडर्स है। पिस्टल में साउथ कोरिया बहुत स्ट्रांग है, चाइनीज शूटर्स है, तो बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है। बट हमारे शूटर्स कुछ कम नहीं है, हम लोगों ने प्रूव किया है। देखना यह है कि इंडिविजुअल कैटेगरी में हम लोग कितने मेडल्स इस बार जीतते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जितने मेडल्स जीते थे वो ज्यादा मेडल्स टीम कैटेगरी में आए थे, तो टीम कैटेगरी ओलंपिक्स में नहीं है। इस बार हमारे शूटर्स का ये टारगेट है कि इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन में हम लोग ज्यादा मेडल लाए ताकि उस तरह से हमारा आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप का ओलंपिक से क्वालिफिकेशन हो और फिर एले ओलंपिक्स का तक का टारगेट कर सके। तो यहाँ से हमारी जो है शुरू होती है एले ओलंपिक्स की प्रिपरेशन शूटर्स की। और बहुत सारे शूटर्स हैं जिनको पहला बार ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है खेलने के लिए। एक्चुअली मिक्स्ड है, नए प्लेयर्स काफी आए हैं और पुराने प्लेयर्स भी है, तो उम्मीद है काफी अच्छा प्रदर्शन रहेगा।
1: और सारिका, आप खुद युवा और देश की उभरती हुई पहलवान है और चोट की समस्या का सामना किया है, आपसे ये जानना चाहूंगा कि स्ट्रेंथ स्टेमिना के इस गेम कुश्ती में पहलवानों के लिए फिटनेस बनाए रखना कितना जरूरी होता है।
2: कुश्ती में फिटनेस बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, ना सिर्फ कुश्ती में बल्कि हर एक स्पोर्ट्स में। मोस्टली अगर हम बात करें तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स की, जैसे बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, टाई कमांडो हो गया, जूडो हो गया, तो इनमें फिटनेस लेवल का बहुत आपको फर्क देखने को मिलेगा। फिटनेस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपको, इसमें पावर भी चाहिए, एंड्योरेंस भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, स्टेमिना भी चाहिए। आपको बाउट लड़नी है कंटिन्यू, आपकी पूरी बॉडी की पावर लग रही है, आपको सांस भी चढ़ेंगे, आपका दम भी फटेगा, उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और एक बहुत ही अच्छा फिटनेस लेवल आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। अभी अगर हम रेसलर्स की बात करें तो रेसलिंग में हमारे जो कोचेस हैं और साथ में हमारे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के कोच भी हम फेडरेशन ने दिया हुआ है, तो उनके साथ हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका प्रॉपर हमारे पर ध्यान है कि हमारी फिटनेस लेवल है वो बनी रहे, डाइटिशियन हमारे साथ है, हमारी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिटनेस बनाए रखना, अगर आपके फिटनेस अच्छी है तो आपको इंजरीज के चांसेस भी कम होंगे।
1: अभिषेक, भारत की तीरंदाजी टीम की बात करें तो पुरुष रिकर्व टीम में धीरज बोम्बदेवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगे, महिला रिकर्व टीम में कीर्ति शर्मा, कुमकुम मोहोद, अंकिता भगत शामिल हैं। वहीं पुरुष कंपाउंड टीम में साहिल जाधव, कुशल दलाल, गणेश मणि रत्नम तिरुमुरु और महिला कंपाउंड टीम में ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपर्थी, प्रतिका प्रदीप का नाम शामिल है। कुछ दिन पहले धीरज बोम्बदेवरा ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वो इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बने। धीरज की इस कामयाबी से भारतीय कैंप का जोश कितना हाई होगा?
0: बहुत ज्यादा हाई होगा, क्योंकि जब एक आपका खिलाड़ी वर्ल्ड कप फाइनल जैसे प्लेटफॉर्म से जीत के आता है जिसमें सिर्फ टॉप 8 शूटर्स आर्चर्स खेलते हैं और वो आपके साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, तो एक मोटिवेशन आ जाता है कि एक हमारा आर्चर जाके इतने बड़े लेवल पे जीता है। और वहां से डायरेक्टली धीरज मेक्सिको से जापान पहुंच चुका है और ट्रेनिंग कर रहा है और एक्सपीरियंस काफी है, पेरिस ओलंपिक्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था धीरज का, तो धीरज से उम्मीद है कि वो टीम को आगे लेके चलेगा, क्योंकि इस बार का जो टीम है आर्चरी का वो काफी नया टीम है। 3 प्लेयर ही जो है लास्ट एशियन गेम्स से इस बार खेल रहे हैं, उसमें से धीरज है, ज्योति सुरेखा है कंपाउंड वुमेन में, अंकिता भगत है, बाकी सारे नए आर्चर्स हैं। और लास्ट टाइम का जो आर्चरी का हमारा परफॉर्मेंस था वो काफी अच्छा था, 9 मेडल्स हमारे आए थे, हम लोगों ने कंपाउंड में स्वीप कर गए थे हम लोग। इस बार इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आर्चरी में एले क्वालिफिकेशन भी इस यहाँ से होगा, तो वो हमारी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ से बर्थ निकाल सके ओलंपिक्स का भी।
1: जी, और निशाने साधने के पारंपरिक खेल तीरंदाजी में पिछले एशियन गेम्स में भारत के धनुर्धरों ने 5 स्वर्ण समेत 9 पदक जीते थे। टीम कॉम्बिनेशन को देखते हुए क्या लगता है इस बार हम उससे आगे निकलेंगे?
0: हमें आगे निकलना चाहिए क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी है और कुछ नए भी है। ज्योति सुरेखा की अगर बात करें तो बहुत उनका एक्सपीरियंस है, उनके साथ हम लोगों ने, ज्योति और ओजस ने लास्ट टाइम मिक्स्ड फॉर्मेट में कंपाउंड में गोल्ड मेडल जीता था, वो साउथ कोरिया की टीम को हराया था। इस बार उनके साथ साहिल जाधव है जो कि नए प्लेयर है लेकिन वो काफी टैलेंटेड है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में उनका गोल्ड मेडल है और यही वो फॉर्मेट है जहां पे हमारा एले ओलंपिक से क्वालिफिकेशन है, तो उम्मीद है अगर उस तरह का हम लोग परफॉर्मेंस करें तो हमें एले ओलंपिक से कोटा भी मिल जाए। तो काफी बड़ी जिम्मेदारी है जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं आर्चरी के, क्योंकि 2-3 है, कि वो पूरा टीम को साथ में आगे लेके चले।
1: और सारिका, खेलों के विकास के लिए नए भारत में जिस तरह से खेल मंत्रालय, साई और तमाम खेल संघ काम कर रहे हैं उससे खिलाड़ियों के लिए कितना माहौल बेहतर हुआ है?
2: खिलाड़ियों के लिए माहौल काफी बेहतर हुआ है, काफी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं एंड स्कीम्स वगैरह बहुत अच्छी अच्छी निकाली गई हैं। जैसे अगर हम खेलो इंडिया स्कीम की बात करें तो उससे बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है, टॉप स्कीम है उससे बेनिफिट मिल रहा है, ना सिर्फ गवर्नमेंट बट प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी आ रहे हैं, तो काफी सारे स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, बच्चों को जो है, स्पोर्ट्स पर्सन को जो है वो बहुत फायदा मिल रहा है एंड जो कैंप वगैरह लग रहे हैं हमारे तो उससे बहुत बेनिफिट हो रहा है। हर तरह से रिकवरी, ट्रेनिंग, डाइट सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और गवर्नमेंट की फैसिलिटीज भी बहुत अच्छे से हमें काम आ रही हैं।
1: और अभिषेक, बॉक्सिंग का जब भी नाम आता है तो पदकों की हमारी आस बढ़ जाती है। इस बार बॉक्सिंग दल में पुरुष वर्ग में जादूमणि सिंह 55 किलोग्राम, सचिन सिवाच 60 किलोग्राम, सुमित कुंडू 70 किलोग्राम, अंकुश 80 किलोग्राम, कपिल पोखरिया 90 किलोग्राम, नरेंद्र बेरवाल 90 से अधिक किलोग्राम भार वर्ग में भारत की चुनौती पेश करेंगे। महिला वर्ग में साक्षी चौधरी 51 किलोग्राम, प्रीति पवार 54 किलोग्राम, प्रिया गंगा 60 किलोग्राम, परवीन हुडा 65 किलोग्राम और लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम वर्ग में देश की झंडा बरदार होंगी। इन नामों को सुनकर बेहद दमदार दावा नजर आ रहा है, आप क्या मानते हैं?
0: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि इन बॉक्सिंग टीम की हमारी परफॉर्मेंस कॉमनवेल्थ गेम्स में काफ़ी अच्छी रही है, खास करके महिला टीम की जो 5 गोल्ड मेडल वहाँ पे जीता। लेकिन एशियन गेम्स बिल्कुल ही डिफरेंट चैलेंज होगा, एशियन गेम्स में कंपटीशन और भी ज़्यादा होने वाला है। पर हमारे एक एक्सपीरियंस प्लेयर्स है जैसे लवलीना बोरगोहेन, ओलंपिक मेडलिस्ट है, 75 किलो कैटेगरी में खेल रही है, लास्ट टाइम उन्होंने इसी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था, तो उनसे उम्मीद काफ़ी होगी। प्रीति पवार का मैं नाम लेना चाहूँगा, 54 केजी में वो काफ़ी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है, एशियन चैम्पियनशिप में अभी वो गोल्ड मेडल जीती है इस साल, तो ये सारा परफॉर्मेंसेस वहाँ पे जाके एशियन गेम्स में एक और बड़े मंच में देना, ये हमारी तैयारी दिखाएगी कि हम लोग कितना परफॉर्म कर सकते हैं वहाँ पे। वैसे ही प्रिया घनघास है, ये नए टैलेंट है, लेकिन इन्होंने भी एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, तो हमारी महिला टीम काफ़ी अच्छा करते हुए एशियन गेम्स तक अभी तक कर रही है, उम्मीद है इनसे काफ़ी अच्छा उम्मीद रहेगा। मेंस टीम नई टीम है, थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड है, पर जादूमणि सिंह है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सचिन सिवाच एक्सपीरियंस्ड है उनके पास अगेन, और नरेंद्र बेरवाल लास्ट टाइम इन्होंने मेडल जीता था। उम्मीद हमारी रहेगी कि हालांकि कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा होने वाला है बॉक्सिंग में, कि वो लास्ट टाइम का जो हमारा आंकड़ा था 4 मेडल का उससे आगे जा सके।
1: हांगझो में मुक्केबाजी में हमने लवलीना बोरगोहेन के 1 रजत समेत 5 पदक जीते थे, इनमें से 4 मेडल महिला मुक्केबाजों के नाम थे। अभिषेक, वैसे तो दोनों वर्गों में पंच के 1 से 1 उस्ताद नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या मेरी तरह आपको भी लग रहा है कि महिला वर्ग में पदकों की हमारी ज्यादा तगड़ी और दमदार चुनौती है?
0: बिल्कुल, इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, वर्ल्ड कप्स जितने हो, उसमें हमारी जो वुमेन बॉक्सर्स हैं उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा आ रहा है, और बहुत कंसिस्टेंटली से ये परफॉर्मेंस आ रहा है। सारे टॉप बॉक्सर्स को आप अगर देखें, चाहे वो चाइना की हो, कजाकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, इनको हरा रहे हैं हम लोग। प्रीति पवार ने भी इनको हराया है एशियन चैंपियनशिप का जब गोल्ड मेडल जीता हो, जब एशियन टाइटल जीत के अगर आप जब एशियन गेम्स में जाते हो तो कॉन्फिडेंस ही कुछ अलग होता है कि मैं ये इस लेवल पे जीत चुकी हूँ तो यहाँ पे भी वही कर सकते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस रहेगा इनका कि एशियन चैंपियनशिप में हमारी टीम, महिला टीम ने काफी अच्छा किया है और एशियन गेम्स में जाके हमें रिपीट करना है वो परफॉर्मेंस।
1: सारिका, एशियन गेम्स से ठीक पहले भारतीय कुश्ती दल को तगड़ा झटका लगा, 3 भारतीय पुरुष पहलवान डोपिंग के चलते एशियन गेम्स में उतरने से पहले ही बाहर हो गए, इसका कितना मनोवैज्ञानिक असर बाकी के पहलवानों पर पड़ सकता है?
2: इसका काफी असर पड़ेगा रेसलिंग पे, खास करके प्लेयर्स पे। जैसे एक बहुत अच्छी टीम हमारी तैयार हो गई थी और जो भी प्लेयर्स हमारे डोपिंग में फंसे हैं उनसे पूरी दावेदारी थी मेडल की। आप मुकुल दहिया को लगा सकते हैं, एशियन चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट हैं और उनको एक बहुत स्ट्रांग कंटेंडर हम मान सकते थे 86 केजी में, पूरे भारत को उनसे उम्मीदें थी। दीपांशु 130 किलोग्राम भार वर्ग में जो कि खेलने वाले थे ग्रीको रोमन में, उन पे भी डोपिंग का बैन है, और दीपक ग्रीको रोमन के ही पहलवान हैं, उन पे भी बैन लगा है, तो एक बहुत बड़ा झटका भारतीय कुश्ती के लिए ये है। तो अभी उनका नाम तो रिप्लेस नहीं हो सकता क्योंकि टाइमलाइन जो होती है एशियन गेम्स में जाने की, एंट्रीज भेजने की, वो बंद हो चुकी है, लेकिन जो हमारी टीम अभी बाकी बची है हमें उनसे पूरी उम्मीदें हैं कि वो इन सारे मेडल्स को कवर करें।
1: जी, और अभिषेक, अब बात स्क्वाश की, टीम की बात करें तो एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में सूरज कुमार चंद पुरुष टीम और मिक्स डबल्स, वीर चोटरानी मेन्स सिंगल्स और मेन्स टीम, वेलवन सेंथिल कुमार मिक्स डबल्स मेन्स टीम, अभय सिंह मेन्स सिंगल्स और मेन्स टीम में शामिल है। महिला वर्ग में युवा अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा के अनुभव के साथ साथ तन्वी खन्ना और शमीना रियाज की भी चुनौती होगी। इस गेम में हमारे खिलाड़ियों ने एशिया में अपनी दमदार चुनौती पेश की है, तो अनुभव और युवा जोश वाली ये टीम कितना कमाल कर सकती है?
0: बहुत कमाल कर सकती है, और मैं इसलिए भी ये बोल रहा हूँ क्योंकि अगर अनाहत को देखें तो उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस साल, वर्ल्ड जूनियर टाइटल जीती है अनाहत, और उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, और लाइक आर्चरी स्क्वाश भी एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें एलए ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन स्पॉट भी होगा, तो वो उसके लिए भी हम लोग फाइट करेंगे। हमारी मेंस टीम लास्ट टाइम गोल्ड जीती थी और वही टीम इस बार भी उतरी है, तो वो एक्सपीरियंस भी है, तो उनसे भी हमें काफ़ी उम्मीद रहेगी कि वो फिर से गोल्ड लेके आए। तो ओवरऑल स्क्वाश में मुझे लगता है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। जोशना चिनप्पा जो कि बहुत ही एक सीजन प्लेयर है और इस लेवल पे काफ़ी मेडल्स हमें दे चुकी है, वो भी मिक्स टीम में है, तो उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा स्क्वाश से भी।
1: 2023 की बात करें तो भारत ने स्क्वाश में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते थे। उस टीम के कई खिलाड़ी इस बार शामिल नहीं हैं। दूसरी तरफ अनाहत सिंह जैसी युवा प्रतिभा की अगुवाई में क्या भारत अपने मेडल्स के पिछले आंकड़े को पार करता दिखाई दे रहा है?
0: कंपटीशन काफी टफ है स्क्वाश में, मलेशिया होगा, बाकी टीमें और भी होंगी, तो ये देखना पड़ेगा कितना हम लोग चैलेंज कर सकते हैं टॉप कॉम्पिटिटर्स को। बट इस लेवल पे जब आप खेलते हैं तो आपके अंदर एक मोटिवेशन अलग होता है कि आप टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एशियन गेम्स में, तो आपका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा हो जाता है। तो ये देखते हुए मुझे लगता है काफ़ी अच्छा टीम परफॉर्म करेगी और अनाहत के ऊपर तो काफ़ी फोकस रहेगा कि वो कैसा करती है। अगर वो एक सिंगल्स यहाँ से बर्थ निकाल सकती है ओलंपिक्स के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए।
1: सारिका, दबाव की परिस्थितियों में एक पहलवान के लिए अपने जज्बातों पर काबू बनाए रखना कितना जरूरी होता है, और जब आप मुकाबले में पिछड़ रही हो तब स्टैंड में लहराता एक तिरंगा और समर्थकों का एक जोश जो आवाज उठती है स्टैंड से, वो आपके अंदर कितनी स्फूर्ति भरती है?
2: खिलाड़ियों के लिए दबाव की स्थिति में अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो दबाव में आके पिछड़ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं कि मैं तो हार रहा हूँ, लेकिन तब आपको पीछे से शोर सुनाई देता है, चीयर सुनाई देता है, इंडिया इंडिया, तो वो आपके अंदर एक जोश लाता है कि नहीं मुझे करना है, ना सिर्फ अपने लिए अपने देश के लिए करना है। और तब आप वो इंडिया का कॉस्ट्यूम पहनकर मैट पे जाते हो या अपने रिंग में जाते हो, हर स्पोर्ट्स के इस पर्सन की फीलिंग सेम होती है, तो वो अपने लिए नहीं कॉम्पीट करता, वो अपने देश के लिए कॉम्पीट करता है। उसको ये होता है कि मेडल मेरा नहीं है, मेरा देश का है और मुझे अपने देश के लिए मेडल लाना है। तो प्लेयर्स में सबसे ज्यादा मैं ये मानती हूँ कि जो अपने माइंड को कंट्रोल करता है, जो अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखता है, वो हर एक सिचुएशन को टैकल कर सकता है, हर एक सिचुएशन में जीत सकता है। और रेसलिंग स्पोर्ट्स की मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो हमारे में ऐसा होता है कि लास्ट के 10 सेकंड में भी आप अगर स्कोर ले रहे हो तो आप जीत सकते हो, आपके पास ऑप्शन बचा होता है कि आप अटैक करके स्कोर ले सकते हो। और तब आपको पीछे से चीयर सुनाई देता है तो बहुत आपका मनोबल बढ़ाता है, बहुत आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि मेरे साथ इतने लोग खड़े हैं, मैं अकेला नहीं हूँ
1: जी। और आपने एशियन गेम्स में भारतीय कुश्ती दल की तो तमाम बातें कर ली, अब आपने भी देश के लिए कई प्रतिस्पर्धाओं में मेडल जीतकर तिरंगे का मान बढ़ाया है, आपने आगे अपने करियर के लिए क्या लक्ष्य तय कर रखा है?
2: हर खिलाड़ी की तरह मेरा भी यही सपना है कि ओलंपिक्स में जाना है, देश को रिप्रेजेंट करना है और देश के लिए मेडल लेकर आना है। तो मेन फोकस तो एलए ओलंपिक्स का ही रहेगा। मैं भी यही चाहूंगी कि मैं एलए ओलंपिक्स में जाऊं और अपने देश का मान सम्मान बढ़ाऊं, गौरव बढ़ाऊं और वहां से मेडल लेकर आऊं।
1: और अभिषेक, चलते चलते एक सवाल कि क्या भारतीय दल आपको पदकों के मामले में पिछली बार से आगे निकलता दिखाई दे रहा है?
0: बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हमारी प्रिपरेशन हुई है, आई थिंक काफ़ी सब कुछ हम लोगों ने कवर किया है। हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया कि जिस तरह वहाँ पे हमें एकोमोडेशन मिलेगा क्रूज शिप में, कंटेनर्स में, हम लोगों ने हमारे साई सेंटर्स में, पटियाला में, बैंगलोर में एथलीट्स को उसी तरह का एकोमोडेशन दिया ताकि वो एकोमोडाइज कर जाए। बाहर हम लोग एथलीट्स को काफ़ी भेजा गया है इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए, जैसे कि सारिका ने बताया, फॉरेन कोचेस काफ़ी आए हैं, तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन हुआ है। तो ऐसा जब प्रिपरेशन होता है तो एथलीट के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये प्रिपरेशन तैयारी हम लोग करके जा रहे हैं, तो कुछ हम लोगों ने छोड़ा नहीं है, अब सिर्फ वहां पे स्टेज में जाके हमें परफॉर्म करना है, मेडल जीतना है।
1: साथियों, एशियन गेम्स का मंच तैयार है, हमारे खिलाड़ी भी हर चुनौती को तोड़कर पोडियम तक पहुंचने की जोरदार तैयारी में है। उम्मीद है कि आईची नागोया में होंगझोंग में जीते पदकों का न सिर्फ आंकड़ा बढ़ेगा बल्कि मेडल का रंग भी और सुनहरा होगा। सारिका मलिक, आपको उज्जवल भविष्य की दुआ के साथ साथ स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद।
2: थैंक यू सर।
1: और अभिषेक रॉय, आकाशवाणी को समय देने के लिए आपका भी धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: फिलहाल चीयर फॉर भारत कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ
3: धर्मेंद्र मणि राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे एशियन गेम्स 2024 पर आधारित विशेष कार्यक्रम चीयर फॉर भारत।
1: FM 103.7 MHz पर यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है।

ये गीत अभी आपने सुना, हमने लिया था फिल्म लव इन टोक्यो से, आवाज़ लता मंगेशकर की थी। और यह है फिल्म संगीत की अगली पेशकश। फिल्म का नाम गुमराह, आवाज़ महेंद्र कपूर की है।

0: महेंद्र कपूर के गाए फिल्म गुमराह की इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह करने को मंजूरी दी। इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ की एक विशेष एनआईए अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई और दिग्गज कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे के मामले में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
2: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
1: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा।
3: वेतन की सीमा बढ़ाने का फैसला देश में सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल अगर कोई नया कर्मचारी हर महीने 15,000 रुपए से अधिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है तो वह अपने आप कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के दायरे में नहीं आता था। वहीं अब वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने से अब बड़ी संख्या में कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था से जुड़ सकेंगे। इससे अस्थायी और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को भविष्य निधि में बचत, कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन और बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र RCMC या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते माध्यमों से निर्यात को सुगम बनाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार ये कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इससे पहले आज न्यूजीलैंड की संसद में भारत के साथ समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक विधेयक पारित किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान भाजपा द्वारा देश भर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपना 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
5: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
1: जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने आज स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत।
6: स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया।
1: श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं।
7: आज देश के 5.25 लाख से अधिक गांव ODF प्लस मॉडल घोषित हो चुके हैं। साथ ही वर्ष 2014 से अब तक 12.22 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण हो चुका है। यह स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव को दर्शाता है। स्वच्छता इस सेवा 2025 में 18 करोड़ से अधिक नागरिकों ने भाग लिया, जिनमें से लगभग 14 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में से हैं। यह दिखाता है कि देश में स्वच्छता के प्रति जन भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है।
1: इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना 2047 तक विकसित भारत की महत्वाकांक्षा के लिए एक आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक अनिवार्यता है।
8: दुनिया भर में लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं। अनुमान है कि साल 2040 तक बिकने वाली हर 10 नई कारों में से 4 कारें इलेक्ट्रिक होंगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हमारे देश के लोगों की

0: से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की जगदलपुर स्थित विशेष अदालत ने झीरम घाटी कांड के सभी 10 दोषियों को आज फांसी की सजा सुनाई। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में झीरम घाटी में माओवादियों के हमले में कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं सहित 27 लोगों की मौत हो गई थी और 35 अन्य घायल हुए थे। NIA ने इस मामले में 11 माओवादियों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि ये पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: प्रेम प्रसंग हो या कॉमेडी या फिर सीरियस पात्र, अभिनेता अनंत नाग का सरल अभिनय पर प्रेक्षकों द्वारा प्रशंसा प्राप्त हुई है। मिंचिना ओटा, हमसे गीते, अंकुर, मंथन, मालगुडी डेज, गणेशना मधुवे, गौरी गणेशा और 250 से ज्यादा फिल्मों में उनका पात्र अभिनय ने अपनी अनोखी छाप छोड़ी है। अभिनेता ने 5 दशक के अपने फिल्म जगत के सफर में कई फिल्म इंडस्ट्री में अपना योगदान दिया है, जिसके लिए उनको आज ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अनंत नाग को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सहज अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से कई दशकों से भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि ये पुरस्कार देश के महानतम कलाकार के लिए उपयुक्त सम्मान है। सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का तत्काल प्रभाव से 3 साल की अवधि के लिए पुनर्गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि पुनर्गठित बोर्ड में विनोद अनुपम, मनोज जोशी, हंसराज हंस, प्रीति जिंटा, पंकज त्रिपाठी, रिकी केज, सुनील शेट्टी, रूपा गांगुली और प्रियदर्शन सहित 18 सदस्य शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी कल से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। श्री शेखावत ने लोगों से ई नीलामी में शामिल होने का आग्रह किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने EPFO के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दी। इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की। छत्तीसगढ़ की एक विशेष NIA अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 103.7 MHz पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। रात्रि के 9 बजे हैं, डीजे सुनिए सुगम संगीत। यह सुगम संगीत की पहली पेशकश आवाज़ तलत अजीज की है।

यह सुगम संगीत की अगली पेशकश आवाज़ मेहदी हसन की है।

0: सुगम संगीत अभी आप सुन रहे थे FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। अब से लेकर रात्रि के 10 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।
1: लाइन लगी होती उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ
2: चिट्ठी न कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गाना भूपेंद्र हजारिका की आवाज में है। फिल्म का नाम है रुदाली, गीत गुलजार का है, संगीत भूपेंद्र हजारिका का।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में बाबू फिल्म का गाना। गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है, संगीत से सवारा है राजेश रोशन ने।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए।

0: कैसी बना ये गाना।
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
1: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

संगीतकार राम लक्ष्मण का असली नाम है विजय पाटिल। संगीत का शौक बचपन से ही था और वो पहले कॉलेज के जमाने में नागपुर में और फिर मुंबई में स्टेज प्रोग्राम्स दिया करते थे और उसमें बजाया करते थे। विजय पाटिल अकॉर्डियन बहुत अच्छा बजाते थे। फिर उन्होंने मुंबई में अपना एक दल बनाया और अपनी बनाई तर्जों को ही स्टेज पर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक कार्यक्रम में दर्शक थे दादा कोण के। वो इनसे इतना प्रभावित हुए कि अपनी फिल्म पांडु हवलदार का संगीत उन्हें सौंप डाला। उन्होंने ही विजय पाटिल का नाम भी बदला। वास्तव में राम और लक्ष्मण दो व्यक्ति थे, पर उनमें से एक साथी राम की मृत्यु हो गई, लेकिन नाम दोनों का ही चलता रहा, यानी राम लक्ष्मण के नाम से ही संगीत चलता रहा।

0: तबीयत है जनाब की?
1: संगीतकार राम लक्ष्मण का मानना था कि लोकप्रियता उसी गीत की होती है जिसे हर आम आदमी गुनगुना पाए। अपने संगीत में इस तत्व का उन्होंने हमेशा ही ख्याल रखा। राम लक्ष्मण की पहली सुपरहिट फिल्म रही राजश्री प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत तराना। ये आई थी 1979 में। इस फिल्म के लगभग सभी गाने बहुत ही मशहूर हुए और लोगों ने इस संगीत को बहुत बहुत पसंद किया।

संगीतकार राम लक्ष्मण ने अपने सुरीले रस भरे गीतों से ऐसी ही संगीत वर्षा की। हम आपको बता दें कि गीतकार असद भोपाली के साथ राम लक्ष्मण ने ढेर सारी रचनाएं तैयार की, लेकिन उनमें से अधिकांश तो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकी। राजश्री और दादा कोंडके के अलावा प्राणलाल मेहता और दीपक बहरी ने भी अपनी फिल्मों के लिए राम लक्ष्मण के संगीत को अक्सर चुना, इसलिए राम लक्ष्मण को मौकों की कमी कभी भी नहीं रही। अगर बात करें 80s की तो बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में आईं जिसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक उस समय बहुत बहुत सुना गया और सुनने वालों ने, दर्शकों ने बहुत बहुत सराहा। कुछ फिल्मों के नाम याद कर लें, जैसे उस्तादी उस्ताद से, इस फिल्म के सभी गाने बहुत अच्छे थे, और आंगन में तुलसी एक फिल्म थी उसके गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए, और राजश्री प्रोडक्शन की सुन सजना और सुन मेरी लैला के गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए। और सबसे ज्यादा 80 के दशक में राम लक्ष्मण का जो गीत प्रचलित हुआ, सुना गया, सराहा गया और आज भी उसी चाव से सुना जाता है, वो है हमसे बढ़कर कौन फिल्म का। ये फिल्म आई थी 1981 में और ये गाना बहुत बहुत सुना गया और पसंद किया गया।

मराठी फिल्म पांडु हवलदार या माला घी उजाला की अपार लोकप्रियता से प्रेरित होकर 1989 में राम लक्ष्मण ने मीनल राव के साथ स्वयं गाकर मराठी हिस्का नाम से एक मराठी पॉप एल्बम भी निकाला था। वैसे राम लक्ष्मण अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे। हिंदी फिल्मों में असफल दौर भी उन्होंने देखा, पर राजश्री ने उनका साथ नहीं छोड़ा और 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया इसने तो लोकप्रियता के कीर्तिमान स्थापित किए और संगीत तो लाजवाब था। राग पहाड़ी और शिवरंजनी की लोक धुनों का इस फिल्म में राम लक्ष्मण ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। आधुनिक रिद्म के साथ पहाड़ी के लोक सुरों से सम्मिश्रण से सृजित दिल दीवाना बिन सजना के मानीना गाना बहुत बहुत पसंद किया गया और मैंने प्यार किया की अभूतपूर्व सफलता ने राम लक्ष्मण को वर्षों बाद फिर से एक बार लोकप्रियता का स्वाद चखाया।

राम लक्ष्मण के संगीत में एक अपनापन, एक घरेलूपन सा होता था जिसे सुनने वाले बहुत बहुत पसंद करते थे। हम आपके हैं कौन उनकी ऐसी ही फिल्म थी जिसका एक एक गीत बहुत ही मशहूर हुआ। वैसे उनकी फिल्म सातवां आसमान भी एक उल्लेखनीय फिल्म है जिसके गाने बहुत सुने गए।

संगीतकार राम लक्ष्मण के संगीत से सजी बहुत सारी फिल्में हैं। इस कम समय में उनकी सारी फिल्मों के गानों की हम एक एक लाइन भी नहीं सुनवा सकते हैं, पर फिर भी हमने कुछ कोशिश की।

0: कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। हमारी आज की यह सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 8:53 पर आपसे